0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम चर्चा करेंगे राजयोग मेडिटेशन की विधि, आधार और उसकी प्राप्तियों की। श्रोते हो, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता में

में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अर्थात परमात्मा का ध्यान, इसे ही योग कहा गया है। राजयोग मेडिटेशन अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने का अभ्यास। यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ है और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी होती है। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्मिक स्थिति में टिककर आत्मस्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है। जैसे हम मनुष्य आत्मा है, उसी प्रकार आत्माओं का पिता भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी में परम है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, इसीलिए हम उन्हें परम आत्मा कहते हैं। और वह सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, इसीलिए हम उन्हें परम पिता कहते हैं। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हठ क्रियाएं प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन योग जो है वो वास्तव में परमात्मा की याद को कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः ही याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होनी चाहिए। इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी है, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान है। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों और वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का और परमपिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा की स्मृति में नहीं टिकता, अर्थात हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्मनिश्चय में अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, देह भान में फंस जाते हैं, शरीर को ही भूलने की कोशिश नहीं करते। और शरीर भान में फंसने से, स्वयं को आत्मा ना समझने से
उनका योग नहीं लगता। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है, तब उनके ऊपर के रबर को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई देह के भान में होगा तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी, उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा का नाम शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, लेकिन परम धाम में पवित्र स्थान में रहने वाले ब्रह्मलोक के वासी है। मनुष्य आत्मा अपने मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते, परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु और दिव्य धाम परम धाम ब्रह्मलोक है। वहां मन को टिकाना सहज हो सकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है, इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में घनिष्ठ स्नेह नहीं होता। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परम प्रिय परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु की स्मृति में रहना सहज हो जाता है कि वो हमारे परम पिता है, हम आत्माओं के पिता। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को

प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। योग के अभ्यास के लिए योगी को आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है। इसमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है और वह देह की अपेक्षा आत्म अभिमानी अवस्था में रहता है, अर्थात स्वयं को आत्मिक स्मृति में ही रखता है। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। यहाँ आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू या कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करता। अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, न ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार योगी का मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग, इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग में अथवा कुविचारों में समय व्यर्थ नहीं गवाता। वह एक ही प्रभु की याद व लगन में मग्न रहता है। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, न कि आसुरी स्वभाव, विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुखता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार है। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली, भटकी और अशांत आत्माओं को भी

गुणों का दान करता है और उनके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां भी आ जाती है। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है सिकुड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकुड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे आत्मिक स्मृति में एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में न फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है, वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेट कर सदा अपने घर परमधाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और कामना ही रखता है। राजयोग मेडिटेशन से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है वह है समाने की शक्ति। योग का अभ्यास मनुष्य की बुद्धि विशाल बना देता है और मनुष्य गंभीरता और मर्यादा का गुण धारण करता है। थोड़ी सी खुशियां मान पद पाकर वह अभिमानी नहीं बन जाता और न ही किसी प्रकार की कमी आने पर या हानि होने के अवसर पर दुखी होता है। वह तो समुद्र की तरह सदा अपने दैवी कुल की मर्यादा में बंधा रहता है और गंभीर अवस्था में रहकर दूसरी आत्माओं के अवगुणों को न देखते हुए केवल उनसे गुण ही धारण करता है। योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान जाता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है और अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और पर चिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने
अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाता है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यह सृष्टि ही घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटों से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते से मुख्य बाधा डालते हैं। इस घोर कलयुग में ये धरती ही नरक बन गई है और सतयुग में इसी धरा पर स्वर्ग था। इस धरा को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार करने नहीं देती। अतः पवित्र दृष्टि बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। इस धरती को स्वर्ग बनाने में दूसरा भयंकर विघ्न है क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पद से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधन वश अपने धर्म व कार्य को ही भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकलकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो, इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता है। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो कह दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ भी लग जाती और मृतक के संबंधी मातम न मनाते। इस धरा को स्वर्ग बनाकर स्वर्ग का आनंद लेने के लिए जरूरी है कि राजयोग मेडिटेशन अभ्यास द्वारा विकारों को त्याग कर दैवी गुणों को धारण कर हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाना, तभी ये धरा स्वर्ग बन सकती है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हो सकती है, कौन सी हमारी जिम्मेवारियां हैं, तो जब अपनी तरफ देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले है, तो उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि किस तरफ मैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपनी जिंदगी को, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जहां मैंने अपनी चॉइस की तो जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। आगे और बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता जाएगा, खुद को मैनेज करने का प्रोसेस। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हर बार हम बहुत सी सिचुएशंस में ऐसे कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो कहीं ना कहीं जब हमने बातें की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें चॉइस मेरी ही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही थी, कोई भी सिचुएशन है, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इसलिए कई बार ये कह देती हूँ कि इट्स नॉट माई चॉइस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है।
1: वी ऑल्सो लाइक वी रियलाइज अबाउट द कर्मा फिलोसफी, सो मेनी पीपल, मोस्ट ऑफ अस, इनफैक्ट आई कैन से ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है जब परमात्मा से ये ज्ञान मिलता, या हमने पहले भी कार्मिक फिलोसफी समथिंग जो हमने बचपन से सुना था, तो एक तरफ से कार्मिक फिलोसफी हमें कहता कि हम जो करते उसी का रिटर्न मिलता, लेकिन हमारी अपनी बिलीफ ये कहती कि हमने कुछ गलत नहीं किया, तो ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो समवे वी नीड टू थिंक कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो फिर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी होती हुई चीजें हमें गलत लगती हैं, लेकिन करती हुई चीजें हमें गलत नहीं लगती हैं। होती हुई जो चीजें हैं, विच इज कमिंग द एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जो एनर्जी हम यहाँ से भेज रहे हैं थॉट, वर्ड, एक्शन के रूप में, हम कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं। हमने जो कल के एपिसोड में डिस्कस किया, इट जस्ट स्ट्रक समथिंग हियर फॉर मी, एंड इट वॉज क्यों हमें ये लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। डेफिनेटली हमने गलत किया है, लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या होता है, हम गलत करते हुए भी, जैसे हमने कल देखा कि ब्राइब देते हुए भी हम कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, सिस्टम गलत है,
0: अपने आप को जस्टिफिकेशन,
1: मैं सही हूँ। हर कर्म के लिए है ना, हर कर्म के लिए हमने अपने आप को कहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ,
0: सिस्टम गलत था,
1: समवन एल्स इज रॉन्ग। तो इसलिए जब वो मेरे पास वापस आता है, आई से मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि गलत करते टाइम भी मैंने क्या सोचकर गलत किया था,
0: ये मैं तो सही हूँ,
1: सही हूँ।
0: इनफैक्ट ये अपने आप को धोखा देने वाली बात, जो अभी तक हम कहते थे कि आप किसको धोखा दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ धोखा दिया, सब कुछ क्लैरिटी से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन तो इनफैक्ट ओ वाओ,
1: मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन है, एवरीवन यूनिवर्सल आई विल फील दिस हैज हैपेंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे व्हाटएवर फिजिकल इलनेस में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमात्मा कह रहा है जो आपने किया उसका ही मिल रहा है, तो वेयर इज द फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट्स इम्पोर्टेंट।
0: क्योंकि पता है कई लोग ये भी बोलते हैं, मैंने जानते हुए कुछ गलत नहीं किया, अनजाने में गलत हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता।
1: हाँ, तो वो तब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमने लिए ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हम एक्चुअली तो गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को सही बताकर कर रहे होते हैं, तो फिर जब हम अपना ही अकाउंट चेक करते हैं, यू नो,
0: अब अगर हम चेक करना शुरू करें तो कितनी,
1: अब जब हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैंने सब कुछ सही किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, परमात्मा ने आकर कहा ये फॉर्मूला वर्क नहीं होता है, जो आपने किया वही मिल रहा है, तो नाउ चेक योर कर्म वाला अकाउंट अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम जब कर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं गलत करते हुए भी अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा मैं फिर वही स्टेटमेंट दूंगा
0: कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था,
1: एंड देन इट मेक्स मी फील वेरी पेनफुल इनसाइड, यू नो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन।
0: ओके, सो व्हाट यू ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आज अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और जिसको मैं अभी तक मैं ये कहता था कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है इसलिए मुझे ये करना है, लेकिन आज मैं ये समझते हुए कि मेरे पास चॉइस है और मैंने ये गलत किया क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम की जरूरत ये थी, मुझे इस टाइम पे ये जरूरत लग रही थी और मैंने ये गलत किया जानते हुए, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। समवेयर आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग विच आई हैव डन एंड इट विल हैव इट्स ओन रिपरकशन।
1: स्टॉप टेलिंग माई सेल्फ दिस एवरी टाइम, इट्स जस्ट दैट करते हुए मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ, कर तो मैं ही रहा हूँ, इसीलिए इट्स कमिंग बैक टू मी। सिस्टम गलत है तो ब्राइब देना गलत हुआ क्या? नहीं। अब कल को अगर मेरा कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने जो अभी गलत कर्म किया वो फाइनेंशियल था, कार्मिक लॉ विल वर्क इन द सेम वे, तो जहां मैंने एक फाइनेंशियल कर्म जो किया वो रॉन्ग था, कहीं मैंने पैसा गलत तरह से लगाया तो कहीं मेरा पैसा गलत तरह से फिर
0: चला
1: जाएगा
0: गया,
1: भी, लेकिन जब वो जाता है
0: बहुत तकलीफ होती है,
1: तो मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत
0: क्या
1: नहीं
0: हुआ,
1: किया।
0: क्या किया था मैंने। हाँ
1: टू बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स, दिस इज नॉट टू स्केयर आवर सेल्व्स, दिस इज जस्ट टू बी अवेयर व्हाइल डूइंग द एक्शन, सो कीप ऑन डूइंग इट हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल, बट रिमेम्बर लेट्स स्टॉप दिस सेंटेंस एटलीस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें बहुत हेल्पलेस फील कराता है, जब हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी हमारे जीवन को क्या कर देता है, बहुत कमजोर बनाता है। आज मेजोरिटी हम कहते हैं मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ ही धोखा दिया, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज जस्ट दैट मीन्स इन द लॉ ऑफ एनर्जी इज नॉट वर्किंग, मैं सबके साथ अच्छी हूँ सबने मेरे साथ धोखा दिया, ये कहाँ वर्क कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मैं सबके साथ बोलने में बहुत मीठी हूँ
0: अंदर
1: लेकिन अंदर मैं उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ, फिर जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न में आती तो किस तरह से आती, तो लॉ ऑफ कर्मा एट एवरी स्टेप आई नीड टू रिमेम्बर, धन तो बहुत छोटा लेवल है लेकिन हर स्टेप पर उस पर देखते जाए, तो जब हम इस तरह से ध्यान रखकर अपने जीवन को चलाएंगे, जीवन की यात्रा में चलेंगे, तो हमें सबसे पहली पावर ये मिलेगी कि मैं अपना जीवन खुद क्रिएट करता हूँ, हर स्टेप में सीन है, सीन आते मेरे पास चॉइस है क्या रिस्पॉन्स देना, जो मैंने रिस्पॉन्स चूज किया उस समय मेरे लिए वो सीन बना, आप वही सीन में दो अलग एक्टर्स को अलग अलग रिस्पॉन्स देता हुआ देखेंगे, दोनों ने अपनी जीवन अलग अलग उसी टाइम डिसाइड कर ले, समटाइम्स वी टेक वेरी बिग डिसीशंस उसी सिचुएशन में, दो लोग दो अलग डिसीशंस लेते हैं और दोनों की जीवन की यात्रा बिल्कुल ही चेंज हो जाती, लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, नो इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीशन विच दे टुक दैट टाइम,
0: चॉइस आई मेड।
1: तो हो तो यही रहा, सिर्फ लिव विद दैट अवेयरनेस, ताकि उससे क्या होगा जब हम वो जागृत अवस्था में चलेंगे कि हर स्टेप पे मैं अपना जीवन खुद बना रहा हूँ, तो दैट विल गिव मी अ वेरी नाइस फीलिंग एंड इट इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम विलिंग टू डू दिस इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस
0: एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वॉन्ट।
1: एवरी
0: सी राइट नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ विद माई लाइफ, आधे से ज्यादा तो हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं अपने आप से। सुबह उठ के रोज मैं एक ऐसी ऐसे दिन की शुरुआत करता हूँ जो जिससे मैं कोई खुश नहीं हूं, मैं नहीं चाहता उस ऑफिस में जाना, मैं नहीं जीना चाहता उस पूरे एटमोसफेयर में, मैं खुश ही नहीं हूं।
1: अब जहां तक जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता उस ऑफिस में, तो अभी भी कुछ लोग कहेंगे ये प्रोग्राम सुनते हुए भी, कहां मेरे पास चॉइस है, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं जॉब ही छोड़ देता ना, फिर मुझे नहीं जाना है। ओके सिचुएशन कि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका डिसीशन है, ये तो चॉइस है ना कि वो जॉब करते हुए आप फील कैसा करेंगे, क्योंकि वहां रहना आपने चूज किया है, सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम कहें मैं मजबूर हूं वहां काम करने से, फिर आप दर्द में काम करते हैं, आप दर्द में काम करते हैं, नफरत से काम करते हैं, वट एवर, लेकिन जहां आप कहते हैं मेरी परिस्थितियां या कुछ भी मेरा परिवार जो भी एक रीजन है उनकी वजह से मैं चूज करता हूँ इस ऑफिस में काम करना, तो मेरी चॉइस है, तो अपनी चॉइस को कैसे निभाना चाहिए?
0: Because it actually gives you power.
1: या यू नो लाइक फॉर एन एग्जाम्पल टेक अ करियर, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे, अगर बच्चा पेरेंट्स के कहने पर मेडिकल करता है ना तो वो पढ़ता भी जाता है प्रोफेशन भी करता है, लेकिन पूरा टाइम उनको ब्लेम करता है आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी, तो देन ही डजंट रियली पुट इन द बेस्ट और एंजॉय, लेकिन जो प्रोफेशन उसने खुद चूज किया होता है उस प्रोफेशन में कितने भी हर्डल्स आते हैं ये नहीं है कि उस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन चॉइस किसकी थी? वो प्रोफेशन मेरी थी. उस समय वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. जहां आपकी चॉइस है आप कंप्लेन नहीं करते. अगर वो बच्चा घर आकर कहे कि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट है ये इंजीनियरिंग करना, तुरंत पेरेंट्स क्या कहते? आपने चूज किया था ना.
0: सो तो उसके लिए वी मेक इट वर्क.
1: यस, वी मेक इट वर्क. यू पुट इन योर बेस्ट इनटू इट. तो इसी तरह वो ऑफिस जो आप कह रहे हो कि मेरा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वहां जाना, लेकिन मैंने चूज किया है वहां जाना, नाउ मेक इट वर्क बिकॉज इट्स योर चॉइस. लेकिन अगर आप मजबूरी समझ के, चाहे ऑफिस या किसी रिश्ते में है, आज लोग बहुत सारे रिश्तों में है, चूज भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, तो दर्द में रहते हैं. यू आर चूजिंग. My mother-in-law, she's like this, but I have no choice. I have to stay with her. Oh, you're choosing to stay with her. Now make the most of it. ये आपकी choice है. अब यहाँ क्या create करना है वहाँ रहते हुए उनके साथ? Choose it. लेकिन जब हम कहें मेरी choice नहीं है, तो हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं. और फिर हम कर भी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर
0: बहुत
1: घुट भी रहे हैं.
0: और वो this is not self-management. Genuine होती है.
1: Genuine. घुटन जेनुइन कैसे हो सकती है?
0: मतलब वो घुटन जो है वो महसूस तो हो ही रही होती है ना,
1: बहुत ज्यादा
0: तकलीफ तो बहुत हो रही होती है.
1: एंड मोस्ट ऑफ अस कैन स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस. वी मीट लॉट ऑफ गर्ल्स, वुमेन नाउ, दो कहेंगे मैं आई वाज अ वर्किंग गर्ल, लेकिन शादी करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको जॉब नहीं करना, चॉइस. कहेंगे नो, नॉट माई चॉइस, माई फैमिली मेड मी डू इट. एंड फिर पूरी जीवन कैसे काटेंगे? रहेंगे उसी परिवार के लिए, त्याग भी उनके लिए किया लेकिन अंदर से नहीं किया. ऊपर से त्याग किया, अंदर से दर्द दर्द दर्द. फिर कहेंगे इतना इनके लिए किया, ये अभी भी खुश नहीं है मेरे से. क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर वो जीवन की पूरी यात्रा कैसे हो जाएगी? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. तो हमने एक बहुत अच्छा स्लोगन एक जगह पढ़ा, जस्ट चेंज वन वर्ड, हैव टू की जगह वॉन्ट टू, एंड योर लाइफ विल चेंज. एंड इट वर्क्स. I want to do this. I want to do this. I have to do this. Even getting up on a Monday morning and saying, I have to go to work and I want to go to work.
0: Yes.
1: Dono mein kitna farak hai. Aapki energy level hi change ho jati hai.
0: Like I want to meditate.
1: I want to meditate. Yeah, I have to meditate. Toh wo jeevan ko aap enjoy karne lagenge. Ab jaise hum kehte time is money. You know, आज दुनिया में भी कहते टाइम इज मनी. तो हमने शुरू ही ये किया था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिला है इस क्रिएट करने के लिए. हमें ये नहीं पता कि वो टाइम कितना है. मैं इस कॉस्ट्यूम में कितने टाइम के लिए हूँ, आई डोंट नो. वॉट टू क्रिएट, आई विल चूज. लेकिन डू आई हैव अ क्लियर सेंस ऑफ अ गोल एंड एम कि मुझे इतने समय में क्या करना है? जैसे टाइम इज मनी कहते, तो जितना पैसा मेरे पास है, मेरे पास कितना क्लियर ये होता है मुझे इस पैसे से क्या क्या करना है. जितना समय मेरे पास है, क्या मेरे पास वो क्लियर गोल है मुझे इस समय में क्या क्या करना है? एम आई वेरी क्लियर विद माई गोल्स एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? क्योंकि अगर क्लियर नहीं होता, तो आप देखो जीवन में चलते चलते बीच बीच में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? वाई एम आई हियर? What am I doing? This is meaning leading a life, लेकिन ये नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर

0: सेपरेट, पर्पस इज सेपरेट. उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है. और दूसरा, हम हमने अपने जीवन की कोर वैल्यूज नहीं डिफाइन की है. एक बार हमारी कोर वैल्यूज और जीवन का पर्पस डिफाइन हो जाए, फिर गोल सेट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड फिर ध्यान रखना कि जो गोल मैं सेट कर रहा हूँ वो मेरे पर्पस और वैल्यूज के साथ
1: क्लैश ना करे,
0: मैच करे. इस पर मनन भी करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का पर्पस और वैल्यूज क्या है. एंड दिस नीड्स टू बी रिटन समवेयर. हर एक के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए ताकि जब आपकी लाइफ में कोई द्वंद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि आजकल कई बार आता कि मैं ये करूं या ये करूं, गो पिक अप दैट चिट फर्स्ट जो वहां रखा था, क्योंकि ये गोल्स हैं, लेकिन पर्पस और वैल्यूज क्या है.
1: हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करने में अपने जो जरूरतें हैं जीव दुनिया भर की या जीवन की जो जरूरत है उन्हीं को पूरा करने में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि ना हमने पर्पस के बारे में सोचा, ना हमने वैल्यूज के बारे में सोचा है, और गोल तो समझ में नहीं आता कि
0: पर्पस के बारे में सोचते भी तो भी क्या पर्पस दिखाई देता. जीना और अपने बच्चों को
1: पालना
0: पालना भर, तो यू नो इट्स अ वेरी एक्सटर्नल पर्पस, तो वो पर्पस नहीं है. फिर हर थोड़े दिन के बाद ये आता,
1: क्या कर रहे
0: क्या
1: हैं
0: कर रहे हैं
1: हम.
0: हम, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
1: आई नो
0: क्या
1: लॉट ऑफ
0: कर
1: पीपल,
0: रहे हैं हम,
1: क्या कर रहे हैं हम, वेयर एम आई गोइंग, यू नो मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले जाना. आज
0: क्योंकि
1: मैं
0: जैसे
1: डिप्रेशन
0: ही ये
1: में गई.
0: क्वेश्चन अराइज होता है ना, उसको दबा देते हैं. क्वेश्चन आता है, सबके मन में आता है, ये कभी ना कभी हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है. लेकिन फिर छोड़ते हैं, छोड़ो ना, काम करो, बच्चों को संभालो, परिवार को,
1: बहुत सारा काम
0: ये
1: है, भी बहुत
0: क्वेश्चन
1: सारी
0: को, ये
1: चीजें.
0: सब फिर सोचते हैं. जब रिटायर हो जाएंगे ना, स्पिरिचुअलिटी विल गिव अस द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन. बट पर्पस ऑफ माई लाइफ इज
1: नाउ
0: थ्रू आउट माई एंटायर लाइफ. आई नीड टू चॉक इट आउट व्हाइल आई एम ऑन द जर्नी इन दिस लाइफ. अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए हु इज वेरी फोकस्ड, बहुत क्लियर है कि वो अपने जीवन में क्या चॉइसेस बना रहे हैं. डिसीशन लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. दे विल नॉट गो अराउंड आस्किंग पीपल, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. उनके पास सिर्फ अपना वो पर्पस ऑफ लाइफ और वैल्यू वाला चिट सामने होगा. हियर व्हाट इट इज, सच अ पर्सन नेवर नीड्स हेल्प टू टेक देयर डिसीशंस. अगर मैंने अपना डिसीशन अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए लिया तो मुझे कभी भी अंदर से घुटन की फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो डिसीशन कोई भी डिसीशन.
1: You know, now a lot of people are going to ask us, what should be the purpose of our life?
0: Yeah, good.
1: You know?
0: I didn't mind that. That is an okay, good question. But we will not find the purpose. We can just take them on a journey to find their own purpose. Because everyone will have to find the purpose for themselves. Agar humne ready-made answer de bhi diya, कि दिस इज पर्पज ऑफ योर लाइफ, दीज आर योर वैल्यूज, वो आज पेपर पर लिखेंगे, कल छोड़ देंगे उसको. जैसे ही सिचुएशन सामने आई, वो छोड़ो इसको, आई हैव टू डू दिस.
1: वो तो एक जिस तरह से जीते जा रहे हैं उसी तरह से जिएंगे.
0: इट हैज टू कम फ्रॉम मी. हर एक को अपने आप के लिए ये ढूंढना पड़ेगा. तो जो लोग ये बहुत फोकस्ड और यू नो जिसको कहें वेरी क्लियर कि उनका डिसीशन क्या होना चाहिए, उनके एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, उनके पास तीन बातों का आंसर होता है. वो कौन है, पहली बात, वो यहाँ क्यों है, एंड तीसरा, उनका रोल क्या है. ये तीन क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाते, हु एम आई, वेयर एम आई, एंड व्हाई एम आई हियर. आई नीड दीज थ्री आंसर्स. हु एम आई, वेयर एम आई हियर, एंड व्हाई एम आई हियर. ये तीन आंसर्स मिल गए, पर्पस और वैल्यूज ढूंढना बहुत इजी हो जाता. लेकिन जैसे ही हु एम आई को आंसर करना शुरू करते तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है. और आज दिन तक तो जब तक परमात्मा से ये ज्ञान नहीं मिला था तो यही सुना था कि हु एम आई इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर.
1: यू स्पेंड ऑल योर लाइफ सर्चिंग फॉर इट.
0: तो जब तक हु एम आई नहीं आंसर हुआ तो माय पर्पस एंड माय वैल्यूज वो नहीं पता चलेगा. क्योंकि पर्पस और वैल्यूज किसका है, माय पर्पस माय वैल्यूज, लेकिन वो मैं कौन. वो मैं का जैसे ही आंसर निकलेगा तब तो उसकी वैल्यूज निकल कर आएंगे ना. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए सब कहते हैं कि जब तक हु एम आई का आंसर नहीं आता तो बाकी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रह जाते. आज अगर हम एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, हर एक चीज के ऊपर एक लेबल लगा है, कोई भी ड्रेस देखो ना, उसके ऊपर लेबल

0: कौन सा मेक, क्या कॉस्ट, क्या डिजाइन, कैसे इसकी वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ लेबल्स लेबल्स, हर जगह लेबल्स। अपने आप को देखो, हमारे ऊपर भी एक लेबल लगा हुआ है। जिसको भी हम मिलते उनके ऊपर भी तुरंत हम एक लेबल लगा देते हैं। बिना लेबल के किसी को देखना या किसी से मिलना इज बिकम डिफिकल्ट। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, लेबल, फैट थिन, प्रोफेशन, डॉक्टर इंजीनियर, व्हाटएवर, लेबल्स। जैसे ही हम औरों के ऊपर इतने लेबल्स लगाते, अपने ऊपर भी हमने लेबल्स लगाए हुए हैं। हु एम आई, तो ये पूरी लिस्ट ऑफ लेबल्स आ जाती। और जैसे ही ये लेबल्स बन जाते, मेरी पूरे जीवन पता है किस में बीतती है, इन लेबल्स को डिफेंड करने में, इन लेबल्स को संभाल कर चलने में, कि और इन लेबल्स के ऊपर ही मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेबल पर ही डिपेंडेंट है।
1: मैंने अपने आप को ये लेबल दिया, अब जो भी दूसरा है वो ये लेबल एक्सेप्ट करे, उसे समझ में आए कि मैं ये हूँ।
0: एब्सोल्युटली। जैसे ही किसी ने मेरे उस लेबल को थ्रेटन किया, लेट्स से माय लेबल इज आई एम अ हिंदू, सिंपल लेबल, जैसे ही कोई कहे तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ, आई एम एन इंडियन, ये मेरा लेबल है, कहे कोई अब इंडिया के बारे में कुछ भी, एंड आई विल गो लाइक दिस, मुझे कह दिया, एंड देन वी से पेट्रियोटिज्म, यस, बट पेट्रियोटिज्म डजंट मीन दैट आई नीड टू रिएक्ट, लेकिन मेरा लेबल है। और जैसे ही किसी ने उस लेबल को स्क्रैच किया, उसको हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया। लेट्स से आई एम अ डॉक्टर, किसी ने भी अगर कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, मुझे कह दिया, एंड आई विल गेट हर्ट। आई एम अ मदर, किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया, आई गेट हर्ट, मेरे लेबल को स्क्रैच कर दिया। नाउ दिस इज माय आइडेंटिटी। अगर ये जो लेबल्स की पूरी लिस्ट है ये मेरी आइडेंटिटी होगी, तो व्हाट विल बी माय वैल्यूज
1: डिपेंडिंग अपॉन देम, यू नो,
0: डिपेंडिंग ऑन दीज,
1: सेव करने के लिए लेबल्स में
0: मेरी वैल्यूज हु एम आई पर डिपेंड करती है। तो जैसे हु एम आई, वाइफ, मदर, वुमन, इंडियन, हिंदू, ये आंसर आएंगे, तो वैल्यूज भी क्या आएंगे, सब उससे रिलेटेड आएंगे।
1: और उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को यू नो बहुत अच्छी तरह से शो करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम।
0: एब्सोल्युटली। क्योंकि वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, व्हेन वी से वैल्यूज, तो वैल्यूज मींस समथिंग दैट आई केयर अबाउट। आई से आई वैल्यू यू, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, आई वैल्यू माई जॉब, इट्स वैल्यू, समथिंग दैट आई केयर अबाउट। अब अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ, तो व्हाट विल बी माय वैल्यू,
1: पावर देयर,
0: पोजीशन देयर, माय रोल देयर,
1: एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन।
0: नाउ माय वैल्यूज मींस आई विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट पावर, पोजीशन, दैट रोल दैट आई प्ले देयर। तो सारा दिन मेरा पूरा ध्यान किस पर होगा, उस पर होगा। इफ माय लेबल इज, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इफ माय लेबल इज आई एम अ ब्रह्मा कुमारी,
1: होल थिंग इज लाइक
0: रिलीजन, फिलोसफी। अगर किसी ने मेरी इस, मेरी नहीं मतलब, लेकिन जो भी फिलोसफी आई एम प्रैक्टिसिंग इट, लेट समवन से एनीथिंग अगेंस्ट दैट फिलोसफी एंड आई विल गेट हर्ट। स्पिरिचुअलिटी वैनिश्ड, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वॉज एक्चुअली नॉट टू गेट हर्ट, लेकिन मैंने वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा, मैंने अपना लेबल कौन सा अटैच कर लिया, आई एम दिस, हाउ क्रिटिकल दैट इज। आज हमने अपने लेबल्स पर रिलीजन को लगाया है, एंड दैट्स वाई इन द नेम ऑफ रिलीजन वी आर fighting with each other, protect करने के लिए अपने religion को, अपने principles को, अपनी philosophy को, क्योंकि this is what I value. No one can do or say anything to this. Then to protect.
1: This is important to me. Yes, you know, like, oh yes, very true.
0: ये सारे जो labels हैं, अब परमात्मा आकर हमारे ये सारे labels
1: हटा देता
0: और हमें दिखाता कि हम actually कौन हैं। और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कौन है, हु एम आई, जब आंसर हो जाएगा, तो वैल्यूज एंड पर्पस वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है।
1: वेरी ट्रू।
0: तो जब तक वो आंसर नहीं होता, लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हु एम आई, और जो जो आंसर बाहर के अक्वायर्ड लेबल्स के हो उनको एक साइड रखते जाए। दिस इज माइन, माई रिलीजन, माई रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जिन जिन लेबल्स के साथ माई आता उसको हटाते जाएं। दिस इज अ लेबल विच इज फाइन, दिस इज देयर, बट दिस इज माइन। मुझे उस आंसर पर आना है कि हु एम आई। तो अपने आप के साथ बैठे और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि जैसे ही हम आई कहते हैं, तो क्या क्या आता है सामने। और धीरे धीरे जो जो चीजें इस जीवन की यात्रा में अक्वायर की हैं, हमने प्राप्त की हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, वो हमारी डिग्रीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी और पोजेशंस हैं, वो सब कुछ मेरे हैं, उनको एक साइड रखते जाएं, यस आई अंडरस्टैंड ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन? थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी मेरे हैं, मैं कौन? लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट हु एम आई, टू हूम ऑल दिस बिलोंग्स। जैसे जैसे हम एक एक लेबल को गिराते जाते, धीरे धीरे हम खो नहीं रहे हैं कोई भी चीज को, हम सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा क्या क्या। एक एक लेबल को हटाते हटाते वी कम टू आवर सेल्व्स, आई दैट बीइंग, द एनर्जी, जस्ट मी, जो इन रिलेशनशिप्स और इन रोल्स को प्ले करती है, आई कॉन्शियसनेस, आई एम दैट बीइंग ऑफ एनर्जी। एंड नाउ एज आई सेट आउट थ्रू आउट द डे विद दिस आइडेंटिटी कि ये सब कुछ मेरा है लेकिन मैं ये हूं, तो आज के दिन मैं अपनी वैल्यूज को देखना शुरू करती, अपने पर्पस को ढूंढना शुरू करते। लेट मी एक्सप्लोर इट विद माई सेल्फ टुडे। ओम शांति।
1: ओम शांति। सुशिवानी, जिस तरह से आज पूरी बातचीत रही और जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही कि मेरे जीवन का पर्पस क्या, और उसमें आपने कहा कि जब तक वैल्यूज नहीं आएंगी सामने, तब तक, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाऊंगा, तब तक ना वैल्यूज को ले पाऊंगा ना पर्पस पता चल पाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि खुद को हमें पहचानना है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस जर्नी।
0: वी विल टेक इट अप टुमारो।
1: यस,
0: दैट हाउ डू आई फाइंड माय पर्पस एंड वैल्यूज।
1: यस, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, बिकॉज़ आज हमारे पास नहीं रहा वक्त, लेकिन आज जो हमने समझा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पूरा टाइम चाहिए उसको सीप इन करने के लिए। हम शांति। आज की इस पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जो अभी आपके सामने नहीं क्लियर हो रही है, या कुछ और आप कहना चाहते हैं, कोई सजेशन है, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज जो अपनी पहचान हुई है कि आप वो चैतन्य शक्ति हैं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, इन सारे लेबल्स के, माँ के, पिता के, प्रोफेशनल के, या कोई भी जितने भी लेबल्स हमने उड़े हैं, उन्हें जरूर चेक करें, देखें कि वो कौन कौन से लेबल्स हैं, उनको रखने के लिए कितनी वैल्यू करता हूँ मैं, और उसके बाद डीप जब ये लेबल्स उतरते गए तो मैं कौन हूँ ये सामने आता है, उसके साथ आप रहें, उसे सीप इन करने दें, फिर वैल्यूज, इस नई पहचान के साथ जब हम वैल्यूज और पर्पस की तरफ जाएंगे, एक नया मैं सामने आऊंगा। आज की कड़ी में इतना ही।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी जिंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो जिंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं तो क्या थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूछें क्या अब जो बीमारी है, जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुजुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे?
1: डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं, आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है वह भी जो डॉक्टर कहते हैं उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है, एक रिसर्च की भी जिससे बहुत लोगों पर भी इफेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोंटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते,
0: साइंटिफिक अगर हम बता पाएंगे।
1: उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे, उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ये रिसर्च की। बल्कि ये पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी, उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज्यादा थे, फ्रूट्स थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा, और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो, थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाय चांस नहीं हो सकता है।
0: दवाई साथ साथ चल रही थी,
1: हाँ, जो नॉर्मल दवाइयां थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भी कीमोथेरापी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एकाध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया, परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ, समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे, कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं है, परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे, हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़
0: तो
1: गया।
0: 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा।
1: हाँ, तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कंप्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपनी इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है,
1: तो सब नहीं कर पाएंगे.
0: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाए, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं,
2: लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है. यू नो, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है दो सिचुएशंस में मिल रही है, पांच में फेल हो रहे हैं, लेकिन दो में मिलना मतलब बाकी पांच में भी मिल सकती है. दैट इट सेल्फ विल मोटिवेट मी. यू नो, सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं. एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से. एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया? मैंने लाया, वो तो वैसे ही है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं. देन इफ आई कैन डू इट वंस, आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन. तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा.
1: एंड दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है. अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात. बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है.
0: तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव, और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फर्क आता हुआ दिखा. मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई खराब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने दो महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए.
2: एक्चुअली वो लोग परिवर्तित होते नहीं है, जरूरी नहीं है, रिश्ता परिवर्तन हो जाता है. क्यों रिश्ता परिवर्तन हो जाता है? मेरा उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, मेरा उनको ब्लेम करना बंद हो जाता है, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं. तो जैसे आई स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, एंड इफ आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, आई फील ओके, दे आर नाइस, यू नो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू चेंज. एक्चुअली दिस कैन ऑल हैपन विदाउट द अदर पर्सन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी चेंज ना क्रिएट करे.
0: हम अपने ऑर्गन्स को ब्लेम करना भी बंद कर सकते हैं.
1: दैट्स ट्रू.
0: अभी तक हम यू नो यही कह रहे थे कि ये हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, यू नो, या पेट ही खराब है.
1: नहीं, पर फिर मैं आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए. मैं पूरा ये कराता हूँ.
0: अच्छा.
1: ना, ऑर्गन से बात करो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, बिकाओ हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया, कि गलत गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोला आई एम सॉरी, प्लीज हील मी. इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस.
0: जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं,
2: हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा. पर इस केस में थोड़ा जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, यू नो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर ना, यू नो. अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम.
0: मैं तो अच्छा,
2: लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माई सेल्फ ऑफ गिल्ट ऑफ द बर्डन. तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीव कर लिया. दैट वाज द पर्पस, कि अपने इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी.
1: और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना. नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं इसी पानी के ऊपर इफेक्ट होती है. तो 90% इज वाटर ओनली. तो जब आप बात करते अपने आप से, तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा, तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है.
0: तो आप कैसे प्रोसेस करें?
1: जो छोटी सी बात है, बहुत गहरी है, सभी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन तीन लेवल पर काम करना चाहिए. एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है. तो पहले देखें कि थॉट्स पर क्या कार्य करें. तो थॉट्स तो ऐसे हो कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें, ये सिंपल भी कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है। अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए। यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुझ आत्मा का घर है वही शांति धाम है, वहां संपूर्ण शांति है। ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो प्यार के विचार करो
0: कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता है।
1: ये भी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूं ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं, और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है। भले मैं अपने संबंधों को भी इंप्रूव कर रहा हूं, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है, कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है तो सुख के विचार करो। तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए, एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही। और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे।
0: और जैसे आपने कहा था कि अगर डायबिटीज की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें?
1: हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटली इससे फ्री हो जाऊं। और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया वो बिल्कुल सत्य है, वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए। आज है ना जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु तो एक्साइटमेंट है, और वहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है। अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी।
0: तो सचिवानी, ये जो अभी बोला मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं उसमें स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस करें।
2: आई थिंक हर रोज हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days of the week, 7 qualities, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है। और 5-10 मिनट ही हम बैठते हैं अभी शुरू शुरू में, वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट, तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज के लिए, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो येस देन दिस इज माई ट्रू नेचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ। तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself?
0: झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कह रही
2: हूँ। क्या मैं अपने आप को एक you know, illusion क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि I'm a peaceful soul? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है। एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो? तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो। तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है। दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स। और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज री इमर्जिंग। तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के। फिर ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम सातों क्वालिटीज के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी।
1: आत्मा को पता है कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो
0: कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ।
1: या तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आत्मा में जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है। आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कई ऐसा फोल्डर है जहां वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर, और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें हैं और वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, तब आवश्यकता है उसको डिलीट करने की। अगर उससे हमने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो यह है, और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। भल पूरा प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक बात आपने कहा कि तीन चीजें आपने कही थी, वन इज थॉट का,
1: थॉट लेवल effect, पर
0: हाँ, एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुलाइज, वो कैसे करना है?
1: पिक्चर्स, हाँ, पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप, कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के, कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं। साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि भाई ये बीमारी आपकी कैसे होती है। जैसे कैंसर के लिए उन्होंने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके, वो चूहे जैसे है।
0: अच्छा,
1: कि भी नहीं लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए।
0: आई मां, सो वी मतलब विजुलाइज दैट,
1: या नो, ही जस्ट एक्सप्लेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बिल्ली जैसे, जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स में पावर है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से पास होते हैं, दे आर बिकमिंग सो पावरफुल कि कुछ वो कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं। और डे बाय डे आपका वो कैंसर छोटा छोटा छोटा होता जा
0: तो
1: रहा है,
0: चूहों की जो तादाद है वो कम
1: वो कम कम कम
0: वो ये विजुअलाइज करना कि एक बिल्ली चूहों को खा रही है,
1: इट्स समथिंग एल्स,
2: ये प्रोबेबली विजुअलाइज द व्हाइट ब्लड सेल ईटिंग द कैंसर, ट्यूमर है,
0: व्हाइट से ब्लैक को खाता हुआ,
2: हाँ, ये ट्यूमर है, आप अपने ट्यूमर को विजुअलाइज कर लो और ये विजुअलाइज करो कि माय ब्लड सेल्स आर ईटिंग अप दैट ट्यूमर। सो पीपल टू डू विजुअलाइज,
1: जैसे आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा था कि नॉट कंफर्टेबल नो विजुअलाइजिंग this, तो ऐसे कहीं हो सकते कि भी एक विजुअलाइजेशन के लिए व्यक्ति कंफर्टेबल नहीं है। कार्लो साइमन टॉन ने भी यही कहा कि आप अपना विजुअलाइजेशन क्रिएट करो, यहाँ तक कि हर एक पेशेंट को कहा आप चित्र भी बनाइए, भले आप चित्रकार नहीं भी है, परंतु आप अपना कुछ भी सिंपल लाइन डायग्राम भी बनाइए और उसको बार बार रिपीट करो।
2: एक बच्चे को एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुअलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो। अब वीडियो गेम में आप कैसे कंसंट्रेट करते हो, मुझे मारना है, मुझे मारना, यू नो हाउ दे प्ले दैट, ही सेड देयर आर दीस हु आर रोमिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंड प्ले द वीडियो गेम विद योर थॉट्स, यू हैव टू किल ऑल दीस पीपल। द चाइल्ड केम आउट ऑफ हिज इलनेस।
1: या आई वंडर, नो इट्स दिस इज अ केस ऑफ ब्रेन कैंसर, ये जो केस
2: ये वीडियो गेम खेला, क्योंकि वो बच्चा था तो बच्चे को कैसी चीज दे, एंड वो ऑब्सेशन बन जाता है ना आपके साथ वीडियो, ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट थिंग,
0: आपको तो विन करना ही है, यू नो यू हैव टू,
2: ही वाज एबल टू कम ओवर दैट प्रॉब्लम।
1: और इवन देखो ये पूरा रियल स्टोरी शिवानी बंजो बता रहे हैं ना, वो बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है, और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भाई तुम वीडियो गेम खेलो, सबको खत्म करो। वो बच्चे ने सचमुच किया, वो बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था। एक मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए, और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वाज क्लियर। बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस भी हो रहा है सचमुच।
0: अच्छा था तो वो करा,
1: मे बी विजुअलाइजेशन।
0: यहां हम बड़े हैं तो हमें बार बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप को झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग, इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या? ये हमें अपनी ताकत शायद नहीं
1: मालूम है,
2: पावर ऑफ द माइंड नहीं मालूम।
0: इट लुक्स कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे खेल खेल रहे हैं क्या?
1: उसमें भी उन्होंने सचमुच देखा भी ये सब पेशेंट्स में कि भी उन्होंने अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की, कईयों के चित्र में ही आता था कि इट इज नॉट पॉसिबल। है ना, जैसे साइमोंटन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे, और मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे हैं, है ना, कि भाई वो से लड़ रहे हैं, तो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते तो नहीं मरे।
0: तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है,
1: मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर, यह समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति
0: पावर
1: है,
0: हाँ,
1: यह कुछ भी कर सकता है सचमुच।
2: जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना इजियर हो जाता है। दैट इज व्हाई इट्स अ बिग यू नो डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट,
0: क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज्यादा,
1: और क्लैरिटी। दूसरा भी पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी। कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो करते रहो, इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो, अच्छा। उसको देखते रहो देखते रहो।
0: तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब कैसे करें?
1: अच्छा बताता हूँ, देखो हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन, तो अगर ये सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है हाँ, उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी होगी, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा। अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है,
0: वो एक्सपैंड कर रही है,
1: क्योंकि मैं शांत हूं अब, मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड, और मैं रिलैक्स्ड हूं, तो सिंपैथेटिक जो स्टिम्युलेशन है वो भी कम हो गया, वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे अभी 50 हो गए, और वो हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माई ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन, इट रियली हैपेंस।
0: जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुलाइज करें तो इम्पैक्ट होता है,
1: तो इम्पैक्ट होगी, हाँ हाँ, इवन इमीडिएट तो इम्पैक्ट हो सकती है।
0: अच्छा, और डायबिटीज है अगर,
1: यहाँ नहीं है, हार्ट का ही देखो, अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को उसने ना करके दिखाया, उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई, फिर वो कुछ करता था उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82। डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है। फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास ये माइंड में पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो। उसने कहा सिंपल बात है, भी मैंने समझा था कि भी मैं मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था, जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है, फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो बस उसको याद करता मेरी हार्ट रेट कम हो जाती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस, और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं कर सकता हूँ। सो ऑल्दो दिस इज वन केस,
0: इवेंट में चले गए, विजुलाइज किया उस इवेंट को, एक्चुअली हम अननोइंगली कितनी बार तो कर रहे हैं,
1: कर रहे हैं।
2: लेकिन ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुलाइज करते हैं,
0: दुख वाले थे, नेगेटिव थे, गलत थे,
2: तो देखो डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज, तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया।
0: और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं,
1: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है, और करीब 1500 जितने पेशेंट्स कि जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराए, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या, तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहां शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशंस है जिससे इफेक्ट हुई, उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं, और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते, कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते, एनर्जी देते, और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके पावरफुल रिजल्ट है, यहाँ तक कि वह डॉक्यूमेंटेड केसेस है। फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई, और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफी रिवर्सल हो गया। यहां तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। सो दैट प्रूव्स दैट नो दोज रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
0: व्हाट आर द विजुअलाइजेशन?
1: या विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वो कम हो रही है। एक तो सिंपल ही है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल कॉन्सेंट्रेट वे में। हाँ, लेजर रेस की तरह जा रही है और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है।
2: इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होते हैं ना,
1: तो कैसे
2: क्लीन करते हैं,
0: एक केमिकल भी कई बार डालते
2: हैं पाइपलाइन को क्लीन करना है। दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है। माय ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ। थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया, अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट 7 days वहां जाकर करते हैं एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है एंड 6 महीने के बाद उनके सारे टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं। वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट।
0: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है। तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें। आपके द्वारा हमें पता चल रही है चीजें। थैंक यू सो मच। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स, जिंदगी की सारी स्किल्स सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफर में सीखें। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी,

0: अव्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मीन मृदंग ठाज जपा जित का पद नाच जित कृष्ण कन्हैया गोपी के संग राज बजावत नाच जावत ताता ते या ते ते या ते ते या गेंद से गेंद की ली यमुना विच नित्य कियो तहनाग न थैया गोप के इंद चलो विच ऊपर गोप सर्प सब हा हा थैया लाय उठाय दियो गिर नक पर बंक बजावत गेंद चलैया जग के मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग
1: बेटा।
2: यस पापा।
1: बरखोरदा।
0: यस डैडी।
1: अपनी भाषा में बोलो।
0: अरे हाँ सॉरी।
3: नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी।
4: नमस्ते।
3: जय हिंद जय हिंद ओ पिताजी।
4: जय हिंद।
3: नमस्ते नमस्ते है सबको।
5: नमस्ते
3: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते।

0: रहवा बेटा।
1: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी, नमस्ते जय हिंद ओ पिताजी,
0: जय
1: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं, हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM के इस ज्ञान चिंतन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर विचार करने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है और हर मन में कभी न कभी प्रश्न बनकर उभरता है, कर्म और भाग्य आखिर हमारे हाथ में क्या है। अक्सर जीवन में जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं मेरे अच्छे भाग्य हैं, और जब कुछ विपरीत हो जाता है तो तुरंत कह देते हैं शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या सच में हमारे जीवन केवल भाग्य के भरोसे चलता है या फिर हमारे कर्म भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन हमें एक बहुत गहरी और सुंदर बात सिखाती है, वह है भाग्य और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। भाग्य वह है जो हमें आज की परिस्थितियों के रूप में मिला है, और कर्म वह है जो हम इन परिस्थितियों में सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आज जो हमारे पास है वह बीते हुए कर्मों का फल है, और आज हम जो कर रहे हैं वही आने वाले कल का भाग्य बनेगा। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, हम हर परिस्थिति को अपने अनुसार नहीं बदल सकते लेकिन हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। मान लीजिए रास्ते में अचानक बारिश आ जाए, बारिश हमारे हाथ में नहीं है लेकिन उस बारिश में हम गुस्सा करें, शिकायत करें या शांति से छाता खोलकर आगे बढ़े, यह पूरी तरह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। यही अंतर है भाग्य और कर्म के बीच। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें फल नहीं मिलेगा बल्कि इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता छोड़कर जब हम सही कर्म करते हैं तो कर्म की गुणवत्ता बढ़ जाती है और मन तनाव मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। यहाँ समझने की आवश्यकता है कि कर्म केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी नियत ये सब भी कर्म का ही रूप है। अगर कर्म डर, क्रोध, अहंकार या स्वार्थ से किया गया है तो उसका फल भी वैसा ही होगा, लेकिन यदि कर्म सकारात्मक सोच, सच्ची भावना और सेवा भाव से किया गया है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी उसका फल तुरंत नहीं मिलता लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है। श्रोताओं, भाग्य हमें अवसर देता है लेकिन उस अवसर का उपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्म तय करते हैं। भाग्य हमें मंच देता है लेकिन उस मंच पर हम कैसा अभिनय करेंगे यह हमारे हाथ में है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो स्वयं से यह मत पूछिए कि मेरा साथी ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए इस परिस्थिति में मुझे क्या श्रेष्ठ कर्म करना है। यह प्रश्न हमें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाता है। आइए आज से यह निश्चय करें कि हम भाग्य को दोष देने के बजाय हर परिस्थिति में श्रेष्ठ कर्म करने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि अंततः कर्म हमारे हाथ में है और वही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसी चिंतन के साथ मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें इसी तरह प्यार से, खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है, फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।
2: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
3: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आवाज ऐकणे साठे करणं आतुर झाले.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
2: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. सिस्टर शिवानी इज विद अस. नमस्कार सिस्टर.
3: ओम शांति.
2: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
3: थैंक यू.
2: पिछले एपिसोड में मैं आपसे बात कर रहा था कि आपने कहा था कि मेरी पास्ट कर्मा की और कार्मिक अकाउंट की बात, और मैंने आपसे कहा था कि मैंने जो मेरे ओल्ड बिलीफ जो मेरा था कि गुस्से से काम निकलता है, डांट से डिसिप्लिन होता है, उस वजह से जो मैंने लोगों को दुख पहुंचाया, मेरी पत्नी को, बच्चों को, आपने उसका आंसर मुझे जो दिया मेरे जहन में मतलब क्लियर नहीं हुआ. मैं चाहूंगा मुझे आप थोड़ा बताएंगे कि मैं क्या करूं कि उसको, जैसे मैंने बैंक से उधार लिया, पैसे चुका दिए विद इंटरेस्ट भी दे दिया, तो अब क्या करूं, वो जरा क्लियर नहीं हुआ था लास्ट टाइम.
3: सी, पास्ट कार्मिक अकाउंट सिर्फ इस जन्म के नहीं है, सिर्फ इस जन्म के हमें मालूम है. राइट right? आप कह रहे हैं ना, मैंने अपनी वाइफ को सपोज इस जीवन में डांटा, अपने बच्चों को डांटा, अपने स्टाफ को डांटा. लेट्स टेक 5 पीपल, लेट्स से 6-8 लोगों को इस जन्म डांटा. ये सिर्फ हमें इस जन्म के मालूम है, पिछले भी हम बहुत कुछ करके आए हैं. राइट अब हम एक एक पे नहीं ऐसे कर सकते, ये मैंने किया था अभी मैं क्या करूं, वो मैंने किया अभी मैंने क्या. इम्पोर्टेंट इज अब मैंने क्या करना है. क्या मैंने किया था, डोंट हैव टू गो देयर, बिकॉज यू विल ओनली गो इन टू पेन बाय सीइंग दैट. पास्ट इज ओवर. जहां खत्म हो चुकी है बात, जो कंट्रोल में नहीं है, वहां नहीं जाना है. नथिंग विल कम आउट ऑफ इट. नथिंग मीन्स एब्सोल्यूटली नथिंग. कोई भी बेनिफिट नहीं है उस बारे में सोचकर, एक्सेप्ट फॉर गोइंग इन टू गिल्ट. इम्पोर्टेंट इज आज, क्योंकि आज मुझे अवेयरनेस आई है, आज मुझे नॉलेज आई है, आज मुझे लॉ जो पता था लेकिन उसकी एक और डीपर क्लैरिटी आई है, एंड मुझे उसको यूज करना है. अब दो वेज में यूज करना है. एक, अब अटेंशन रखना हर थॉट, वर्ड एंड एक्शन पे, वो एक. एंड सेकंड, जो इधर से आ रहा है मेरे पास, मतलब अगर अब मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, मुझे कोई धोखा दे रहा है, नॉट नेसेसरी दोज 5-6 पीपल, एनीबडी, एनीवेयर, अगर अब मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, उस परिस्थिति को मैंने कैसे फेस करना है. मेरा फोकस प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में नहीं.
2: अब इतना प्यार सुख शांति दो कि पुराना सब लोग भूल जाएं.
3: वो भी नहीं सोचना है. वो भी नहीं सोचना है. पास्ट में नहीं जाना है.
2: गिल्ट में भी नहीं जाना.
3: गिल्ट में क्यों नहीं जाना है? सी, आई एम सेइंग अब मुझे हर थॉट, वर्ड, एक्शन कैसा रेडिएट करना है, क्लीन, ब्यूटिफुल. और साथ साथ मैंने गिल्ट भी क्रिएट कर लिया, तो मेरा थॉट, वर्ड, एक्शन कैसा हो जाएगा? वर्ड एक्शन नहीं भी हो तो थॉट कैसा हो गया? पेन. इसलिए गिल्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए सेल्फ हेट्रेड भी नहीं क्रिएट कर सकते, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि देना चाहते हैं क्लीन ब्यूटिफुल एनर्जी, तो उसमें गिल्ट डाइल्यूट नहीं हो सकता. नेगेटिव एलिमेंट नहीं लाना है. सो डोंट थिंक अबाउट द पास्ट. कार्मिक फिलोसफी कैन नॉट वर्क लाइक दिस. ये किया था उसके लिए ये करना है, ये किया था उसके लिए ये करना है. इट्स नॉट अ बिजनेस डील.
2: ये नहीं करना है.
3: पास्ट फिनिश्ड है. इट्स ओवर. आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट्स लाइक गलत रास्ते चले थे, अभी नहीं कुछ कर सकते, वो तो चल गए, हो गया, कर दिया वो. अब किस पे रास्ते पे चलना है?
2: ये शब्द कहाँ से बना? पश्चाताप.
3: पश्चाताप मीन्स रियलाइजेशन. पश्चाताप इज नॉट गिल्ट.
2: पछताना नहीं है.
3: पछताने से क्या होगा? वी सॉ दैट डे, जितनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, सोल पावर कम होती जाएगी
2: और कमजोर हो जाएगी.
3: कम हो जाएगी. तो गिल्ट इज नॉट वेरी नाइस एनर्जी. गिल्ट इज सेल्फ, सेल्फ अब्यूज, सेल्फ एंगर. तो सोल पावर कम हो रही है. हमें तो वो पावर चाहिए ना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए. तो हम अपनी पावर को कम कैसे कर सकते हैं? कर दी गलती मैंने, हो गई, फिनिश्ड, नाउ स्टार्ट अगेन, फुल स्टॉप.
2: अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले
3: था. अब मैं ये हूँ. क्या था वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या किया वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है. अब मुझे क्या करना है? ये भी होगा कि पास्ट के कार्मिक अकाउंट सामने आएंगे, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सब ने अनेक गलतियां की हैं, दुख दिया है. आप सिर्फ इस बर्थ का देख रहे हैं, लेकिन वी हैव डन सो मच, सो मच, सो मेनी टाइम्स. वी कुड हैव एक्चुअली डन मर्डर एंड कम हियर एंड वी डोंट नो. हो सकता है ना, कुछ भी किया हो सकता है.
2: अच्छे भी किए होंगे ना.
3: अच्छे तो किए ही है, बट मुश्किल तो तब होती है जब बुरा वाला वापस आता है ना. जब अच्छा वाला वापस आता है, आज शरीर मिला है ठीक, ये अच्छे कर्म का रिजल्ट है. श्रेष्ठ परिवार में पैदा हुए, रोज खाना खाने को है, अच्छा काम है, वातावरण अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, ये सब श्रेष्ठ कर्म. लेकिन इसको हम थोड़ी सोचते हैं कि ये सब मुझे क्यों मिला है. प्रॉब्लम कब आ रही है, जब थोड़ा सा रॉन्ग वाला मेरे सामने वापस आता है. लेकिन उस समय अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज उसको फेस करने के टाइम थोड़ा सा चैलेंज आएगा, क्योंकि हमारा संस्कार हमें उसको एक अलग तरह से फेस करने के लिए कहेगा कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं भी तो कुछ बोलू ना फिर ऊपर से, मैं भी तो कुछ करू ना फिर उसको सामना करने के लिए. किसी ने मुझे धोखा दिया, मैं नहीं कुछ करू उसके रिटर्न में. यू नो दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम. ऑन माई ओन मैं ध्यान रखूंगा कि मेरा अब हर कर्म अच्छा है, सबको सुख दे रहा है. वो इजी है, वो फिर भी हम अटेंशन रख के हम कर सकते हैं. किसी के साथ झूठ नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं. दिस इज, अगर सिर्फ गाड़ी एक तरह से चल रही हो ना, तो इजी है कि वर्तमान प्रेजेंट समय के कर्म का ध्यान. क्रिटिकल तब आता है जो पास्ट कार्मिक अकाउंट सामने आता है और काफी बड़े रूप से आ जाता है, कि कोई बड़ा नुकसान, बड़ा धोखा, बड़ा कोई अचानक से आके हमें चीट करता है, जिससे हो सकता है मेरी जीवन में छोटी मोटी नहीं लेकिन बड़ी हलचल आ जाए, उथल पुथल आ जाए. उस समय हमारा पुराना संस्कार उल्टा जवाब देने का, रिएक्ट करने का, रिटालिएट करने का, धोखे का जवाब धोखे से देने का, गलत का जवाब बदले से देने का, उसने मुझे नीचा गिराया तो मैं भी उसको नीचे गिराऊं, यू नो, ऑफिस पॉलिटिक्स, इवन स्मॉल थिंग्स, उसने मेरे बारे में गलत फैलाया, मैं भी उसके लिए गलत फैलाऊं, ये आएगा, ये वाला समय आएगा. और तब मन कहेगा मैं ये अच्छा करूं सिर्फ सबके साथ, लोग मेरे साथ गलत करे, मैं अच्छा करूं, ऐसे कैसे चलेगा. आसपास के लोग भी यही बोलेंगे, तुम अच्छा ही करते जाओगे सिर्फ सबके साथ, ऐसे कैसे चलेगा, वो गलत कर रहा है, वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम अच्छा करते जाओगे. दीज आर दोज क्रिटिकल मोमेंट्स. इस टाइम पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि अब मैं जो कर रहा हूं, ये जो मेरे सामने गलत आ रहा है, ये मेरे पास्ट गलत का रिटर्न है. मेरे पास्ट गलत का रिटर्न है. क्या किया था, कब किया, लेट इट बी, दैट डजंट मैटर. गलत आ रहा है क्योंकि गलत कभी ना कभी किया था. अब चाहे वो कितना भी बड़ा गलत आ रहा है मेरे सामने, अब नहीं गलत का जवाब गलत देना है. दिस इफ वी कैन टेक केयर, हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहा है. देयर इज नो अदर वे.
2: जो गलत पहले आया और गलत का जवाब गलत नहीं दिया, तो कार्मिक अकाउंट क्लोज हो जाएगा.
3: कार्मिक अकाउंट न्यू क्वालिटी का क्रिएट हो गया, एंड इसलिए हमने
2: पुराना छुपता हो गया हिसाब,
3: फिनिश हुआ ना, आ गई ना बात. सी, हर पल क्या होगा, पुरानी बात वापस आ रही है, सिचुएशन वापस आ रही है, उसी पल हम किस तरह से उसको फेस करते हैं, वो प्रेजेंट कर्मा क्रिएट हो रहा है और उससे मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर डिसाइड हो रहा है. तो पुराना गलत सामने आया, आज आप जो डिसीशन लेंगे और जिस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आपने पास्ट को फिनिश करके एक नया प्रेजेंट क्रिएट किया.
2: आपकी भाषा में जो मैंने एक नेगेटिव तीर मारा था आपको, ठीक है, वो डबल होके या सिंगल होके या ट्रिपल होके जो भी मुझे वापस आया, अब मुझ में वो शक्ति है कि मेरे ही नेगेटिव तीर जो आपके पास से मुझे वापस आए, उसको मैं वापस कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लेके रखूं अपने पास और वापस पॉजिटिव तीर भेजूं.
3: नेगेटिव तीर मेरे पास वापस आ रहे हैं.
2: हाँ, कैन आई कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड सेंड इट बैक अगेन?
3: आई डोंट कन्वर्ट नेगेटिव तीर इनटू पॉजिटिव.
2: फिर
3: नेगेटिव, सपोज आपसे नेगेटिव तीर मुझे आ रहे हैं, ठीक है, उसको नहीं कन्वर्ट करती मैं, उसके रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव तीर क्रिएट करती हूँ.
2: वही हो गया ना, ये तो मर गया.
3: डिफरेंट थिंग.
2: क्यों? जीरो हो गया ना.
3: नहीं, जीरो नहीं हुआ ना अभी. अच्छा. हमने कुछ एपिसोड पहले आपने एक बहुत सुंदर चीज हमें पढ़ के सुनाई थी, सिचुएशन आप पर कैसे इफेक्ट करती है. और फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं आर टू डिफरेंट थिंग्स.
2: हाउ यू रिस्पॉन्ड
3: टू डिफरेंट थिंग्स है, पहले सिचुएशन का इफेक्ट एंड फिर आपका रिएक्शन, ये दो अलग चीजें हैं. सपोज किसी ने मुझे धोखा दिया, अब मैं रोई, हर्ट हुआ, बुरा लगा, ये है सिचुएशन का इफेक्ट. फिर मैंने कहा बट इट्स ओके, आई विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, ये है रिएक्शन. सो टू थिंग्स हैपेंड ना, फर्स्ट इफेक्ट बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट क्रिएट कर दिया, अंदर गुस्सा भी आ गया. अब रिस्पॉन्ड करना है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं भी गलत करूं, या अब मैं बोलूं नहीं अभी मैं कर्म सही करूंगी. लेकिन इफेक्ट तो आया ना, मतलब जो आपने नेगेटिव तीर भेजा था उसने तो मुझे अब फिर से घायल तो किया. लेकिन जब नेक्स्ट मैंने क्रिएट करना था उस पर मैंने थोड़ा सा अटेंशन रख लिया. अब हम दोनों पर अटेंशन रखेंगे कि इफेक्ट भी कम होता जाए ताकि क्रिएट करने की जो शक्ति चाहिए वो बढ़ी हुई होगी. तो दोनों वेज, आपका नेगेटिव आ रहा है उसको कैसे फेस करना है एंड फिर पॉजिटिव कैसा क्रिएट करके देना है. इसमें अब इफ वी कैन कीप अटेंशन कि चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, नो सम पीपल विल से करोड़ों का मुझे धोखा दे दिया, मेरा पूरा परिवार नुकसान में चला गया, छोटी मोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात. किसी के घर में लाइक जैसे कुछ दिन पहले आई वॉज इन अ प्रोग्राम, तो एक बहन आई प्रोग्राम के बाद एंड कही चाहे किसी ने कुछ भी किया हो तो उसको क्षमा करेंगे. अभी सेड देयर इज नो अदर वे, अगर आपको वो कार्मिक अकाउंट सेटल करना है, नहीं करना तो वो आप अभी नफरत करो फिर वो कंटिन्यूड है. तो कहा मेरे भाई ने मेरे पेरेंट्स का मर्डर किया, वेरी गुड नाइस फैमिली. दैट लेडी सेड 14 साल से मैं अपने भाई से नहीं बात की है, तब से मेरे भाई ने दोनों मम्मी पापा
2: मर्डर कर दिया,
3: मर्डर कर दिया
2: माँ बाप का.
3: यस,
2: बच्चे ने,
3: बेटे ने. कहती है नाउ 14 साल से मैंने उससे बात नहीं की.

0: अब जो बदला या नफरत या ये जो एनर्जी क्रिएट होगी, ये आपका उस आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट बहुत डीप क्रिएट हो रहा है। तो ये जो उसने उनके साथ किया वो तो उसका कर्म है और उनके भी पास्ट कर्म का रिटर्न है, लेकिन आपने अब क्या कर्म क्रिएट करना है। इवन अगर आपको बात नहीं करनी है उससे, यू नो सम केसेस वी से नो आई डोंट वांट टू यू नो टॉक टू दिस पर्सन, वर्क विद दिस पर्सन, मेरा नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्ट नहीं करे, लेकिन उनको अपने चित पर नहीं रखे, नहीं बात करनी, नहीं बात करे, नहीं मिलना चाहते, नहीं मिले, लेकिन नफरत
1: नहीं करनी है
0: वो नहीं पकड़नी है, वो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो रहा है।
1: ना, मुश्किल काम दे रहे हैं आप।
0: नहीं, मुश्किल नहीं है। अगेन जब
1: माय
0: हम
1: मदर, हम लोग साथ रहते थे कि जब तक वो आखिरी दम तक मेरी माँ, हम एक ही घर में रहते थे। मेरे हम लोग इतनी बड़ी फैमिली, कोई भी फैमिली मेंबर आके कभी भी मेरी माँ को रुला के चला जाए ना, वो मुझे 8-8 दिन, 9-9 दिन, मतलब महीनों नहीं भूलता था। और मैं कितना बात ही नहीं करता था कभी, उनका फोन भी आता तो नहीं उठाता था। तो ये तो मर्डर की बात है।
0: से चित पर रखने से अपने एक ने दूसरे के साथ गलत किया, राइट? जैसे आपने कहा, सपोज आपके एक ब्रदर आया, मदर को कुछ कहकर गए, लेट्स टेक सिंपल, चलो मर्डर छोड़ो एक्सट्रीम, ब्रदर आया मदर को कुछ कहकर गए, मींस एक आत्मा आई दूसरे आत्मा को कुछ कहकर गई, दूसरी आत्मा हर्ट हुई उसकी वजह से, राइट? एंड आप थर्ड आत्मा है यहाँ डिटैच्ड। अभी तो ये कार्मिक अकाउंट उन दोनों का है, अभी आपका तो कार्मिक अकाउंट ये था ही नहीं उसमें बीच में, ये इन दो आत्माओं का कार्मिक अकाउंट था, आपका कार्मिक अकाउंट नहीं था, ये दो का था पहले, उनका उनका कुछ लेन देन था पास्ट का, जो वो आए और कुछ ऐसा कह दिया जो इनको बुरा लग गया। ठीक है, अब आप इन दोनों आत्माओं से कनेक्टेड है, ब्रदर से भी मदर से भी। जब आपने एक आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ ये कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, आपने जो गुस्सा क्रिएट किया या नफरत क्रिएट की और लंबा क्रिएट किया, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, तो आपने क्या क्रिएट किया फिर? फिर आपने क्या क्रिएट किया वो 1 महीने के अंदर?
1: गुस्सा क्रिएट किया, नफरत
0: नहीं,
1: क्रिएट
0: पर
1: की।
0: आपने भी तो उस आत्मा के साथ एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया।
1: मैं तो उसको नेचुरल समझूंगा ना, मेरी माँ को दुखी देखा मैंने।
0: हाँ, तो ये नेचुरल ही सब चल रहा था, बट दिस इज ओनली व्हाट वी सेड कि अब उस लॉ को हमेशा साथ रखना है, अब उस लॉ को हमेशा सामने रखना है कि मुझे अब श्रेष्ठ कर्म करने। आप कह रहे हैं ना, अगर मैंने पास्ट में इतनी गलत किया है, अब मुझे कैसे ठीक करना है उसको, उसमें तो जाना ही नहीं है, प्रेजेंट में ही इतना है करने के लिए, सारा दिन इतना हर स्टेप पर है करने के लिए, प्रेजेंट में, प्रेजेंट पे करते जाएंगे ना तो ही पास्ट सेटल हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में पास्ट ही तो वापस आ रहा है हर क्षण, हर क्षण प्रेजेंट में पास्ट वापस आ रहा है, तो पास्ट जब आ रहा है उसको ठीक से फेस करते जाएंगे। अब इसी को फिर से ले, ब्रदर मदर के साथ कुछ गलत कर रहा है, वन अंडरस्टैंडिंग, दो आत्माओं का कार्मिक अकाउंट है, सेकंड मेरा क्या रोल है इस समय, बेटा है ना, तो मेरा क्या रोल है, मेरा रोल है मदर की हीलिंग, यही करेंगे, हीलिंग करेंगे, वो दर्द में है, रो रही है, उदास है, परेशान है, मुझे हील करना है। हील करने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा?
1: मुझे खुद दर्द में नहीं होना
0: हाँ,
1: पड़ेगा।
0: कंपैशन, कि ठीक है ना, बोल दिया ना उसने आपको गलत, ठीक है, वो उसका संस्कार है, उसको जल्दी स्टॉप करना है, उसका चिंतन जो वो बोलकर चले गए, एंड इम्पोर्टेंट है आपकी स्थिति को अब हमें ठीक करना है। तो पूरा फोकस जो गलत करके गया उस पर चिंतन, उसके प्रति नफरत, उसके प्रति गुस्सा, वो नहीं, लेकिन जो हर्ट है उनकी स्थिति को कैसे ठीक करना है, देन वी आर प्लेइंग द राइट रोल, इंस्टेड ऑफ सेइंग नेचुरल है ना, हर्ट होगा, गुस्सा आएगा, नफरत होगी, वो तो फिर एक नया ही कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। हमारा कर्म क्या होना चाहिए, जो दर्द में है उनके साथ कैसे हमें उनकी हीलिंग करनी है, फोकस द एनर्जी टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन, फोकस द एनर्जी टुवर्ड्स हीलिंग। लेकिन अगर हम ही मदर के साथ बैठ करके, जी वो ऐसा है, वो ये करके चले गए, वो आपको ये बोलकर चले गए, उससे तो मुझे बात ही नहीं

0: करनी चाहिए, उसको तो मैं आने ही नहीं दूंगा फिर से घर में, क्योंकि नॉर्मली और ये हर फैमिली में रिलेटिव्स के बीच ये सब हो रहा है बैठकर, तो कार्मिक अकाउंट क्या हुआ? एंड फिर हम कह रहे हैं हमें खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, और फिर हम कहते हैं वो आया ना मेरी खुशी गई, वो आया हमारे पूरे घर की खुशी चली गई।
1: अब वो आने वाला है ना,
0: हाँ
1: अभी सारे घर का सत्यानाश कर देगा,
0: वो
1: लेकिन क्या
0: आएंगे,
1: करूं, अभी मुझे बर्दाश्त करना है,
0: इवन
1: रिश्तेदार
0: अगर
1: है।
0: वो आएंगे तूफान आएगा पूरे घर को हिलाकर चला जाएगा, हमें उसके बाद क्या करना है? फिर वो घर को खड़ा करना है। सपोज वो आए पूरा घर ऊपर नीचे हो गया, हलचल आ गई पूरी घर में, गए ना, अब हमारा रोल क्या है? मुझे अपने घर को वापस कंस्ट्रक्ट करना है, बजाय कि वहां बैठकर रोना है, गुस्सा करनी है कि तूफान आया ही क्यों, वो आए
1: आने
0: ही
1: नहीं
0: क्यों।
1: दू तो बोलो भाई तुम्हारे से बात नहीं करनी, मत होगा।
0: अगर उतना भी राइट ओके फाइन, विद एवरी कार्मिक अकाउंट, डिवोर्स अगर हो रहा है, जॉब अगर हम छोड़ रहे हैं, किसी के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, हर एक के साथ हमारा संस्कार मैच नहीं होने वाला है, तो कई केसेस में जहां बहुत एक्सट्रीम टकराव है, विड्रॉ करना इज फाइन, लेकिन फिर विड्रॉ फ्रॉम हियर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती, क्यों? आपके और मेरे वैल्यूज प्रिंसिपल्स बिल्कुल डिफरेंट है, आपके मेरे संस्कार बिल्कुल डिफरेंट है, एंड समहाउ मैं अपने को अभी आपके साथ काम करने के लिए मोल्ड नहीं कर पा रही हूँ, सो इट्स बेटर वी डोंट वर्क टूगेदर, लेट्स से ओके वी ब्रिंग इट हियर।
1: बिजनेस में कई बार होता है, लोग कहते विल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त रहेंगे, मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन आपस में बिजनेस हम नहीं कर सकते।
0: क्लियर,
1: वेरी क्लियर, एंड अच्छे अच्छे दोस्त
0: हम काम नहीं इकट्ठा कर सकते तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन गुस्सा, नफरत, रिजेंटमेंट, रिवेंज, डिवोर्स, हम नहीं रह सकते इकट्ठे। एक्सट्रीम हमने ट्राई कर लिया, सब ऑप्शंस ट्राई कर लिए, नहीं हो पा रहा, ये भी एक कार्मिक अकाउंट है, तो ठीक है वी चूज टू बी सेपरेट। बट देन यहां अगर कार्मिक अकाउंट सेटल करना था, ठीक करना था, तो फिर वो जो रिजेंटमेंट पकड़ी हुई है वो भी तो फिनिश करनी होगी। अभी क्या होता है, जितना हम अलग हो जाते हैं उतना अंदर का तो वो नफरत और गुस्सा अभी भी पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़, उनका याद ही ज्यादा उन लोगों को करते हैं जिनसे हम अलग होकर काम नहीं हुआ, वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हम अलग भी होते हैं, यहाँ क्लीन कार्मिक अकाउंट मींस यहाँ स्लेट क्लीन चले, यहाँ हो जाए अच्छा बहुत बढ़िया, एक्सट्रीम केस नहीं हो देन ऑल्सो ओके, बट यहाँ नहीं। दिस इफ वी स्टार्ट टेकिंग केयर कि अंदर चित साफ होती जा रही है, मतलब आपका पास्ट कार्मिक अकाउंट चुक तो होता जा रहा है, एंड अब आप इसको बड़े से बड़ी सिचुएशन में अप्लाई करो, बड़े से बड़ी। अब किसी भी सिचुएशन में ये नहीं कहना नेचुरली गुस्सा आएगा, मदर को कुछ बोल के गया, नेचुरली अभी तो मदर को बोला।
1: मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया था, जब आपने मुझसे कहा ना कि एक औरत आई थी, कह रही थी कि 14 साल से मैं अपने भाई से बात नहीं की, क्योंकि उससे के भाई ने माँ बाप का ही मर्डर कर दिया।
0: ठीक है, लॉ ऑफ कंट्री ने भी अपना काम कर लिया होगा, लॉ ऑफ कर्मा भी उस आत्मा पर काम करेगा, एक्सट्रीम केस है ना ये, तो कंट्री का लॉ भी काम करेगा, कर्मा का लॉ भी काम करेगा। मैंने गुस्सा और नफरत क्रिएट करके क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, दिस आई हैव टू आस्क, वॉट एम आई गेटिंग आउट ऑफ डूइंग दैट? वन, आई एम लिविंग इन पेन, आई एम लिविंग इन पेन, फर्स्ट फॉरगेट वो जिनके प्रति गुस्सा और नफरत क्रिएट किया, वॉट अबाउट मी इफ आई हैव जस्ट लाइक दिस बिटरनेस होल्डिंग ऑन टू एंगर एंड रिजेंटमेंट, वॉट गुड इज इट क्रिएटिंग? क्या हमारा, हमें ये पूछना होगा अपने आप से कि वो रिजेंटमेंट और गुस्सा पकड़ के वॉट इज कमिंग आउट ऑफ इट, या तो कुछ हो रहा,
1: रिजेंटमेंट पकड़ के रिजेंटमेंट इज कमिंग
0: नहीं,
1: आउट ऑफ
0: वॉट
1: इट,
0: इज कमिंग, मतलब कि क्या,
1: नफरत और बढ़ रही है।
0: हाँ, अगर हमें नई बात करनी उनसे, कभी नहीं बात करो जीवन भर, ठीक है उनकी बात इतनी बड़ी थी कि नाउ आई कैन नॉट टॉक टू दैट पर्सन, ओके, बट यहां पकड़ के चित पे लोगों से बात करते हुए नफरत रेडिएट करके, व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, वी हैव टू आस्क दिस ना, इसका व्हाट इज इट? क्या मेरे नफरत पकड़ने से उनका कोई नुकसान होने वाला है? पहले मेरा नुकसान होने वाला है, एंड होगा क्या, सपोज अब इसके

0: इसमें वो लेडी है, भाई से तो 14 साल से बात नहीं की, लेकिन रिजेंटमेंट नफरत पकड़ के रखा तो सोल पावर
1: कमजोर
0: कम
1: हो गया।
0: हो रही है। अब 4 लोग उसके भी तो परिवार में हैं, 4 लोग उसके परिवार में जिनके साथ तो कार्मिक अकाउंट अच्छा है ना, हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, अपनी मदर इन लॉ है, लेकिन आत्मिक शक्ति
1: वो लोग भी सोचते होंगे ना भाई कब तक तुम ये पकड़ के रखोगे
0: उनको नहीं
1: घर में।
0: मालूम है, सपोज उनको नहीं मालूम है अंदर
1: लेकिन
0: है।
1: इस ये तो अशांत है ना, इस अशांति का असर अपनी पति पे, बच्चों पे, तो माहौल पे तो हो रहा है ना।
0: कैसे होगा असर, क्या असर होगा?
1: ये कांस्टेंट वाइब्रेशंस जो दुखी के, इरिटेशन के, एंगर के इस औरत से निकल रहे होंगे भाई के
0: सिर्फ
1: प्रति।
0: वाइब्रेशन नहीं निकल रहे होंगे, आत्मिक शक्ति जब कम होगी तो इनके साथ भी वो छोटी छोटी परिस्थितियों में जल्दी रिएक्ट करेंगे। किसी ने कुछ कहा जल्दी इरिटेशन, किसी ने कुछ कहा जल्दी हर्ट, जल्दी दुख, क्योंकि आत्मिक शक्ति कम हुई हुई है, क्योंकि 14 साल से वो पकड़ के रखा है। तो एक कार्मिक अकाउंट अच्छा नहीं था, उसको पकड़ के रखा, तो ये जो अच्छे थे, ये पास्ट के अच्छे थे, लेकिन इनको प्रेजेंट में क्या कर दिया? दिस वी विल ऑलवेज सी, दैट्स माई बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर के बेनिफिट क्या हुआ, वो रीजन जिसको हमने नेचुरल बोल दिया। वी हैव टू ऑलवेज सी कि जो हम कर रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या क्या आ रहा है, उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट पावर, टॉलरेंस पावर
1: मन
0: कम
1: में
0: हो जाएगी।
1: अशांति, घर पर अशांति, हेल्थ खराब, कांस्टेंट वाइब्रेशंस भाई के प्रति, कितने मतलब नफरत से जा रहे होंगे, कितना मतलब अकेले में रोते होंगे, ये भी नहीं बोल सकते अपने पति से कि देखो मेरा सगा
0: देखो,
1: भाई
0: अगर
1: ऐसा है।
0: बोल भी सकते हैं, सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फाइनली सब लोग उस बारे में सोच सोच के आपको हर बात के लिए इजी तो नहीं कर देंगे ना आपके जीवन। उनकी आपके साथ जो संस्कारों में टकराव आएगी वो तो आएगी ना, लेकिन हर बात में वो ये तो नहीं सोचेंगे ये उस वजह से उदास है तो हमें इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सारा दिन कि एक कार्मिक अकाउंट में अपनी ताकत को इतना ना कम कर दें कि दूसरे कार्मिक अकाउंट्स जो अच्छे चल रहे थे उन पर भी उसका इफेक्ट आने लगे। जैसे नॉर्मल घर में अगर हम देखें, सास बहू के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो बहू की मन की स्थिति उसके बच्चे पर पड़ने वाली है, डायरेक्ट होगा इन्फ्लुएंस। अब माँ और बच्चे का रिश्ता तो अच्छा है ना, वो कार्मिक अकाउंट तो अच्छा है, लेकिन मदर इन लॉ से कॉन्फ्लिक्ट में बार बार आने से, फिर उस बात को लंबा पकड़ने से, दुखी रहने से, फॉरगिव ना कर पाने से इफेक्ट बच्चे पर आएगा। वन कार्मिक अकाउंट विल इन्फ्लुएंस मेनी अदर कार्मिक अकाउंट्स। तो इसलिए लेट गो करना, इजी हो जाना थोड़ा सा।
1: कई बार माँ बेटे के झगड़े में मैंने देखा है, बेटा लड़के माँ से चला जाता है ऑफिस, पीछे से वो बहू से बात नहीं करती।
0: वो तो डेलिबरेटली, ये अलग है।
1: गुस्से में है ना।
0: हाँ, लेकिन ये डेलिबरेटली है। लेकिन जब एक माँ और बच्चा है, और यहाँ वो माँ और सास है, तो वो डेलिबरेटली बच्चे के साथ गलत नहीं करेगी। सी, एक लेडी है, उसका मदर इन लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है,
1: हाँ
0: लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो उदास है, इरिटेटेड है, गुस्से में भी है। अब वो डेलिबरेटली बच्चे के साथ गलत नहीं करेगी कि बात नहीं करे, लेकिन उसकी स्थिति ही अच्छी नहीं है ना, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उसकी टॉलरेंस पावर नहीं है। क्यों आज एक माँ अपने बच्चे पर हाथ उठा देती है, क्यों छोटी सी बात में जोर से चिल्ला देती है? क्योंकि वो किसी और रिश्ते की वजह से या किसी और बात की वजह से परेशान है। वन थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, हमारी लाइफ में मेजोरिटी कार्मिक अकाउंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेजोरिटी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। एक दो होंगे जिनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्योंकि हम उन डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट वाले कार्मिक अकाउंट्स को आज भी कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं, उसका इफेक्ट हमारे स्थिति पर पड़ता है, और उससे हमारे जो अच्छे वाले रिलेशनशिप्स हैं उन पर इन्फ्लुएंस आने लगता है। इसलिए जो एक दो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनमें नेचुरल की डेफिनेशन को चेंज कर दे, नहीं ये तो नेचुरल है, नहीं ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल हो रहा है मेरे लिए। सो नाउ चेक, आज अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स चेक कर लें, टिक कर दें, ये सब तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये एक दो में थोड़ा सा, मैं उनको नहीं बदल सकता, मैं अपने को चेंज कर दो, ताकि ये कार्मिक अकाउंट मेरे लिए अब हल्का हो जाए, हल्का हो जाए, ताकि मैं अपनी सारी एनर्जी, ये जो बड़े सुंदर वाले अकाउंट्स हैं, इनको और सुंदर बनाओ।
1: तो एक कार्मिक अकाउंट को हल्का करने से कितना फायदा हो जाता है?
0: एब्सोल्युटली, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है अब।
1: तो मैं भी हल्का हो जाऊंगा,
0: राइट,
1: फैमिली भी हल्की हो जाएगी, स्टाफ माहौल ही बदल जाएगा।
0: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो जो भारी वाला कार्मिक अकाउंट है वो भी हल्का हो जाएगा। सो योर सेटलिंग, जो हमने शुरू किया एपिसोड, सेटलिंग द पास्ट कार्मिक अकाउंट कैसे करना है, दिस इज द वे।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। Thank you.
2: We have made mistakes in the past and may have caused pain to people around us in this birth and many before. We do not need to think of what is already done. It's over, cannot be changed. Focus only on creating the right karma now. Creating guilt, self-criticism or self-hatred about the past will deplete our power and again create present karma of negative energy. We need the power to create right karma now. So, focus only on the now. When return of past karma comes to us as challenging situations or conflicts in relationships, we have to now respond to the situation with stability and positivity. Even if we are constantly receiving negative energy, we have to create and radiate only positive energy. Even if we have one strong negative karmic account, it depletes the soul power and can affect our health and our relationships. Change the quality of that karmic account so that we enjoy all our other beautiful karmic relationships.
3: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुन ही लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मैं मोनाली सावागत, तुम्ही ऐकत आहात रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 करोड़ सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 करोड़ सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 करोड़ सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 करोड़ सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: का सफर अरविंद सनी के साथ रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। ख्वाबों का सफर इस रेडियो प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस सफर को बनाते हैं एक यादगार सफर। आज के इस सफर में हम वही गाने सुनेंगे जो 50s और 60s के ओल्ड मेलोडीज है, और उसमें भी खास अक्षर बी से जो शुरू होता है वो गाने हम आपको सुनाने वाले हैं। जैसे कि शुरुआत में ये गाना आपके लिए।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए
1: जी हाँ, हसरत जयपुर।

साहब का लिखा हुआ ये गीत, मोहम्मद रफी का गाया हुआ और शंकर जयकिशन का संगीत से सवारा हुआ ये खूबसूरत गाना प्रिंस फिल्म से 1969 में रिलीज हुई थी। तो आइए इस गाने का लुफ्त उठाते हैं, और उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ आज के सफर में कुछ खास अंजुम अंसारी, अंजुम की बातें मैं करूँगा या उनकी कुछ लिखी हुई बातें, उनकी कुछ शायरियाँ आपको सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, अंजुम अंसारी अंजुम कहते हैं, अनजाने ख्वाब की खातिर, अनजाने ख्वाब की खातिर क्यों चैन गवाया, कब वक्त का पंची तेरा कब साया हाथ में आया, एक उनर की चादर सिमटी बेजान फजा धुंधलाई, घर आए अंधेरे बादल या चांद गहन में आया, आंखों से नशली शाब की दूती रही शबनम काजल, हर समक्त साही फैली हर समस्त अंधेरा छाया, जो बात लबों पर आई वो बात बनी अफसाना, एक गीत को इस दुनिया ने कितनी ही दिनों में गाया, दिल दर्द से भर भर आया पलकों पे न चमके आंसू, आंखों ने समंदर भर के कतरे के लिए तरसाया, ऐसे भी जमाने गुजरे दिन सोए रातें जागी, एहसास का रंगी आंचल सन्नाटों में लहराया, खुशियों को तो छोड़ा हमने एक खेल समझकर अंजुम, जिस गम को रगे जहां समझा उस गम ने हमें ठुकराया। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। जी हाँ, ये थी कुछ खास बातें अंजुम अंसारी अंजुम की शायरी में से कुछ चंद लफ्जों को हमने आप तक पहुंचाया है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए रेडियो प्रोग्राम ख्वाबों का सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत ओल्ड मेलोडीज वाला, वो भी अक्षर बी से शुरू होने वाला ये खास गाना आपके लिए, जो सम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया था उस समय का। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी, लेकर आया हूँ प्रोग्राम ख्वाबों का सफर। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से बातें होती हैं और इस तरह के ओल्ड मेलोडीज को जब हम लोग शांति से सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि इन गीतों में जो रस भरा हुआ है, उस रस में जो खुशी है, जो आनंद है, जो प्रेम भरा हुआ है, उसको हम फील करते रहते हैं। तो आइए आपकी फीलिंग को और भी ताजा कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक और खूबसूरत नगमे से। जी हाँ, बहुत दिन बीते रहे भैया, तो आइए इस ओल्ड मेलोडी को हम सुनेंगे। भरत व्यास जी का लिखा हुआ ये खूबसूरत गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसे संगीत से सवारा था, संत ज्ञानेश्वर, जो 1964 में रिलीज हुई थी। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर की बात, इस नाम से ही बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जो है बदलाव लाता है। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के एक महान संत थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की। और संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में से होती है। ये संत नामदेव के समकालीन थे और उनके साथ पूरे महाराष्ट्र का भ्रमण कर लोगों को ज्ञान भक्ति से परिचय कराया और समस्त समभाव का उपयोग दिया। और महाराष्ट्र संस्कृति के आद्य परिवर्तक माने जाते हैं इन्हें। तो चलिए, ऐसे महान विभूति का नाम लेते ही उनके बारे में उनकी कहानी याद आती है और उनकी बातें याद आती है। कभी कभी वक्त मिले तो ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, उनसे कुछ प्रेरणा जरूर आपको मिलेगी। और इनके जीवन में जो भी बातें हैं, उनसे अलग उन्होंने हम सभी को आज भी उनके जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं हम लोग सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक सतो प्रधानता, एक सात्विक विचार जो है उत्पन्न होते हैं, भक्तिमय बन जाते हैं हम लोग। ज्ञान की जो बातें हैं, उन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन में सदाचार की ओर हम प्रवृत्त होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को एक और खूबसूरत नगमा, जी हाँ, जिसके बारे में हमने जिक्र किया, वो खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी आपने जो गाना सुना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाग में रह के बहारों को निभाना होगा, अपनी रूठी हुई खुशियों को मनाना होगा, तोड़ना होगा छलकते हुए सागर का गुरूर, बिन पिए बज्म को अब रंग पे आना होगा, तालनी होगी उसी रात के दमन से सहर, टूटे तारों को जिया बार बनाना होगा, तमानी हो जो तुझे वक्त की नब्जे, नब्जे हमदम उड़ते लम्हों पे कोई नक्शा जमाना होगा, इन चिरागों में बड़क उठे हैं शोले अंजुमन, अपनी रातों में दिया और जलाना होगा। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। ये अंजुमन की कुछ शायरियां आपको मैं सुना रहा हूँ कार्यक्रम के दरमियान। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, सूरत और सीरत इस एल्बम से, जो 1962 में रिलीज हुई थी। इसका जो लिरिक्स है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसे खास लिरिक्स को लिखा है शैलेंद्र साहब ने और इसे संगीत से सवारा था रोशन साहब ने। बहुत दिया देने वाले ने।

तो आइए इस खूबसूरत नगमे को हम लोग अभी सुनेंगे जिसे गाया है मुकेश साहब ने, और उस समय का ये बहुत ही पॉपुलर गाना रहा जो 1962 में लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तो आइए ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस गीत को। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, जहां पर हमारे मन को कहीं ना कहीं एक सोच में डुबो देता है ये गीत। जब भी हम लोग सुनते हैं ऐसे दर्द भरे नगमे, और खास करके मुकेश की आवाज में, मुकेश साहब की आवाज में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं वो दिल की गहराई में और सच्चाई की ओर हमें इशारा करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ख्वाबों के सफर में। एक और खूबसूरत नगमा मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अब दर्द के बाद एक रोमांटिक गीत मैं सुनाने वाला हूँ, जो 1964 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था कश्मीर की कली। ये नाम भी बहुत पॉपुलर रहा और ये फिल्म भी बहुत पॉपुलर रहा, और इसमें जो गाने बने थे सब के सब बहुत ही हिट हुए थे। और अभी मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ, ये एक बहुत ही रोमांटिक गीत है।

तो आइए इस खूबसूरत नगमे का आनंद उठाते हैं और आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा ऐसे समय में जब कभी आपका मूड थोड़ा सा मायूस हो, थोड़ा सा खुशी की कमी हो, तो ऐसे गाने आप जरूर सुनिए तो आपके दिल में एक नई ताजगी आएगी और एक नई खुशी की लहर आपके मन में आएगा। ओपी नैयर साहब का संगीत से सवार हुआ ये खूबसूरत नगमा जिसे SH बिहारी साहब ने लिखा।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। परछाइयों के शहर जमी पर बसा दिए, बादलों को हटा के चांद ने जंगल सजा दिए। कितने ही दायरों में बटा मरकजी ख्याल, एक बूथ के हमने सैकड़ों पैकार बना दिए। टूटे किसी तरह तो फजाओं का ये जुमुन, आंधी रुकी तो हमने नशे मन जला दिए। अब रास्तों की गर्ज से अटते नहीं बादल, नक्शे कदम आसीर ये गुल ये तार बना दिए। एक चांद की तलाश में घूमे नगर नगर, लौटे तो आसमान ने सितारे बुझा दिए। बाजी तो हमने आज भी हारी नहीं हुजूर, नजरे बचा के आपके मोहरे उठा दिए। ठहरी हुई हवा में बड़कते नहीं चिराग, झोंकों ने लौ बढ़ाई दिए जगमा दिए। अंजुम लबों पे लब्ज हुई तलखियां तमाम, मुरझा गई बहार जो हम मुस्करा दिए। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर, और अंजुमन की कुछ खास शायरियां मैं आपको सुनाते जा रहा हूं इस कार्यक्रम के दरमियान। आइए आगे बढ़ते हैं, 1963 की बात करते हैं। उस समय एक और फिल्म आई थी, फिर वही दिल लाया हूं। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी थी ये भी, और इसमें भी जो संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने ही संगीत दिया था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ एक गीत मुझे याद आ रहा है जिसे गाया था मोहम्मद रफी साहब।

बंदा परवार थाम लो जिगर बन के प्यार फिर आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। इस गीत को जब आप सुनेंगे तो फील करेंगे कि इस गीत का जो मुख्य जो पहलू है शायद बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए। जॉय मुखर्जी और आशा पारिक पर पिक्चराइज किया गया था उस समय। जी हाँ, उस समय के जॉय मुखर्जी जो है रोमांटिक हीरो थे, बहुत ही पॉपुलर इनकी जोड़ी रही, कुछ फिल्में बहुत हिट हुई, पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग जिनको आज भी हम सभी याद करते हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए, मोहम्मद रफी की आवाज में ओपी नैयर का संगीत से सवारा हुआ, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, फिर वही दिल लाया हूँ 1963 का रोमांटिक गीत आपके लिए। ख्वाबों का सफर

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बातें करते हुए, आप लोगों की बातें सुनकर भी अच्छा लगता है। आप लोगों के मैसेजेस आते हैं तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1960s और 50s के गाने में लेकर आता हूँ ओल्ड मेलोडीज जो आपको सुनाता हूँ, और कुछ खास गाने आज के इस एपिसोड में हम लोग सुना रहे, जैसे कि अक्षर बी से शुरू होने वाले। तो 1960 में एक और फिल्म आई थी जो बहुत ही पॉपुलर रही उस समय, जिसका नाम ही था एक फूल चार कांटे। और इस फिल्म में जो है खास करके वैदा रहमान, सुनील दत्त और धुमाग, ये सारे कलाकार थे, इन पर ये पिक्चराइज किया गया था। और ये फिल्म उस समय बड़ा पॉपुलर रहा था। और इसका एक गाना जो अक्षर बी से शुरू होता है वो है ये।

कहीं हमें जो है भक्ति भाव से भरपूर कर देता है और बनवारी यानी कृष्ण की लीलाओं के साथ हमें जोड़ देता है। तो ये खूबसूरत नगमा जो है ये गाया था लता मंगेशकर जी ने और इसे संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने और इसे लिखा था हसरत जयपुरी ने। 1960 का ये खूबसूरत नगमा जो धार्मिक भाव पैदा करता है हमारे अंदर और इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहाँ पर हम सभी कहीं ना कहीं भाव विभोर हो जाते हैं। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊँ हर चिंता मिट जाए, दर्शन तेरा जिस दिन पाऊँ हर चिंता मिट जाए, जीवन मेरा इन चरणों में आस की जूत जलाए। ओ मेरे बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो,

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, बहुत ही खूबसूरत भक्तिमय गीत आप सुन रहे थे और अच्छा लग रहा था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। इसके जो शब्द है और कहीं ना कहीं ये शब्द हमारे दिल को छू जाते हैं, हमें जो है भाव विभोर करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा आनंद आया होगा। आइए इस आनंद को और बढ़ा देते हैं, एक और खूबसूरत गीत की तरफ मैं आप सभी को ले चलूंगा। 1966 में सन्नाटा, ये एक फिल्म आई थी जो खास करके एक अलग टाइप का जो जीवन में दर्द है उसको बयां करता है ये फिल्म। और इसमें जो है एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो हमें दर्द भरा नगमा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो दिल की गहराई में जाकर सच्चाई की ओर ले सकता है। और इन चीजों को कहीं ना कहीं लेखक या फिल्मकार ने बहुत ही अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। तो आइए सुनते हैं इस खूबसूरत नगमे को, जिसका लिरिक्स जो है खास करके गुलजार साहब ने लिखा हुआ है और इसे लता मंगेशकर और हेमंत कुमार साहब ने गाया है।

0: इस फिल्म में जो काम किए थे अनिल चटर्जी, तनुजा, वीना, राज मेहरा, डेविड, अर्षित सेन, प्रतिमा देवी, पूर्णिमा और जानकी दास और जुगनू, ये सारे लोगों ने इस फिल्म में काम किया था। तो वही इसके डायरेक्टर थे एम सबरीवाल और म्यूजिक डायरेक्टर थे हेमंत कुमार साहब। तो वही इस खूबसूरत नगमे को सुनेंगे अभी। जी हाँ, आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खा सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बस रे

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। बहुत ही खूबसूरत दर्द भरा गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी का थोड़ा सा मूड चेंज कर दूंगा रोमांटिक गीत के द्वारा क्योंकि कभी कभी दर्द भरे गीत सुनकर थोड़ा सा हम लोग मायूस होते हैं, लेकिन उस मायूस में भी कहीं ना कहीं एक सन्नाटा जो है हमें अपने आप से बातें करने का मौका देता है। और जब हम लोग अपने आप से बातें करते हैं तो सही मायने में सच्चाई की ओर चलते हैं। जब हम लोग अपने आप से बातें नहीं कर पाते हैं तो मुश्किलें बढ़ती जाती हैं और हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ अभी। जी हाँ, 1967 एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पत्थर के सनम। इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसको हम लोग बाद में सुनाएंगे क्योंकि आज हमने टारगेट रखा है बी अक्षर से शुरू होने वाले वही गीत आपको सुनाएंगे। तो आइए, इस टाइटल सॉन्ग को तो हम लोग कभी आगे सुनेंगे, लेकिन अभी आपको मैं सुनाता हूँ ये रोमांटिक गीत।

जी हाँ, ये खूबसूरत नगमा अभी आपको सुनाने वाला हूँ मैं, जिसे आशा भोसले, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब ने गाया है। बजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से सवारा था और इसके डायरेक्टर थे फिल्म के राजा नवाठे और इसके प्रोड्यूसर थे नाडियाडवाला, साजिद नाडियाडवाला। पत्थर के सनम इस फिल्म को जब रिलीज किया गया और इसमें इतने कलाकार थे, मनोज कुमार और वैदा रेमंड को और मुमताज को खास मेन एक्टर में दिया गया और बाकी इसके साथ में प्राण, महमूद, ललिता पवार, तिवारी, राज मेहरा, मुमताज बेगम, जानकी दास मिश्रा, उमा दत्त, अरुणा ईरानी, विक्रम और भूषण, इन सभी ने भी बहुत ही अच्छा काम इसमें किया। तो सभी कलाकार जो है मंजे हुए थे और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आगे फिल्मों में काम किया और मनोज कुमार को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, वैदा रहमन और मुमताज ये बहुत ही पॉपुलर 1960s के हीरोइन कहलाए। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। 1960s और 50s के जो गाने हैं वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा लगता है, आज भी हमारे दिल को कहीं न कहीं एक सुकून देता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और खूबसूरत गीत की ओर, जो दर्द भरा नगमा है लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंतर मन को छू जाता है। 1965 में एक फिल्म आई थी आरजू, ये भी फिल्म बहुत पॉपुलर रही और इसमें राजेंद्र कुमार और साधना जो है उन्होंने काम किया था, और ये फिल्म का जो है एक सस्पेंस रहा और इसमें एक अलग टाइप का सस्पेंस क्रिएट किया गया था जिसकी वजह से लोगों ने इसे काफी सराहा और इसे काफी देखा। तो आइए इस फिल्म में खास राजेंद्र कुमार और साधना के साथ साथ फिरोज खान भी थे, तो आइए इसी फिल्म का एक खूबसूरत गाना आपको मैं सुनाता हूँ। आप सुना है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। आंखों में जीत के सपने हैं, ऐसा लगता है अब जिंदगी के हर पल अपने हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करो, आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो, अपनी मंजिल खुद तय करो, इस बेदर्द दुनिया से मत डरो। जी हाँ, मैं हूँ आपका हम सफर सनी, आशा करता हूँ आपका ये ख्वाबों का सफर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इस सफर में आपने काफी एक अलग फीलिंग के साथ आपने ये जो समय बिताया है यादगार पलों में आपके जीवन में ये समा गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। आइए जाते जाते एक और खूबसूरत नगमा आपको सुना रहा हूँ, ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: हेलो पंकज भैया। हाय वेदांत भैया।
2: हाय दृष्टि, कैसी हो?
1: मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो?
2: हम लोग भी ठीक हैं।
1: अरे भैया, रेडियो चालू करो ना प्लीज।
3: क्यों?
1: क्योंकि ना अब मेरा शो आने वाला है जो मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था।
2: अच्छा?
3: इतने दिनों से तुम्हें अब याद आई है रेडियो की?
1: अरे मेरा बहुत मन कर रहा है मेरा खुद का शो सुनने का।
3: अच्छा अच्छा, हम भी सुनते हैं, काफी अच्छा होगा ना।
1: हाँ।
4: तुम्हें पता है इंसान के खून की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
1: यानी कि वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे में
4: प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर।
1: अरे वाह, कितना मजा आया मुझे और कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली, और हमारे दोस्तों को भी मुझे लगता है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
4: हाँ बिल्कुल, जरूर मिली होगी।
1: तो दोस्तों, बातों को अभी यही ठहराते हैं,
4: विराम देते हैं।
1: हाँ, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
4: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: आपने लास्ट टाइम कब शो रिकॉर्ड किया था?
1: मैंने तो याद नहीं मुझे ठीक से, हाँ काफी समय हो गया।
0: और विधान भी आपने?
2: मैंने तो सितंबर के पहले वीक में रिकॉर्ड किया था क्योंकि मेरे फिर एग्जाम्स आने लगे।
0: ओह हाँ, अभी तो मेरे एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं।
3: हेलो बच्चों।
0: हाय दीदी।
2: हेलो दीदी,
3: कैसे हो आप लोग?
2: मैं ठीक है,
1: आप कैसे हो?
3: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट मैंने आप लोगों की बातें दूर से सुनी।
0: ओह आपने हमारी बातें सुन ली?
3: हाँ, और लग रहा है मुझे रेडियो के प्रोग्राम सब लोग अपने बहुत याद कर रहे हैं।
0: बहुत ज्यादा, हम कितना मस्ती करते थे प्रोग्राम रिकॉर्ड करते समय।
3: तो चलो एक काम करते हैं, आज अपनी रेडियो की मेमोरीज के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ ठीक है,
3: ठीक है। तो रेडियो की मेमोरीज के बारे में बात करने से पहले पहले अपने बारे में कुछ बताओ आप लोग। दृष्टि?
0: मेरा नाम दृष्टि अरोरा है और मैं सेवेंथ में पढ़ती हूँ और सेंट जॉन्स में पढ़ती हूँ।
2: हाँ, मेरा नाम वेदांत है, मैं इलेवेंथ साइंस में पढ़ता हूँ बीएस मेमोरियल स्कूल में।
1: मेरा नाम पंकज है और मैं ट्वेल्थ साइंस में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आबू रोड में।
3: अच्छा, और आप लोग कब से रेडियो पे आ रहे हो? पहले वेदांत आप बताओ।
2: मैं सबसे

0: मिली थी, विशाल भैया ने मुझे उनसे मिलाया था। और
1: अरे
0: कृष्णा दीदी ने हमें सब कुछ स्वीटली बताया और हमारे साथ बहुत अच्छे से काम किया। और पंकज भैया आप कब आए थे?
2: मैं 5 अप्रैल को ही आया था मम्मी के साथ। मम्मी इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैं घर पे बहुत तोड़म फाड़ी करता था, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रेडियो मधुबन आके कुछ सीखूंगा और मेरे टाइम का कुछ यूज करूंगा जो मुझे फ्री टाइम मिलता है। मैं रेडियो मधुबन से ऐसे जुड़ा।
0: वैसे रेडियो में रिकॉर्डिंग्स करने को बहुत सारा मजा आता है, हम सारे फ्रेंड्स मिलके बहुत ज्यादा ही मस्ती करते हैं।
2: मस्ती तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता है।
0: हाँ, कृष्णा दीदी ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि स्टोरीज को और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना, और मेरी हिंदी थोड़ी वीक थी पढ़ने में, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई।
3: सबसे बड़ी बात कि हमारे फ्रेंड्स इतने कम थे, जब हम रेडियो में जुड़े तो श्रोता जो हमारे थे वो भी हमारे फ्रेंड बन गए।
0: हाँ,
1: और पंकज आपने क्या सीखा?
2: म्यूजिक सीखा मैंने तो, खास करके मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव था पहले से ही, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ने के बाद मेरी म्यूजिक में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ।
0: ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक क्लासेस की वजह से है जो कृष्णा दीदी ने लगवाई है।
1: अच्छा, आपने म्यूजिक सीखा। और एक बात और बताओ, आप लोगों ने जब शोज किए, रिकॉर्डिंग्स की, उस दौरान भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा?
0: बहुत कुछ।
1: क्या सीखा बताओ?
0: शो को कैसे स्टार्ट करना है, हमेशा बातों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, और हर चीज में न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है।
3: और हमने यह भी सीखा कि कैसे हम एडिटिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कैसे हर एक शो को शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी का इंटरव्यू लेना है तो कैसे ले सकते हैं। और हम सबकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हुई है रेडियो मधुबन में, क्योंकि कभी कभी कुछ 2-3 वर्ड्स हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है।
1: और जो शो आप करते हो उसमें आप बच्चों को बहुत कुछ सिखाते भी हो, है ना वेदांत?
3: जैसे उड़ान में हम लोग वर्ड पावर वगैरह सिखाते हैं तो बच्चों को बहुत इम्प्रूवमेंट होता है।
1: तो दूसरों को सिखाने के लिए पहले हमें भी सीखना पड़ता है। और पंकज आपने क्या क्या सीखा रिकॉर्डिंग्स के टाइम?
2: रिकॉर्डिंग्स के टाइम तो मैंने यही सीखा कि मेरे पहले काफी वर्ड्स रिपीट हो जाते थे, लेकिन उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और इसके अलावा भी बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट हुआ।
1: बोलने का तरीका सीखा हमने। बोलने का तरीका तो हर जगह काम आता है ना?
0: हाँ जी।
1: अच्छा अब ये बताओ, इतना कुछ सीखने के साथ इतने दिन आप लोग आए हो, इतने साल महीने आप लोग आए हो, तो मस्ती तो बहुत की होगी।
0: बहुत ज्यादा,
2: अनलिमिटेड।
1: तो सबसे ज्यादा हंसी वेदांत को आ रही है, तो वेदांत ये बताओ सबसे ज्यादा मस्ती कब की थी? वो वाला मोमेंट कौन सा था जो आपको अभी तक याद है?
3: सबसे ज्यादा मस्ती हम लोगों ने तब की थी जब हम लोगों को दीदी सिखा रही थी कि कैसे स्टोरी कंटिन्यू करना है। जैसे कोई एक स्टोरी शुरू करता फिर उसको कंटिन्यू करते ना स्टोरी, तो उसमें हम लोग जैसे दीदी ने स्टोरी शुरू की, फिर हम लोग ने उसको कहाँ से कहाँ, गाँव से जंगल, जंगल से फिर सिटी, और फिर कहाँ कहाँ उस स्टोरी को कंटिन्यू करा। खूब मस्ती आई थी उस दिन।
1: अच्छा, ये आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है वेदांत?
3: बिल्कुल दीदी, गर्मी की छुट्टी में जिस समय ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की।
1: अरे वाह, मतलब ट्रेनिंग में लर्निंग भी और मस्ती भी।
2: उसमें तो मुझे भी बहुत मजा आया था, वो जो पपेट के साथ स्टोरी बना रहे थे।
0: हाँ, उसमें तो सच्ची बहुत मजा आया था। वो पपेट्स को मतलब हिलाना भी था हर साल, इतने क्यूट पपेट्स थे, हम लोग इतना मस्ती कर रहे थे पपेट्स के साथ।
1: अच्छा पंकज आप बताओ क्या किया आप लोगों ने उस टाइम?
2: हम पपेट्स के साथ स्टोरी बना रहे थे, जैसे एक पपेट है एक राजा की तरह होता है, और एक कुछ भी मतलब जैसे एक मंकी है तो उसके लिए भी स्टोरी, और मैंने स्टोरी बनाई थी एक मंकी और एक क्रोकोडाइल के ऊपर।
1: अच्छा, मतलब पपेट्स के साथ आपको स्टोरी बनानी थी?
2: हाँ दीदी।
1: और सबसे अच्छी स्टोरी किसकी बनी थी?
2: स्टोरी सबकी मजेदार ही थी।
0: हाँ, क्योंकि सबकी स्टोरी कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, समझ ही नहीं आता था स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुई।
1: हाँ, लेकिन ये आर्ट भी आप लोगों ने सीखी है, स्टोरी बनाने की आर्ट।
3: और हाँ। कई बार तो पपेट मंकी है तो फिर शेर बन जाता था किसी न किसी से।
1: अच्छा, और दीदी के साथ या फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे उसमें भी तो आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की होगी?
2: रिकॉर्डिंग में तो बिल्कुल मस्ती नहीं की।
1: अच्छा दृष्टि, तो आप बताओ क्या मस्ती की?
0: हम लोग क्या करते थे,

0: की रिकॉर्डिंग चल रही होती थी, हम बैठ जाते थे। बैठ कर फिर जो हम लोग बातें मस्ती सब शुरू हो जाती थी। नीचे से हंस रहे होते थे, दीदी बोलते थे क्या है ये, मत हंसो, दूसरे का डायलॉग ही खराब हो जाता था।
1: लेकिन हंसी नहीं रुकती थी
0: ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
2: वेदांत को तो इतनी हंसी आती थी कि वो हंसते हंसते डायलॉग ही बोलता था।
1: और वेदांत, आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
2: एक दिन शायद ऐसा हुआ था कि आधे घंटे से ये एक ही डायलॉग बोल रहा था। क्योंकि इसको इतनी हंसी आ रही थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा।
3: और डायलॉग बहुत छोटा सा था कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा कहा।
1: कई बार छोटी छोटी चीजों में भी हमें बहुत मजा आता है ना, कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सीखते सीखते भी हम बहुत मस्ती करते हैं, है ना?
0: हाँ जी, स्कूल में भी जैसे हम कितनी मस्ती करते हैं सीखते सीखते।
1: लर्निंग के साथ साथ मस्ती भी।
0: वरना हमेशा जब भी कोई हम लोग पढ़ते हैं तो मस्ती नहीं करते ना, तो मजा नहीं आता पढ़ने में या फिर कोई चीज करने में।
1: चलो इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप, और शो चल रहा है बच्चों की दुनिया, जहां बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारे साथ अपनी रेडियो की मेमोरीज। तो एक बात बताओ, आप लोगों को आए हुए बहुत अलग अलग टाइम हुआ है, किसी को 5 महीने तो किसी को 4 साल। सबसे पहले दिन जब आप लोग रेडियो में आए थे तो वो दिन तो जरूर याद होगा
1: अच्छे से एकदम।
0: तो दृष्टि बताओ, सबसे पहले दिन आप रेडियो में आए थे तो क्या किया था?
1: जब मैं सबसे पहले दिन रेडियो में आई थी तो मतलब शाम हो गई थी, 7 बज गए थे, और ना दीदी और सारे बच्चे ना मिलकर लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर स्टैंप लगा रहे थे, और फिर विदान दिया जाकर उसको शेल्फ में अच्छे से रख रहे थे और जमा रहे थे बहुत अच्छे से।
0: और फिर आपने क्या किया?
1: फिर हम लोग मतलब दीदी ने बोला कि अभी तो जाने का समय हो गया, और आकाश भैया और उन्नति दीदी अपने दूसरे शो की तैयारी कर रहे थे, और फिर हम लोग बैठे थे तो हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर जब हम विदान भैया के पास गए तो विदान भैया ने बोला हमने तुम्हें कहीं देखा है। हमने उनको कितनी कोशिश करी याद दिलवाने की, लेकिन उनको याद ही नहीं आया।
0: मतलब आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा सबके साथ।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा। और मैं जिस दिन पहले दिन ही आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि वही रहूं, निकलूं ही ना वहाँ से। इतनी अच्छे से सब लोग बात कर रहे थे और सब मस्ती कर रहे थे।
0: और पंकज आप बताओ?
2: मैं जब फर्स्ट दिन आया था तो मैं सबसे पहले कृष्णा दीदी से मिला, फिर उसके बाद आरुषि दीदी से मिला, फिर आरुषि दीदी ने मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट कर दी थी, और हम फर्स्ट दिन से ही पढ़ने के जो टेक्निक्स होते, तरीके होते, वो सीख रहे थे, रीडिंग एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने फर्स्ट दिन से ही रीडिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद सेकेंड दिन ओवरलैपिंग के ऊपर भी एक्सरसाइज करी थी, और तीसरे दिन हमने टंग ट्विस्टर किया था।
0: मतलब अपनी आवाज की क्लैरिटी के लिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है ना?
2: हाँ दीदी,
0: बहुत सारी मेहनत।
2: फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद तो हमारा शो स्टार्ट हो गया था, बच्चों की दुनिया,
0: जो अभी भी चल रहा है,
3: अभी भी श्रोता सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल। और वेदांत आप बताओ, आपको आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, तो फर्स्ट डे याद है आपको?
3: फर्स्ट डे याद है ना, क्योंकि रेडियो का फर्स्ट डे तो हर किसी को याद रहेगा, भले कितने भी साल हो जाए। सबसे पहले सुभाषी दीदी मुझे मिली, मैं एक्चुअली एक भैया के साथ आया था जो यहाँ पर एडिटिंग किया करते थे रेडियो मधुबन में, उनके साथ आया था। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले सुभाषी दीदी से मिलाया, फिर सुभाषी दीदी ने मुझे कृष्णा दीदी से मिलाया, और फिर यशन भाई जी से मिलाया, फिर धीरे धीरे मोना दीदी जी के साथ, पहले जब वो उड़ान करती थी तो उनके साथ थोड़े थोड़े वॉइसेस पोएम स्टोरी दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे शो ही शुरू हो गया उड़ान का मोना दीदी जी के साथ, और फिर अंकिता दीदी भी आई, और फिर दीदी अब जियो जिंदगी कर रही है, तो फिर मैं उड़ान करने लगा अकेले।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो आपने फर्स्ट डे की बात की, आज आप लोगों को कौन सा ऐसा चेंज है जो अपने में दिखाई पड़ता है फर्स्ट डे से अब तक?
1: हमारे बहुत सारे वर्ड ओवरलैप नहीं होते।
0: अच्छा,
1: और बातें करते करते मतलब इतना होता था कि कोई कोई वर्ड साथ में ओवरलैप हो जाते तो पता ही नहीं चलता था वर्ड क्या बोल। लेकिन अभी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि पता चल जाता है, हाँ ये वर्ड ओवरलैप हुआ, और अब ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो गई है।
0: और पंकज आप बताओ?
2: और तो जैसे हम किसी पे कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी बातें किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो हम कैसे उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट डालें, तो ये सब हमने सीखा, और हमारे बिहेवियर में भी काफी चेंजेस आए।
0: मतलब हम अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखें, ये हमने सीखा। कई बार हम सोचते तो हैं पर बोल नहीं पाते हैं ना, तो रेडियो से हमें ये भी समझ में आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत आपने क्या सीखा?
3: हम लोग पहले जैसे मिक्सअप नहीं हो पाते थे, अब जब मिक्सअप होने लग गए हैं, कोई एक बात शुरू करता है तुरंत फ्रिक्वेंटली हम उसे कैच करके बोल देते हैं, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था, मतलब स्पॉन्टेनियस हम सब हो गए हैं, खूब ज्यादा मिक्सअप हो गए एक दूसरे से। जैसे कई देशों के बारे में जाना, मतलब एक एक देश के बारे में जो हमने बताया, तो सबसे अच्छी लिटरेसी किस कॉन्टिनेंट की रही अब तक, यूरोप की सबसे अच्छी लिटरेसी HDI रैंक रहा, ये सब हमने कुछ जो जनरल नॉलेज है वो हमने सीखा, क्योंकि उड़ान के स्पेशल में मोस्टली जनरल नॉलेज रहता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भी अलग अलग जगह, मींस थोड़ी मोड़ी जगह जो हमें नहीं पता थी, कोणार्क वगैरह, इसके बारे में हमारे बड़े जानते हैं, वो अब हम भी जानते हैं।
0: मतलब हमारे GK भी इम्प्रूव होता
3: है बहुत ज्यादा।
0: ये तो एक बहुत अच्छी लर्निंग है वेदांत की। और इसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा तो है ही, बट कुछ डिफिकल्टी भी थी जो आपने फेस किया, आपको लगा रही है मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझे तो डर लगता है, ऐसा कुछ था कभी
1: लाइव करते समय? क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करके शो रखते हैं तो उसमें हम रिपीट भी कर देते हैं, फिर वो कट जाता है, लेकिन लाइव करते हैं तो मतलब रिपीट कर ही नहीं सकते, तो लाइव करते समय एक वो रहता है, बहुत मुश्किल होती है, मुझे तो अभी भी डिफिकल्टी होती है उसमें।
0: लाइव करते समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम।
1: हाँ जी।
0: और पंकज?
2: मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे फर्स्ट टाइम में हुई थी लाइव करते समय, लेकिन आप थी तो काफी हिम्मत मिली थी।
0: मतलब थोड़ा सा डर लगा,
2: थोड़ा सा, फिर उसके बाद सब नॉर्मल,
0: उसके बाद नॉर्मल हो गया। मतलब एक बार हम कोई चीज कर लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। और वेदांत?
3: पहले जैसे हम लोग डरते थे थोड़ा माइक में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमें ज्यादा नॉलेज तो था नहीं, हमें लगता था कि माइक में बोलेंगे वो तुरंत रेडियो में सुनाई देगा, इससे पहले हम लोग माइक के सामने आने से डरते थे। लेकिन अब इतने फ्रिक्वेंट हो गए कि स्कूल में भी अगर कोई कॉम्पिटिशन होता है डिबेट वगैरह का तो हम बहुत अच्छी तरह भाग लेते हैं और अच्छा प्राइज भी जीतते हैं। और लाइव वाली ये जो पहले मेरे साथ भी मेरे को डर लग रहा था कैसे बोलो कैसे बोलो, लेकिन अब आदत हो गई, अब बहुत अच्छे से लाइव भी होता है हम सबका।
0: अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है?
3: कॉन्फिडेंस बढ़ा है।
0: स्कूल में भी आप बोल देते हो?
3: स्कूल में भी, मतलब रेडियो में जो हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्कूल में भी काम आ रहा है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा अब ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ इतना कुछ सीखा, अपने डर को फेस भी किया और बहुत सारी मस्ती भी की, आप लोग कौन कौन से शोज का हिस्सा रहे, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने अभी तक किया? दृष्टि आप बताओ।
1: मैं उड़ान के शो में ही होती हूँ मोस्टली। हाँ, और एक हमारी ड्रामास थे वो, और मैं कॉमिक्स, उड़ान के बाद जो कॉमिक्स होती है उसमें भी थी, और उड़ान का एक स्पेशल लाइव शो आया था उसमें भी थी।
0: अरे वाह, ये तो बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए और वैरायटी भी। पंकज आप बताओ।
2: मैंने तो सबसे पहले बच्चों की दुनिया स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उड़ान में कॉमिक्स में एक दो बार किया है, और गुड मॉर्निंग आबू भी कई बार लाइव किया मैंने, और बाल सभा भी किया है, और बाल सभा में जितनी मस्ती की है उतनी कहीं नहीं की है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से याद है।
1: ये तो पूरा का पूरा
3: बिल्कुल।
0: और वेदांत आपने?
3: मेरा सबसे पहला शो तो उड़ान था, फिर एक बार मदर्स डे था, मदर्स डे में एक बार आशियाना में भी था थोड़ी देर के लिए, और फिर खुशी के नगमे में भी एक बार बज रहा था संगीत तो भाई जी ने एक बार रखा था, फिर गुड नाइट विद दादी माँ, और पहले एक शो आता था नन्ही परी सोने चली, और बाल सभा। और दीदी हम सब तो एक चीज भूल ही गए, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 15 अगस्त को, हम लोगों ने रेडियो मैराथन रखा जो 24 घंटे लाइव था, हम सब उसमें भी थे, दृष्टि भी थे, यश भी थे, और सब जितने भी आर्जेस थे सबने लाइव किया था उस दिन।
0: मतलब साथ में सबने सहयोग करके एक बहुत बड़ा इवेंट किया
3: बिल्कुल रात तक।
0: मतलब आप लोगों ने बहुत मेहनत की, चलो अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजा दो। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ तक तो आपकी बहुत लर्निंग हुई, अब आगे आप लोगों के क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो?
1: मुझे फ्यूचर में रेडियो पे प्रोडक्शन सीखनी है और बहुत अच्छा आरजे बनना है, मेरा बहुत मन है आरजे बनने का।
0: प्रोडक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है दृष्टि। पंकज आप बताओ।
2: मैं भी एक बहुत ही अच्छा आरजे बनना चाहता हूँ।
0: आप बहुत अच्छा आरजे बनना चाहते हो, जिसके लिए और बहुत सारी मेहनत करनी है ना पंकज?
2: हाँ दीदी।
0: और वेदांत आप बताओ।
3: जैसे कि हम जानते हैं कि आरजे मतलब हर फील्ड की नॉलेज
0: और बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो आगे के एम्स तो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग तैयार हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। तो इस जोश को हमेशा हमें बनाए रखना है अपनी लाइफ में, और बहुत कुछ नया सीखते जाना है।
1: हाँ दीदी।
0: चलो इसी के साथ हम हमारी बातों को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में और बात करेंगे एक नए टॉपिक पे बच्चों की दुनिया में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम,
1: तुम,
0: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: वेलकम बैक श्रोते हो, मी माझ्या एका कवितेमध्ये लिहिलंय की सुख उधळताना मी दुःखांना अंदन घेतले, आनंदासाठी सांध झालो त्यांनी चंदन घेतले। सुख उधळताना मी दुःखांना अंदन घेतले, आनंदासाठी सांध झालो त्यांनी चंदन घेतले। जडावल्या नेत्रात विसावले दाह निद्रिस्त, जडावल्या

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। पर स्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सब ने कहा, हमने भी मान लिया, सब ने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: क्यों रे शैतान, तुम्हें क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
3: जरा तारीफ कर रही थी, वरना तुम गाती क्या हो?
2: रोती हो।
3: पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
2: क्यों रे, मैं ऐसा गाती हूँ?
3: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
2: और तुम?
3: मैं

0: किससे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: मांगने से मिलने वाली यह चीज नहीं, रिगार्ड मांगने से नहीं मिलता, यह तो अंदर का भाव है। वह अपने आप ही आंखें झुकती है अंदर से। वह अंदर से आंखें कब झुकती हैं? जब प्रेम हो। डर से आंखें झुकनी, कोई झुकना थोड़ी ना हुआ। वह रिगार्ड नहीं होता, वह अहंकार होता है। झुकना तो होता है प्रेम से, क्योंकि अंदर की यात्रा ही प्रेम की है। तो जितना अंदर प्रेम रहता है, उतनी हमारी भावना शुभ भावना में बदल जाती है, कल्याण की भावना में परिवर्तित हो जाती है। तो इस समय शिव बाबा चाहता है कि जब इतनी अंदर की यात्रा होगी हमारी, तब जैसे बाहर का देखते हुए भी देख नहीं पाओगे आप।

0: मुझसे और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: विल यू शट अप।

शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: एफएम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और उसमें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी हो सकती है, कौन सी हमारी जिम्मेवारियां हैं, तो जब अपनी तरफ देखा कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले है, तो उसमें बहुत सी बातें सामने आई कि किस तरफ मैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मैं लेकर जाना चाहती हूँ अपनी जिंदगी को, ये मेरी चॉइस है, ये मेरी जिम्मेवारी है। जहां मैंने अपनी चॉइस की तो जिम्मेवारी भी मेरी ही होगी। आगे और बढ़ाते हैं इस बात को और देखते हैं कि किस तरह से ये अनफोल्ड होता जाएगा, खुद को मैनेज करने का प्रोसेस। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से पिछली कड़ी में हमने देखा था कि हर बार हम बहुत सी सिचुएशंस में ऐसे कह देते हैं कि आई डोंट हैव एनी चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, तो कहीं ना कहीं जब हमने बातें की थी तो ये बात सामने आई थी कि जो भी डिसीजन मैं लेती हूँ उसमें चॉइस मेरी ही होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बातें निकल कर आ रही थी, कोई भी सिचुएशन है, जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इसलिए कई बार ये कह देती हूँ कि इट्स नॉट माई चॉइस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि फिर उसकी जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है।
1: We also, like we realized about the karma philosophy, so many people, most of us, in fact I can say almost all of us, हम लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ना जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अब हमें क्या होता है जब परमात्मा से ये ज्ञान मिलता, या हमने पहले भी कार्मिक फिलोसफी समथिंग जो हमने बचपन से सुना था, तो एक तरफ से कार्मिक फिलोसफी हमें कहता कि हम जो करते उसी का रिटर्न मिलता, लेकिन हमारी अपनी बिलीफ ये कहती कि हमने कुछ गलत नहीं किया तो ये मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो समवेयर वी नीड टू थिंक कि जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए। फिर भी होती हुई चीजें हमें गलत लगती हैं, लेकिन करती हुई चीजें हमें गलत नहीं लगते हैं। सी, होती हुई जो चीजें हैं, विच इज कमिंग द एनर्जी कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट लाइक इट, लेकिन जो एनर्जी हम यहाँ से भेज रहे हैं थॉट वर्ड एक्शन के रूप में, हम कह रहे हैं वो गलत है ही नहीं। हमने जो कल के एपिसोड में डिस्कस किया, इट जस्ट स्ट्रक समथिंग हियर फॉर मी, एंड इट वॉज क्यों हमें ये लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं। डेफिनेटली हमने गलत किया है, लेकिन जब हम वो कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरी गलती नहीं है। तो क्या होता है, हम गलत करते हुए भी, जैसे हमने कल देखा कि ब्राइब देते हुए भी हम कह रहे होते हैं मैं सही हूँ, सिस्टम गलत है,
0: अपने आप को जस्टिफिकेशन,
1: मैं सही हूँ। हर कर्म के लिए है ना, हर कर्म के लिए हमने अपने आप को कहा है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ,
0: सिस्टम गलत था, सिस्टम गलत था,
1: समवन एल्स इज रॉन्ग। तो इसलिए जब वो मेरे पास वापस आता है, आई से मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि गलत करते टाइम भी मैंने क्या सोचकर गलत किया था,
0: ये मैं तो सही हूँ,
1: सही हूँ।
0: इनफैक्ट ये अपने आप को धोखा देने वाली बात जो अभी तक हम कहते थे कि आप किसको धोखा दे रहे हो, तो समझ में नहीं आता था कि कहाँ धोखा दिया, सब कुछ क्लैरिटी से तो कर रहे हैं, लेकिन अगर डीप डाउन तो इनफैक्ट ओ वाओ,
1: मेरा बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन है, एवरीवन यूनिवर्सल आई विल फील दिस हैज हैपेंड, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे व्हाटएवर फिजिकल इलनेस में है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन परमात्मा कह रहा है जो आपने किया उसका ही मिल रहा है, तो वेयर इज द फॉर्मूला, सी द फॉर्मूला इज नॉट वर्किंग फॉर मी, दैट्स इम्पोर्टेंट।
0: क्योंकि पता है कई लोग ये भी बोलते हैं मैंने जानते हुए कुछ गलत नहीं किया, अनजाने में गलत हुआ उसके बारे में मुझे नहीं पता।
1: हाँ, तो वो तब ये जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हमने लिए ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स में हम एक्चुअली तो गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को सही बताकर कर रहे होते हैं, तो फिर जब हम अपना ही अकाउंट चेक करते हैं, यू नो,
0: अब अगर हम चेक करना शुरू करें तो कितनी,
1: अब जब हम अपना अकाउंट चेक कर रहे हैं तो मैंने कहा मैंने सब कुछ सही किया, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है, परमात्मा ने आकर कहा ये फॉर्मूला वर्क नहीं होता है, जो आपने किया वही मिल रहा है, तो नाउ चेक योर कर्म वाला अकाउंट अगेन, एंड नेक्स्ट टाइम जब कर्म कर रहे होंगे तो थोड़ा सा और अटेंशन के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं गलत करते हुए भी अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि जब उसका रिजल्ट मेरे सामने आएगा मैं फिर वही स्टेटमेंट दूंगा
0: कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था,
1: एंड देन इट मेक्स मी फील वेरी पेनफुल इनसाइड, यू नो दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेन।
0: ओके, सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आज अगर मैं गलत भी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब और जिसको मैं अभी तक मैं ये कह रहा था कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसलिए मुझे ये करना है, लेकिन आज मैं ये समझते हुए कि मेरे पास चॉइस है और मैंने ये गलत किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस टाइम की जरूरत ये थी, मुझे इस टाइम पे ये जरूरत लग रही थी और मैंने ये गलत किया जानते हुए, तो मुझे तैयार रहना चाहिए. समवेयर आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग विच आई हैव डन एंड इट विल हैव इट्स ओन रिपरकशन.
1: स्टॉप टेलिंग माई सेल्फ दिस एवरी टाइम. इट्स जस्ट दैट करते हुए मुझे नहीं पता कि मैं गलत कर रहा हूँ, कर तो मैं ही रहा हूँ, इसीलिए इट्स कमिंग बैक टू मी. सिस्टम गलत है तो ब्राइब देना गलत हुआ क्या? नहीं. अब कल को अगर मेरा कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो गया फाइनेंशियल, क्योंकि मैंने जो अभी गलत कर्म किया वो फाइनेंशियल था, कार्मिक लॉ विल वर्क इन द सेम वे, तो जहां मैंने एक फाइनेंशियल कर्म जो किया वो रॉन्ग था, कहीं मैंने पैसा गलत तरह से लगाया, तो कहीं मेरा पैसा गलत तरह से फिर जाएगा भी. लेकिन जब वो जाता है
0: बहुत तकलीफ होती है,
1: तो मैंने कहा मैंने तो कुछ गलत
0: क्या
1: नहीं
0: हुआ,
1: किया.
0: क्या किया था मैंने. हाँ
1: टू बी रेडी फॉर बोथ द साइड्स. दिस इज नॉट टू स्केयर आवर सेल्व्स, दिस इज जस्ट टू बी अवेयर व्हाइल डूइंग द एक्शन. सो कीप ऑन डूइंग इट हाउ एवर यू आर कंफर्टेबल, बट रिमेम्बर लेट्स स्टॉप दिस सेंटेंस एटलीस्ट, क्योंकि ये सेंटेंस भी हमें बहुत हेल्पलेस फील कराता है. जब हम कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी हमारे जीवन को क्या कर देता है, बहुत कमजोर बनाता है. आज मेजोरिटी हम कहते हैं मैं सबके साथ अच्छी हूँ, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ ही धोखा दिया. हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज जस्ट दैट मीन्स इन द लॉ ऑफ एनर्जी इज नॉट वर्किंग. मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सबने मेरे साथ धोखा दिया, ये कहाँ वर्क कर रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मैं सबके साथ बोलने में बहुत मीठी हूँ
0: अंदर
1: लेकिन अंदर में उनके प्रति क्या थॉट क्रिएट कर रही हूँ. फिर जब वो एनर्जी मेरे पास रिटर्न में आती तो किस तरह से आती? तो लॉ ऑफ कर्मा एट एवरी स्टेप आई नीड टू रिमेम्बर. धन तो बहुत छोटा लेवल है लेकिन हर स्टेप पर उस पर देखते जाए. तो जब हम इस तरह से ध्यान रखकर अपने जीवन को चलाएंगे, जीवन की यात्रा में चलेंगे, तो हमें सबसे पहली पावर ये मिलेगी कि मैं अपना जीवन खुद क्रिएट करता हूँ. हर स्टेप में सीन है, सीन आते मेरे पास चॉइस है क्या रिस्पॉन्स देना. जो मैंने रिस्पॉन्स चूज किया उस समय मेरे लिए वो सीन बना. आप वही सीन में दो अलग एक्टर्स को अलग अलग रिस्पॉन्स देता हुआ देखेंगे, दोनों ने अपनी जीवन अलग अलग उसी टाइम डिसाइड कर ले. समटाइम्स वी टेक वेरी बिग डिसीशंस, उसी सिचुएशन में दो लोग दो अलग डिसीशंस लेते हैं और दोनों की जीवन की यात्रा बिल्कुल ही चेंज हो जाती. लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि ओ इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स? नो, इट्स बिकॉज ऑफ दैट डिसीशन व्हिच दे टुक दैट टाइम.
0: चॉइस आई मेड.
1: तो हो तो यही रहा, सिर्फ लिव विद दैट अवेयरनेस, ताकि उससे क्या होगा, जब हम वो जागृत अवस्था में चलेंगे कि हर स्टेप पे मैं अपना जीवन खुद बना रहा हूँ, तो दैट विल गिव मी अ वेरी नाइस फीलिंग एंड इट इज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस, आई एम विलिंग टू डू दिस इंस्टेड ऑफ आई हैव टू डू दिस.
0: एंड द बेस्ट पार्ट इज आई कैन चेंज इट एनी टाइम आई वॉन्ट. सी राइट नाउ इफ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ विद माई लाइफ, आधे से ज्यादा तो हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूं अपने आप से. सुबह उठ के रोज मैं एक ऐसे दिन की शुरुआत करता हूं जो जिससे मैं कोई खुश नहीं हूं. मैं नहीं चाहता उस ऑफिस में जाना, मैं नहीं जीना चाहता उस पूरे एटमॉस्फेयर में, मैं खुश ही नहीं हूं.
1: अब जहां तक जैसे आपने कहा मैं नहीं जाना चाहता उस ऑफिस में, तो अभी भी कुछ लोग कहेंगे ये प्रोग्राम सुनते हुए भी, कहाँ मेरे पास चॉइस है, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं जॉब ही छोड़ देता ना, फिर मुझे नहीं जाना है. ओके सिचुएशन कि आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते, ये भी आपका डिसीशन है, ये तो चॉइस है ना कि वो जॉब करते हुए आप फील कैसा करेंगे, क्योंकि वहां रहना आपने चूज किया है. सी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम कहें मैं मजबूर हूं वहां काम करने से, फिर आप दर्द में काम करते हैं, आप दर्द में काम करते हैं, नफरत से काम करते हैं, व्हाटएवर. लेकिन जहां आप कहते हैं मेरी परिस्थितियां या कुछ भी, मेरा परिवार, जो भी एक रीजन है, उनकी वजह से मैं चूज करता हूं इस ऑफिस में काम करना, तो मेरी चॉइस है, तो अपनी चॉइस को कैसे निभाना चाहिए?
0: बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स यू पावर.
1: या यू नो लाइक फॉर एन एग्जांपल टेक अ करियर. पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियरिंग करे. अगर बच्चा पेरेंट्स के कहने पर मेडिकल करता है ना, तो वो पढ़ता भी जाता है, प्रोफेशन भी करता है, लेकिन पूरा टाइम उनको ब्लेम करता है, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी. तो देन ही डजंट रियली पुट इन द बेस्ट और एंजॉय. लेकिन जो प्रोफेशन उसने खुद चूज किया होता है, उस प्रोफेशन में कितने भी हर्डल्स आते हैं, ये नहीं है कि उस प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लेकिन चॉइस किसकी थी? वो प्रोफेशन मेरी थी. उस समय वो कंप्लेंट नहीं कर सकता. जहां आपकी चॉइस है आप कंप्लेन नहीं करते. अगर वो बच्चा घर आकर कहे कि मुझे ना बहुत डिफिकल्ट है ये इंजीनियरिंग करना, तुरंत पेरेंट्स क्या कहते? आपने चूज किया था ना.
0: सो तो उसके लिए वी मेक इट वर्क.
1: यस, वी मेक इट वर्क. यू पुट इन योर बेस्ट इनटू इट. तो इसी तरह वो ऑफिस जो आप कह रहे हो कि मेरा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता वहां जाना, लेकिन मैंने चूज किया है वहां जाना, नाउ मेक इट वर्क बिकॉज इट्स योर चॉइस. लेकिन अगर आप मजबूरी समझ के, चाहे ऑफिस या किसी रिश्ते में है, आज लोग बहुत सारे रिश्तों में है, चूज भी कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से रहते हैं, तो दर्द में रहते हैं. यू आर चूजिंग, माई मदर इन लॉ इज लाइक दिस, बट आई हैव नो चॉइस, आई हैव टू स्टे विद हर. ओ, यू आर चूजिंग टू स्टे विद हर, नाउ मेक द मोस्ट ऑफ इट. ये आपकी चॉइस है. अब यहाँ क्या क्रिएट करना है वहां रहते हुए उनके साथ, चूज इट. लेकिन जब हम कहें मेरी चॉइस नहीं है, तो हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, और फिर हम कर भी रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर
0: बहुत
1: घुट भी रहे हैं.
0: और वो दिस इज नॉट सेल्फ जेन्युइन होती है. जेन्युइन
1: घुटन जेन्युइन कैसे हो सकते
0: है? मतलब वो घुटन जो है वो महसूस तो हो ही रही होती है ना,
1: बहुत ज्यादा
0: तकलीफ तो बहुत हो रही होती है.
1: एंड मोस्ट ऑफ अस कैन स्पेंड आवर होल लाइफ इन दिस. वी मीट लॉट ऑफ गर्ल्स, वुमेन नाउ, तो कहेंगे मैं आई वाज अ वर्किंग गर्ल, लेकिन शादी करने के बाद मुझे कहा गया कि आपको जॉब नहीं करना, चॉइस. कहेंगे नो, नॉट माई चॉइस, माई फैमिली मेड मी डू इट. एंड फिर पूरे जीवन कैसे काटेंगे? रहेंगे उसी परिवार के लिए, त्याग भी उनके लिए किया लेकिन अंदर से नहीं किया. ऊपर से त्याग किया, अंदर से दर्द दर्द दर्द. फिर कहेंगे इतना इनके लिए किया, ये अभी भी खुश नहीं है मेरे से. क्यों खुश नहीं है? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ. तो फिर वो जीवन की पूरी यात्रा कैसे हो जाएगी? आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू. तो हमने एक बहुत अच्छा स्लोगन एक जगह पढ़ा, जस्ट चेंज वन वर्ड, हैव टू की जगह वॉन्ट टू, एंड योर लाइफ विल चेंज, एंड इट वर्क्स. आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस. Even getting up on a Monday morning and saying, I have to go to work and I want to go to work.
0: Yes.
1: Dono mein kitna farak hai. Aapki energy level hi change ho jati hai.
0: Like I want to meditate.
1: I want to meditate. Yeah, I have to meditate. Toh wo jeevan ko aap enjoy karne lagenge. Ab jaise hum kehte time is money. You know, आज दुनिया में भी कहते टाइम इज मनी. तो हमने शुरू ही ये किया था कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम मिला है इस क्रिएट करने के लिए. हमें ये नहीं पता कि वो टाइम कितना है. मैं इस कॉस्ट्यूम में कितने टाइम के लिए हूँ, आई डोंट नो. वॉट टू क्रिएट, आई विल चूज. लेकिन डू आई हैव अ क्लियर सेंस ऑफ अ गोल एंड एम कि मुझे इतने समय में क्या करना है? जैसे टाइम इज मनी कहते, तो जितना पैसा मेरे पास है, मेरे पास कितना क्लियर ये होता है मुझे इस पैसे से क्या क्या करना है. जितना समय मेरे पास है, क्या मेरे पास वो क्लियर गोल है मुझे इस समय में क्या क्या करना है? Am I very clear with my goals and aims and objectives? क्योंकि अगर clear नहीं होता, तो आप देखो जीवन में चलते चलते बीच बीच में question उठता, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब? मेरे जीवन का purpose क्या है? Why am I here? What am I doing? This is meaning leading a life, लेकिन ये नहीं पता कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं. तो जब भी ये मन में क्वेश्चन उठता, मैं क्यों हूं यहाँ पर, इसका क्या? मेनी पीपल, उनका सबसे बड़ा, उनको पूछो यू हैव एनी क्वेश्चन, दे से व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ. अ पर्पस ऑफ माय लाइफ, हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स?
0: ओह, वी आर डूइंग दैट, यू नो, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन.
1: हाउ कैन यू आस्क समवन एल्स व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ? दैट मींस आई एम लीडिंग अ पर्पसलेस लाइफ. मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है. तो हम अपने जीवन का कोई गोल, कोई एम, ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं सेट कर पाते? क्योंकि दो चीजों की कमी है. एक, हमने अपने जीवन का कोई पर्पस नहीं बनाया. गोल इज सेपरेट, पर्पस इज सेपरेट. उसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि गोल क्या है, पर्पस क्या है. और दूसरा, हम हमने अपने जीवन की कोर वैल्यूज नहीं डिफाइन की है. एक बार हमारी कोर वैल्यूज और जीवन का पर्पस डिफाइन हो जाए, फिर गोल सेट करना बहुत इजी हो जाता है. एंड फिर ध्यान रखना कि जो गोल मैं सेट कर रहा हूं वो मेरे पर्पस और वैल्यूज के साथ
0: क्लैश ना करे,
1: मैच करे. इस पर मनन भी करना पड़ेगा कि मेरे जीवन का पर्पस और वैल्यूज क्या है. एंड दिस नीड्स टू बी रिटन समवेयर. हर एक के पास ये लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि जब आपकी लाइफ में कोई द्वंद आता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, क्योंकि आजकल कई बार आता कि मैं ये करूं या ये करूं, गो पिक अप दैट चिट फर्स्ट जो वहां रखा था, क्योंकि ये गोल्स हैं, लेकिन पर्पस और वैल्यूज क्या है
0: हम अपनी डे टू डे लाइफ में उसको मैनेज करने में, अपने जो जरूरतें हैं दुनिया भर की या जीवन की जो जरूरत है उन्हीं को पूरा करने में हम इतने इन्वॉल्व हैं कि ना हमने पर्पस के बारे में सोचा, ना हमने वैल्यूज के बारे में सोचा है, और गोल तो समझ में नहीं आता कि
1: पर्पस के बारे में सोचते भी तो भी क्या पर्पस दिखाई देता, जीना और अपने बच्चों को
0: पालना
1: भर, तो इट्स अ वेरी एक्सटर्नल पर्पस, तो वो पर्पस नहीं है. फिर हर थोड़े दिन के बाद ये आता,
0: क्या कर रहे हैं हम.
1: ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है.
0: क्या कर रहे हैं हम, वेयर एम आई गोइंग, मैं किस तरह की जिंदगी जी रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और उसके बाद फिर उसी डर्रे में चले जाना. आज
1: क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन अराइज होता है ना, उसको दबा देते हैं. क्वेश्चन आता है, सबके मन में आता है, ये कभी ना कभी हर एक के मन में क्वेश्चन उठता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन फिर छोड़ते, छोड़ो ना, काम करो, बच्चों को संभालो, परिवार को,
0: बहुत सारा काम,
1: ये क्वेश्चन को, ये सब फिर सोचते जब रिटायर हो जाएंगे ना, स्पिरिचुअलिटी विल गिव अस द आंसर्स फॉर ऑल दिस क्वेश्चन, बट पर्पस ऑफ माय लाइफ इज
0: नाउ,
1: थ्रू आउट माय एंटायर लाइफ, आई नीड टू चॉक इट आउट व्हाइल आई एम ऑन द जर्नी इन दिस लाइफ. अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए हु इज वेरी फोकस्ड, बहुत क्लियर है कि वो अपने जीवन में क्या चॉइसेस बना रहे हैं, डिसीजन लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. दे विल नॉट गो अराउंड आस्किंग पीपल, आपको क्या लगता है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना. उनके पास सिर्फ अपना वो पर्पस ऑफ लाइफ और वैल्यू वाला चिट सामने होगा. हियर व्हाट इट इज, सच अ पर्सन नेवर नीड्स हेल्प टू टेक देयर डिसीजंस. अगर मैंने अपना डिसीजन अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए लिया, तो मुझे कभी भी अंदर से घुटन की फीलिंग नहीं आएगी, चाहे वो डिसीजन कोई भी डिसीजन.
0: You know, now a lot of people are going to ask us, what should be the purpose of our life?
1: Yeah, good. I don't mind that. That is an okay, good question. But we will not find the purpose. We can just take them on a journey to find their own purpose. Because everyone will have to find the purpose for themselves. Agar humne ready-made answer de bhi diya, ki this is purpose of your life, these are your values, wo aaj paper par likhenge, kal chhod denge usko. Jaise hi situation samne aayi, छोड़ो इसको, आई हैव टू डू दिस.
0: तो एक जिस तरह से जीते जा रहे हैं उसी तरह से जिएंगे.
1: इट हैज टू कम फ्रॉम मी, हर एक को अपने आप के लिए ये ढूंढना पड़ेगा. तो जो लोग ये बहुत फोकस्ड और जिसको कहें वेरी क्लियर कि उनका डिसीशन क्या होना चाहिए, उनके एटीट्यूड्स क्या होने चाहिए, उनके पास तीन बातों का आंसर होता है. वो कौन है, पहली बात, वो यहाँ क्यों है, एंड तीसरा, उनका रोल क्या है. ये तीन क्वेश्चंस के अगर आंसर मिल जाते, हु एम आई, वेयर एम आई, एंड व्हाई एम आई हियर, आई नीड दीज थ्री आंसर्स. हु एम आई, वेयर एम आई हियर, एंड व्हाई एम आई हियर, ये तीन आंसर्स मिल गए फॉर पर्पस और वैल्यूज ढूंढना बहुत इजी हो जाता. लेकिन जैसे ही हु एम आई को आंसर करना शुरू करते, तो वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ही खड़ा हो जाता है. और आज दिन तक, तो जब तक परमात्मा से ये ज्ञान नहीं मिला था, तो यही सुना था कि हु एम आई इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर.
0: यू स्पेंड ऑल योर लाइफ सर्चिंग फॉर इट.
1: तो जब तक हु एम आई नहीं आंसर हुआ, तो माय पर्पस एंड माय वैल्यूज वो नहीं पता चलेगा. क्योंकि पर्पस और वैल्यूज किसका है, माय पर्पस माय वैल्यूज, लेकिन वो मैं कौन. वो मैं का जैसे ही आंसर निकलेगा, तब तो उसकी वैल्यूज निकल कर आएंगे ना. That is very important. और इसलिए सब कहते हैं कि जब तक who am I का आंसर नहीं आता, तो बाकी सारे questions ऐसे ही रह जाते. आज अगर हम एक departmental store में जाते हैं, हर एक चीज के ऊपर एक label लगा है. कोई भी dress देखो ना, उसके ऊपर label है, कौन सा make, क्या cost, क्या design, कैसी इसकी washing instructions है, सब कुछ labels, हर जगह labels. अपने आप को देखो, हमारे ऊपर भी एक label लगा हुआ है. जिसको भी हम मिलते, उनके ऊपर भी तुरंत हम एक लेबल लगा देते हैं. बिना लेबल के किसी को देखना या किसी से मिलना इज बिकम डिफिकल्ट. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, लेबल, फैट, थिन, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, लेबल्स. जैसे ही हम औरों के ऊपर इतने लेबल्स लगाते, अपने ऊपर भी हमने लेबल्स लगाए हुए हैं. हु एम आई, तो ये पूरी लिस्ट ऑफ लेबल्स आ जाती. और जैसे ही ये लेबल्स बन जाते, मेरी पूरी जीवन पता है किस में बीतती है, इन लेबल्स को डिफेंड करने में, इन लेबल्स को संभाल कर चलने में, कि और इन लेबल्स के ऊपर ही मेरी सेल्फ एस्टीम डिपेंडेंट है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इस लेबल पर ही डिपेंडेंट है.
0: मैंने अपने आप को ये लेबल दिया, अब जो भी दूसरा है वो ये लेबल एक्सेप्ट करे, उसे समझ में आए कि मैं ये हूँ.
1: एब्सोल्युटली. जैसे ही किसी ने मेरे उस लेबल को थ्रेटन किया, लेट्स से माय लेबल इज आई एम अ हिंदू, सिंपल लेबल, जैसे ही कोई कहे तो हिंदुइज्म के अगेंस्ट कुछ, आई एम एन इंडियन, ये मेरा लेबल है, कहे कोई अब इंडिया के बारे में कुछ भी, एंड आई विल गो लाइक दिस, मुझे कह दिया. एंड देन वी से पेट्रियोटिज्म, यस, बट पेट्रियोटिज्म डजंट मीन दैट आई नीड टू रिएक्ट, लेकिन मेरा लेबल है, और जैसे ही किसी ने उस लेबल को स्क्रैच किया, उसको हर्ट किया, उसने मुझे हर्ट किया. लेट से आई एम अ डॉक्टर, किसी ने भी अगर कहा कि ऐसे नहीं ऐसे, मुझे कह दिया, एंड आई विल गेट हर्ट. आई एम अ मदर, किसी ने मेरे बच्चों के बारे में कुछ कह दिया, आई गेट हर्ट, मेरे लेबल को स्क्रैच कर दिया. नाउ दिस इज माय आइडेंटिटी. अगर ये जो लेबल्स की पूरी लिस्ट है, ये मेरी आइडेंटिटी होगी, तो व्हाट विल बी माय वैल्यूज,
0: डिपेंडिंग अपॉन देम, यू नो,
1: डिपेंडिंग ऑन दीज,
0: सेव करने के लिए लेबल्स.
1: एब्सोल्युटली. मेरी वैल्यूज हु एम आई पर डिपेंड करती है. तो जैसे हु एम आई, वाइफ, मदर, वुमन, इंडियन, हिंदू, ये आंसर आएंगे, तो वैल्यूज भी क्या आएंगे, सब उससे रिलेटेड आएंगे.
0: और उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं को यू नो बहुत अच्छी तरह से शो करने के लिए कि दिस इज व्हाट आई एम.
1: एब्सोल्युटली. क्योंकि वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, व्हेन वी से वैल्यूज, तो वैल्यूज मींस समथिंग दैट आई केयर अबाउट. आई से आई वैल्यू यू, आई वैल्यू दिस रिलेशनशिप, आई वैल्यू माई जॉब, इट्स वैल्यू, समथिंग दैट आई केयर अबाउट. अब अगर मैं अपने आप को एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट करती हूँ, तो व्हाट विल बी माय वैल्यू,
0: पावर देयर,
1: पोजीशन देयर, माय रोल देयर,
0: एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट प्रोफेशन.
1: नाउ माय वैल्यूज मींस आई विल ओनली बी रिलेटेड टू दैट पावर, पोजीशन, दैट रोल दैट आई प्ले देयर. तो सारा दिन मेरा पूरा ध्यान किस पर होगा, उस पर होगा. इफ माय लेबल इज, फॉरगेट एनीथिंग एल्स, इफ माय लेबल इज आई एम अ ब्रह्मा कुमारी,
0: होल थिंग इज लाइक
1: रिलीजन, फिलोसफी. अगर किसी ने मेरी इस, मेरी नहीं मतलब, लेकिन जो भी फिलोसफी आई एम प्रैक्टिसिंग इट, लेट समवन से एनीथिंग अगेंस्ट दैट फिलोसफी एंड आई विल गेट हर्ट. स्पिरिचुअलिटी वैनिश्ड, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी वाज एक्चुअली नॉट टू गेट हर्ट, लेकिन मैंने वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं समझा, मैंने अपना लेबल कौन सा अटैच कर लिया, आई एम दिस. हाउ क्रिटिकल दैट इज. आज हमने अपने लेबल्स पर रिलीजन को लगाया है, एंड दैट्स वाई इन द नेम ऑफ रिलीजन वी आर fighting with each other, protect करने के लिए अपने religion को, अपने principles को, अपनी philosophy को, क्योंकि this is what I value. No one can do or say anything to this. Then to protect.
0: This is important to me. Yes, you know, like, oh yes, very true.
1: ये सारे जो labels हैं, अब परमात्मा आकर हमारे ये सारे labels
0: हटा देता
1: और हमें दिखाता कि हम actually कौन हैं. और जैसे ही हमें ये पता चलेगा कि हम एक्चुअली कौन है, हु एम आई, जब आंसर हो जाएगा, तो वैल्यूज एंड पर्पस वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है.
0: वेरी ट्रू.
1: तो जब तक वो आंसर नहीं होता, लेट्स सिट इन साइलेंस फॉर 1 मिनट और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि हु एम आई, और जो जो आंसर बाहर के अक्वायर्ड लेबल्स के हों, उनको एक साइड रखते जाए. दिस इज माइन, माई रिलीजन, माई रोल, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जिन जिन लेबल्स के साथ माई आता, उसको हटाते जाएं. दिस इज अ लेबल विच इज फाइन, दिस इज देयर, बट दिस इज माइन. मुझे उस आंसर पर आना है कि हु एम आई. तो अपने आप के साथ बैठे और अपने आप से ये क्वेश्चन पूछे कि जैसे ही हम आई कहते हैं, तो क्या क्या आता है सामने. और धीरे धीरे जो जो चीजें इस जीवन की यात्रा में अक्वायर की हैं, हमने प्राप्त की हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, वो हमारी डिग्रीज हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी और पोजेशंस हैं, वो सब कुछ मेरे हैं, उनको एक साइड रखते जाए. यस, आई अंडरस्टैंड, ये मेरे हैं, लेकिन फिर भी मैं कौन. थॉट्स, फीलिंग्स, ये भी मेरे हैं, मैं कौन. लेट मी ट्राई एंड फाइंड आउट हु एम आई, टू हुम ऑल दिस बिलोंग्स. जैसे जैसे

0: से हम एक एक लेबल को गिराते जाते, धीरे धीरे हम खो नहीं रहे हैं कोई भी चीज को, हम सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा क्या क्या। एक एक लेबल को हटाते हटाते वी कम टू आवर सेल्फ्स, आई दैट बीइंग, द एनर्जी, जस्ट मी, जो इन रिलेशनशिप्स और इन रोल्स को प्ले करती है, आई कॉन्शियसनेस, आई एम दैट बीइंग ऑफ एनर्जी। एंड नाउ एज आई सेट आउट थ्रू आउट द डे विद दिस आइडेंटिटी कि ये सब कुछ मेरा है लेकिन मैं ये हूं, तो आज के दिन मैं अपनी वैल्यूज को देखना शुरू करती, अपने पर्पस को ढूंढना शुरू करते। लेट मी एक्सप्लोर इट विद माई सेल्फ टुडे। ओम शांति।
1: ओम शांति। सुशीवानी, जिस तरह से आज पूरी बातचीत रही और जहां हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्शन की बात कर रहे थे, वहां बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यही कि मेरे जीवन का पर्पस क्या, और उसमें आपने कहा कि जब तक वैल्यूज नहीं आएंगी सामने, तब तक, जब तक मैं खुद को नहीं पहचान पाऊंगा, तब तक न वैल्यूज को ले पाऊंगा न पर्पस पता चल पाएगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि खुद को हमें पहचानना है। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अस थ्रू दिस जर्नी।
0: वी विल टेक इट अप टुमारो।
1: यस,
0: दैट हाउ डू आई फाइंड माय पर्पस एंड वैल्यूज।
1: यस, वी विल टॉक अबाउट इट टुमारो, बिकॉज़ आज हमारे पास नहीं रहा वक्त, लेकिन आज जो हमने समझा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक पूरा टाइम चाहिए उसको सीप इन करने के लिए। हम शर्ती आज की इस पूरी बातचीत में कहीं कोई ऐसी बात लगती है जो अभी आपके सामने नहीं क्लियर हो रही है, या कुछ और आप कहना चाहते हैं, कोई सजेशन है, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही, लेकिन आज जो अपनी पहचान हुई है कि आप वो चैतन्य शक्ति हैं, मैं वो चैतन्य शक्ति हूँ, इन सारे लेबल्स के, माँ के, पिता के, प्रोफेशनल के, या कोई भी जितने भी लेबल्स हमने उड़े हैं, उन्हें जरूर चेक करें, देखें कि वो कौन कौन से लेबल्स हैं, उनको रखने के लिए कितनी वैल्यू करता हूँ मैं, और उसके बाद डीप जब ये लेबल्स उतरते गए तो मैं कौन हूँ ये सामने आता है, उसके साथ आप रहें, उसे सीप इन करने दें, फिर वैल्यूज, इस नई पहचान के साथ जब हम वैल्यूज और पर्पस की तरफ जाएंगे, एक नया मैं सामने आऊंगा। आज की कड़ी में इतना ही, आपके धन्यवाद का प्रोग्राम। चल चल चल मेरे कंप्यूटर,
2: चल चल चल, चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

सुन रहे हैं आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत. या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
3: हमारा भोजन हमारा व्यक्तित्व. लेखिका सुधापुरी. पात्र परिचय: उन्नति, दृष्टि, यश, वेदांत, आदित्य प्रकाश, आदित्य, सैंडी, आकाश.
4: मजा आ गया, ये तरबूज तो बहुत ही मीठा है.
5: मेरे खरबूजे का तो कोई मुकाबला ही नहीं.
3: मैं क्या बात करते हो, फलों के राजा के सामने किसी और फल की तारीफ. लाहौल पिलाकवत.
6: वो क्या होता है?
3: मुझे भी पता नहीं, पर ऐसा ही कहते हैं ना जब कोई कुछ गलत करता है.
6: ये फलाहारी पिकनिक मुझे बहुत अच्छी लगती है.
4: हाँ, ये मेरी ही दादाजी का आइडिया था.
5: हाँ, मैं तो उन्हें बाबूजी कहकर पुकारता हूँ.
7: और मैं बाबा.
4: वो मेरे सब दोस्तों को बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं बचपन में बहुत सारे दोस्त बनाने चाहिए. बचपन की दोस्ती हमेशा प्यारी लगती है.
8: मेरे पापा भी यही कहते हैं.
5: मैं भी इस बात में विश्वास रखता हूँ कि हर एक दोस्त जरूरी होता है.
3: जैसे किसी के साथ हम कोई खास खेल खेल सकते हैं.
6: कोई पढ़ाई में मदद करता है चाहे वो खेलने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हो.
4: और कोई हमारा मजेदार चटपटा खाना खाने में हमारे साथ होता हो.
8: जैसे इस समय हम सभी मिलकर गर्मियों के मजेदार फल खा रहे हैं.
4: ये ठीक है.
7: ये फलों का आइडिया अच्छा है. कितना ही पेट भर के क्यों न खा लो, कभी सुस्ती ही नहीं आती.
8: बल्कि इन्हें खाकर हम ताज़ा ही महसूस करते हैं.
9: तुम्हें पता भी है फल हमारे शरीर की किस प्रकार मदद करते हैं?
4: मजे करने में.
9: वो तो है ही, पर सबसे जरूरी बात ये है कि ये हमारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं.
8: तो रोटी, पूरी, आलू, दाल, ये सब.
5: हाँ, और दूध.
9: वो सब भी जरूरी है, पर अलग अलग भोजन हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं.
10: अभी हम उस एस्पेक्ट पर पहुँचे ही हैं विज्ञान में.
9: हाँ, तुम सब इन अलग अलग फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे. जैसे कुछ बॉडी बिल्डिंग के लिए होते हैं, कुछ एनर्जी देने के लिए, तो कुछ बीमारियों से रक्षा के लिए.
3: सब भोजनों में अलग अलग पौष्टिक तत्व होते हैं ना.
9: जैसे दालों में प्रोटीन जो बढ़ने में और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है. अनाज में कार्बोहाइड्रेट जो काम करने की शक्ति देता है. मक्खन और घी में वसा, ये भी हमें शक्ति देता है. और कई विटामिनों को शरीर में ग्रहण करने की भी क्षमता है. फल और सब्जियों में विटामिन और मिनरल होते हैं.
6: और दीदी, संपूर्ण आहार पता है किसे कहते हैं?
4: मुझे पता है, दूध को.
11: और संतुलित आहार?
7: ऐसा भोजन जिसमें सब पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो.
8: पर ऐसा तो किसी व्यक्ति की उम्र, अवस्था, लिंग, वो क्या कार्य करता है, इस सब पर भी तो निर्भर होगा ना कि उसके लिए हम किसे संतुलित आहार कहेंगे.
9: हाँ, जैसे बढ़ते बच्चों के लिए खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए.
5: और किसी मजदूर को शक्ति देने वाले भोजन की जरूरत होगी.
9: बिल्कुल ठीक.
3: पर मुख्य बात तो यह है ना कि हमें जीने और बढ़ने के लिए भोजन की जरूरत है.
6: क्यों, बीमारियों से रक्षा भी तो.
4: और ताकतवर बनने की भी.
8: कहते हैं सबसे पौष्टिक भोजन वह होता है जो सबसे कम पका हो.
9: हाँ, उसके पौष्टिक तत्व आग से और पकने से नष्ट नहीं होते.
7: पर कच्चा भोजन तो बस फली हुए ना, जैसे अमरूद, केला, खरबूजा,
8: अनार, सीताफल, खुरमानी, आलू बुखारा, नाशपाती।
9: केला भूल गए, छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी।
5: मुझे तो जामुन बहुत अच्छा लगता है।
3: मेरे दादाजी इन्हें बहुत खुश होकर खाते हैं।
9: ये मधुमेह की बीमारी वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है।
3: उन्हें तो पपीता भी बहुत पसंद है।
6: मुझे तो बेर बहुत पसंद है।
4: मुझे शहतूत।
11: मुझे फालसे।
7: क्यों, कुछ सब्जियां भी तो है जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं, जैसे गाजर, मूली, टमाटर, चुकंदर
8: और ककड़ी, खीरा।
9: टमाटर को हम सब्जी कहते हैं, पर असल में ये एक फल होता है।
5: अच्छा। फिर नट्स भी तो, जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट,
3: किशमिश और चिलगोजे भी।
6: पता है अब चिलगोजे बहुत मुश्किल से मिलते हैं।
4: कहीं मौसम में बदलाव तो इनके कम उगने का कारण तो नहीं?
9: तुम भी ना हर बात को प्रदूषण तक ले जाते हो। तो गलत क्या है जब पशुओं की इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही है मानव के प्रदूषण फैलाने से, तो पेड़ भी तो हो रहे हैं।
7: जरा सोचो, ऐसा हो कहीं एक दिन हमें भोजन देने वाले पेड़ पौधे कहीं विलुप्त ना हो जाए, जैसे मक्का, बाजरा।
8: क्यों, गेहूं भी तो है।
5: और दालें, फल, मटर, राजमा, चना,
3: सब्जियां जैसे पालक, गोभी।
6: पर अगर पौधे प्रदूषण से प्रभावित हुए तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि तेल और घी भी तो इन्हीं से आता है, कुछ सीधे सीधे और कुछ
4: पता है इनडायरेक्ट तरीके से।
9: गाय घास या पौधा खाती है, दूध देती है, मक्खन निकलता है और घी।
7: पर बात सुनो, अगर पौधों पर प्रदूषण का बुरा असर पड़ेगा तो पशुओं पर भी पड़ेगा, तो दूध पर भी, दही, शहद, पनीर, अंडे या मांस।
8: मैं तो शाकाहारी हूँ।
5: मैं भी
3: मांसाहारी नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ।
9: चलो कुछ सकारात्मक सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम सब हो ना। जब जानते हो क्या समस्या है तो समाधान भी तुम्हें निकालोगे। अच्छा ये तो बताओ, क्या तुम सब खाने से पहले हाथ धोते हो?
8: मैं तो धोती हूँ।
5: मैं भी, अच्छी तरह साबुन से।
3: मैं भी।
6: सबको हाथ धोकर ही खाना खाना चाहिए और खाने को खूब अच्छी तरह से चबा चबा के खाना चाहिए।
4: दादाजी कहते थे हमारे 32 दांत होते हैं, तो हर एक दांत को एक एक बार तो भोजन चबाने का मौका मिलना ही चाहिए।
9: ये बात ठीक है, ऐसा हम हर कौर को कम से कम 32 बार चबा कर ही लेंगे।
4: हाँ, पर खाते खाते बातें नहीं करनी चाहिए।
7: मेरी मम्मी कहती है कि सही समय पर भोजन करना चाहिए।
8: पा कहते हैं कि जो बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज चलता है।
5: तो हमें नाश्ता जरूर करना चाहिए।
3: हमारी टीचर उस दिन कह रही थी कि दिन में नाश्ता, दोपहर को लंच और रात का खाना तो जरूर ही खाना चाहिए।
6: और दीदी सबसे जरूरी बात जो सब भूल ही रहे हैं वो है साफ खाना खाना, ढका हुआ और ताज़ा खाना।
4: बासी खाना या सड़ा गला भोजन करने से बीमारी हो सकती है।
9: हाँ, और उन पर मक्खियाँ बिल्कुल न बैठी हों, ये ध्यान रखना चाहिए।
7: और साफ बर्तनों में खाएं, इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए।
8: पर सबसे जरूरी बात तो ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए।
9: हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सके।
5: दीदी शादियों में देखा है लोग अपनी प्लेटों में कितना खाना भर लेते हैं और
3: फिर खाया नहीं जाता तो फेंक देते हैं।
6: चलो आज मिलके कसम खाते हैं, न खाना वेस्ट करेंगे न किसी को करने देंगे।
4: हाँ उतना ही प्लेट में डालेंगे जितना खा सके।
9: इन सब बातों से ही तो एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा।
10: अच्छा भोजन अच्छा व्यक्तित्व,
8: ताज़ा, लाभदायक, रुचिकर, सबको पसंद आने वाला, सही मात्रा में सब गुणों वाला, साफ, सशक्त, समस्याओं से लड़ने में सहायक।
9: ये भोजन की बात कर रहे हो कि व्यक्तित्व की?
10: दोनों की।

बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला मुझको खा लो मैं तो तुमको ताकत दूंगा। गोभी मटर टमाटर बोले गाजर भिंडी बैंगन बोले।

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, आज हम चर्चा करेंगे राजयोग मेडिटेशन की विधि, आधार और उसकी प्राप्तियों की। श्रोते हो, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए और शीघ्र ही आध्यात्मिकता में उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, अर्थात परमात्मा का ध्यान। इसे ही योग कहा गया है। राजयोग मेडिटेशन अर्थात चलते फिरते और कार्य व्यवहार करते हुए भी परमात्मा की स्मृति में स्थित होने का अभ्यास। यद्यपि निरंतर योग के बहुत लाभ है और निरंतर योग द्वारा ही मनुष्य सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है, विशेष रूप से योग में बैठना आवश्यक है। परमात्मा को याद करते समय हमें अपनी बुद्धि सब तरफ से हटाकर एक ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव से जुटानी होती है। मन चंचल होने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तरफ भागता है, लेकिन अभ्यास के द्वारा हमें इसको एक परमात्मा की याद में ही स्थित करना है। देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलकर आत्मिक स्थिति में टिककर आत्मस्वरूप में स्थित होकर बुद्धि में ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की स्मृति में रहना ही वास्तविक योग है। जैसे हम मनुष्य आत्मा है, उसी प्रकार आत्माओं का पिता भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो सभी में परम है, श्रेष्ठ है, पवित्र है, इसीलिए हम उन्हें परम आत्मा कहते हैं। और वह सभी मनुष्य आत्माओं के पिता है, इसीलिए हम उन्हें परम पिता कहते हैं। कई मनुष्य योग को बहुत कठिन समझते हैं। वे कई प्रकार की हट क्रियाएं प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम शरीर के लिए तो आवश्यक है, लेकिन योग जो है वो वास्तव में परमात्मा के याद को कहा जाता है। जैसे कि एक बच्चे को अपने देहधारी पिता की सहज और स्वतः ही याद रहती है, वैसे ही आत्मा को अपने पिता परमात्मा की याद स्वतः और सहज होनी चाहिए। इस अभ्यास के लिए यह सोचना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं ज्योति बिंदु परमात्मा शिव की अविनाशी संतान हूँ, जो परमपिता ब्रह्मलोक के वासी है, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर और सर्वशक्तिमान है। ऐसा मनन करते हुए मन को ब्रह्मलोक में परमपिता परमात्मा शिव पर स्थित करना चाहिए और परमात्मा के दिव्य गुणों और कर्तव्यों का ध्यान करना चाहिए। जब मन इस प्रकार की स्मृति में स्थित होगा, तब सांसारिक संबंधों और वस्तुओं का आकर्षण अनुभव नहीं होगा। जितना ही परमात्मा द्वारा सिखाए गए ज्ञान में निश्चय होगा, उतना ही सांसारिक विचार और लौकिक संबंधियों की याद मन में नहीं आएगी और उतना ही अपने स्वरूप का, आत्मिक स्वरूप का और परमपिय परमात्मा के गुणों का अनुभव होगा। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन परमात्मा के स्मृति में नहीं टिकता, अर्थात हमारा योग नहीं लगता। इसका एक कारण तो यह है कि वे आत्मनिश्चय में अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते, देह भान में फंस जाते हैं, शरीर को ही भूलने की कोशिश नहीं करते, और शरीर भान में फंसने से, स्वयं को आत्मा ना समझने से उनका योग नहीं लगता। आप जानते हैं कि जब बिजली के दो तारों को जोड़ना होता है तब उनके ऊपर के रबर को हटाना पड़ता है, तभी उनमें करंट आता है। इसी प्रकार यदि कोई देह के भान में होगा तो उसे भी अव्यक्त अनुभूति नहीं होगी, उसके मन की तार परमात्मा से नहीं जुड़ सकती। दूसरी बात यह है कि वे तो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापक मानते हैं, लेकिन परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं है। परमात्मा का नाम शिव है, रूप ज्योतिर्बिंदु आत्मा है, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं लेकिन परम धाम में पवित्र स्थान में रहने वाले ब्रह्मलोक के वासी है। मनुष्य आत्मा अपने मन को कोई ठिकाना भी नहीं दे सकते, परंतु अब तो यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा का दिव्य नाम शिव, दिव्य रूप ज्योतिर्बिंदु और दिव्य धाम परम धाम ब्रह्मलोक है। वहां मन को टिकाना सहज हो सकता है। तीसरी बात यह है कि उन्हें परमात्मा के साथ अपने घनिष्ठ संबंध का भी परिचय नहीं है, इसी कारण परमात्मा के प्रति उनके मन में घनिष्ठ स्नेह नहीं होता। अब यह ज्ञान हो जाने पर हमें ब्रह्मलोक के वासी परमपिय परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु की स्मृति में रहना सहज हो जाता है कि वो हमारे परम पिता है, हम आत्माओं के पिता। श्रुते हो अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का, सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, मैं हूँ आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, वास्तव में योग का अर्थ ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिवान, पतित पावन परमात्मा शिव के साथ आत्मा का संबंध जोड़ना है, ताकि आत्मा को भी शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति और दिव्य गुणों की विरासत प्राप्त हो। योग के अभ्यास के लिए योगी को आचरण संबंधी कुछ नियमों का अथवा दिव्य अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि योग का उद्देश्य मन को शुद्ध करना, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना और मनुष्य के चित्त को सदा प्रसन्न अथवा हर्षयुक्त बनाना है। दूसरे शब्दों में योग की उच्च स्थिति किन्हीं आधारभूत स्तंभों पर टिकी होती है, इसमें से एक है ब्रह्मचर्य या पवित्रता। योगी शारीरिक सुंदरता या वासना भोग की ओर आकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह आत्मा की सुंदरता को ही पूर्ण महत्व देता है। उसका जीवन ब्रह्मचर्य शब्द के वास्तविक अर्थ में ढला होता है, अर्थात उसका मन ब्रह्म में स्थित होता है और वह देह की अपेक्षा आत्म अभिमानी अवस्था में रहता है, अर्थात स्वयं को आत्मिक स्मृति में ही रखता है। अतः वह सबको भाई भाई के रूप में देखता है और आत्मिक प्रेम व संबंध का ही आनंद लेता है। यहाँ आत्मिक स्मृति और ब्रह्मचर्य इसे बहुत ही महान शारीरिक शक्ति, कार्यक्षमता, नैतिक बल और आत्मिक शक्ति देते हैं। यह उसके मनोबल को बढ़ाते हैं और उसे निर्णय शक्ति, मानसिक संतुलन और कुशलता देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है सात्विक आहार। मनुष्य जो आहार करता है उसका उसके मस्तिष्क पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए योगी मांस, अंडे, उत्तेजक पेय या तंबाकू या कोई भी नशीली चीजों का सेवन नहीं करता। अपना पेट पालने के लिए वह अन्य जीवों की हत्या नहीं करता, न ही वह अनुचित साधनों से धन कमाता है। वह पहले भगवान को भोग लगाता है और तब प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करता है। भगवान द्वारा स्वीकृत वह भोजन उसके मन को शांति व पवित्रता देता है। तभी जैसा अन्न वैसा मन की कहावत के अनुसार योगी का मन शुद्ध होता है और उसकी कामना कल्याणकारी तथा भावना शुभ बनी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण स्तंभ है सत्संग। जैसा संग वैसा रंग, इस कहावत के अनुसार योगी सदा इस बात का ध्यान रखता है कि उसका सदा सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ ही संग बना रहे। वह कभी भी कुसंग में अथवा कुविचारों में समय व्यर्थ नहीं गवाता। वह एक ही प्रभु की याद व लगन में मग्न रहता है। चौथा स्तंभ है दिव्य गुण। योगी सदा अन्य आत्माओं को भी अपने दिव्य गुणों, दिव्य विचार तथा दिव्य कर्मों की सुगंध से अगरबत्ती की तरह सुगंधित करता रहता है, न कि आसुरी स्वभाव विचार व कर्मों के वशीभूत होता है। विनम्रता, संतोष, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, अंतर्मुखता, सहनशीलता और अन्य दिव्य गुण योग का मुख्य आधार है। योगी स्वयं तो इन गुणों को धारण करता ही है, साथ ही अन्य दुखी, भूली, भटकी और अशांत आत्माओं को भी अपने गुणों का दान करता है और उनके जीवन में सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। श्रुति हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो खुशियां बांटो।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से अर्थात मन का नाता परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ने से अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही कई प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां भी आ जाती है। इनमें से 8 मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से एक है सिकुड़ने और फैलाने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अंगों को जब चाहे सिकुड़ लेता है, जब चाहे उन्हें फैला लेता है, वैसे ही राजयोगी जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है और जब चाहे आत्मिक स्मृति में एवं शांत अवस्था में रह सकता है। इस प्रकार की विदेही अवस्था रहने से उस पर माया का वार नहीं होगा। दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति। इस संसार को मुसाफिर खाना तो सभी कहते हैं, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वे इतना तो विस्तार कर लेते हैं कि अपने कार्य और बुद्धि को समेटना चाहते हुए भी समेट नहीं पाते। जबकि योगी अपनी बुद्धि को इस विशाल दुनिया में न फैलाकर एक परमपिता परमात्मा की तथा आत्मिक संबंध की याद में ही अपनी बुद्धि लगाए रखता है, वह कलयुगी संसार से अपनी बुद्धि और संकल्पों का बिस्तरा व पेटी समेटकर सदा अपने घर परमधाम में चलने को तैयार रहता है। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। जैसे वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी मीठे फल देता है और अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है, वैसे ही एक योगी भी सदा अपकार करने वालों के प्रति सदा शुभ भावना और कामना ही रखता है। राजयोग मेडिटेशन से जो चौथी शक्ति प्राप्त होती है

योग से अन्य शक्ति जो मिलती है वह है परखने की शक्ति। जैसे एक जौहरी आभूषणों को कसौटी पर परख कर उसकी असल और नकल को जान जाता है, ऐसे ही योगी भी किसी भी मनुष्य आत्मा के संपर्क में आने से उसको परख लेता है और उससे सच्चाई या झूठ कभी छिपा नहीं रह सकता। वह तो सदा सच्चे ज्ञान रत्नों को ही अपनाता है और अज्ञानता के झूठे कंकड़ पत्थरों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाता। एक योगी को महान निर्णय शक्ति भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। वह उचित और अनुचित बात का शीघ्र ही निर्णय कर लेता है। वह व्यर्थ संकल्प और पर चिंतन से मुक्त होकर सदा प्रभु चिंतन में रहता है। योग के अभ्यास से मनुष्य को सामना करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यदि उसके सामने अपने निकट संबंधी की मृत्यु जैसी आपदा आ भी जाए अथवा सांसारिक समस्याएं तूफान का रूप भी धारण कर ले, तो भी वह कभी विचलित नहीं होता और उसका आत्मा रूपी दीपक सदा ही जलता रहता है तथा अन्य आत्माओं को ज्ञान प्रकाश देता रहता है। अन्य शक्ति जो योग के अभ्यास से प्राप्त होती है वह है सहयोग की शक्ति। एक योगी अपने तन मन धन से तो ईश्वरीय सेवा करता ही है, साथ ही उसे अन्य आत्माओं का भी सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस कारण वे कलयुगी पहाड़ विकारी संसार को उठाने में अपनी पवित्र जीवन रूपी अंगुली देकर इस धरा पर स्वर्ग की स्थापना के पहाड़ समान कार्य में सहयोगी बन जाता है। श्रोते हो, अब वक्त हो गया है एक मीठे से भक्ति गीत का। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। मैं हूं आरजे शिवप्रिया, आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है एक कदम अध्यात्म की ओर। श्रोते हो, राजयोग मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है। इन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य सांसारिक रुकावटों को पार करता हुआ आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होता है। आज मनुष्य अनेक प्रकार के रोग, शोक, चिंता और परेशानियों से ग्रसित है और यह सृष्टि ही घोर नरक बन गई है। इससे निकलकर स्वर्ग में जाना हर एक प्राणी चाहता है, लेकिन नरक से स्वर्ग की ओर का मार्ग कई रुकावटों से युक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उसके रास्ते से मुख्य बाधा डालते हैं। इस घोर कलयुग में ये धरती ही नरक बन गई है और सतयुग में इसी धरा पर स्वर्ग था। इस धरा को नरक से स्वर्ग बनाने के लिए पहले पहले मनुष्य को काम विकार की ऊंची दीवार को पार करना पड़ता है। इसको पार करने में कई व्यक्ति देह अभिमान के कारण से सफलता नहीं पा सकते हैं। विकारी दृष्टि, कृति, वृत्ति ही मनुष्य को इस दीवार को पार करने नहीं देती। अतः पवित्र दृष्टि बनाना इन विकारों को जीतने के लिए अति आवश्यक है। इस धरती को स्वर्ग बनाने में दूसरा भयंकर विघ्न है क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध के वश होकर मनुष्य सत्य और असत्य की पहचान भी नहीं कर पाता है और साथ ही उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि विकारों का समावेश हो जाता है, जिसकी अग्नि में वह स्वयं तो जलता ही है, साथ में अन्य मनुष्यों को भी जलाता है। इस बाधा को पार करने के लिए स्वधर्म में, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, इस स्थिति में स्थित होना अत्यावश्यक है। लोभ भी मनुष्य को उसके सत्य पथ से परे हटाने के लिए मार्ग में खड़ा है। लोभी मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती और वह मन को परमात्मा की याद में नहीं टिका सकता। अतः स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को धन व खजाने के लालच और सोने की चमक के आकर्षण पर भी जीत पानी है। मोह भी एक ऐसी बाधा है जो जाल की तरह खड़ी रहती है। मनुष्य मोह के कड़े बंधन वश अपने धर्म व कार्य को ही भूल जाता है और पुरुषार्थहीन बन जाता है। तभी गीता में भगवान ने कहा है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात देह सहित देह के सर्व संबंधों के मोह जाल से निकलकर परमात्मा की याद में स्थित हो जाओ और अपने कर्तव्य को करो, इससे ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य आत्मा मोह के बंधनों से मुक्ति पाए, तभी माया के बंधनों से छुटकारा मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अहंकार भी मनुष्य की उन्नति के मार्ग में पहाड़ की तरह रुकावट डालता है। अहंकारी मनुष्य कभी भी परमात्मा के निकट नहीं पहुंच सकता है। अहंकार के वश मनुष्य पहाड़ की ऊंची चोटी से गिरने के समान चकनाचूर हो जाता है। अतः स्वर्ग में जाने के लिए अहंकार को भी जीतना अति आवश्यक है। अतः याद रहे कि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके मनुष्य से देवता बनने वाले ही नर नारी स्वर्ग में जा सकते हैं, वरना हर एक व्यक्ति के मरने के बाद जो कह दिया जाता है कि वह स्वर्गवासी हुआ, यह सरासर गलत है। यदि हर कोई मरने के बाद स्वर्ग जा रहा होता तो जनसंख्या कम हो जाती और स्वर्ग में भीड़ भी लग जाती और मृतक के संबंधी मातम न मनाते। इस धरा को स्वर्ग बनाकर स्वर्ग का आनंद लेने के लिए जरूरी है कि राजयोग मेडिटेशन अभ्यास द्वारा विकारों को त्याग कर दैवी गुणों को धारण कर हमारे संस्कारों में परिवर्तन लाना, तभी ये धरा स्वर्ग बन सकती है। श्रोते हो, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सुनते रहिएगा पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पुडेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुडेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाएं, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है। तो आप जाइए, वहां वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स इस श्रृंखला में हम और आप हैं, यानी कि जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम नहीं जान पा रहे थे और तभी जिंदगी मुश्किल लग रही थी। हमने ये देखा कि जो थॉट्स, जो विचार हम क्रिएट कर रहे हैं, विचारों के साथ जो फीलिंग्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी के कितने हिस्सों पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस कहकर अभी तक हमने अपनी दिनचर्या को, अपनी जो जिंदगी जीने का तरीका है उसको परिवर्तित किया था, लेकिन अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था। आज जानते हैं कि अगर बीमारियां हैं तो क्या थॉट्स पर काम करने से, फीलिंग्स पर काम करने से हीलिंग संभव है। हमारे साथ हर बार की तरह है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, एक बहुत बड़ा, हमें एक कहा जाए एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा पड़ाव जहाँ ये रियलाइजेशन कि ये जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, मेरी बॉडी के हर पार्ट पर इफेक्ट कर रहे हैं। अब रिवर्सल की बात करते हैं, पिछली बार भी मैंने बात की थी, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पूछें क्या अब जो बीमारी है, जो आ गई है, चाहे वो बच्चों में ही है या बड़ों में या बुजुर्गों में भी, वो थॉट पैटर्न से या फीलिंग को चेंज करके हम बदल पाएंगे?
1: डेफिनेटली बदल पाएंगे। और आज हम विज्ञान को स्वीकार करते हैं। आम व्यक्ति जो रिसर्च को नहीं जानता है, वह भी जो डॉक्टर कहते हैं उसे स्वीकार करता है। तो इसके बारे में कुछ रिसर्च भी हुई है, एक रिसर्च की भी, जिससे बहुत लोगों पर भी इफेक्ट होगी। कार्ल ओ साइमोंटन अमेरिकन आर्मी में कैंसर स्पेशलिस्ट थे, उनकी पत्नी साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने ये बातें सुनी थी कि इमोशंस की इफेक्ट होती है हेल्थ पर, इमोशंस के द्वारा हम अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एक रिसर्च प्रोटोकॉल बनाया, क्योंकि आज मेडिकल साइंस के अंदर कोई भी बात को स्वीकार करने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल दे तो डॉक्टर स्वीकार नहीं करते,
0: साइंटिफिक अगर हम बता पाएंगे।
1: उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कैसे पेशेंट्स को सिलेक्ट करना है, कितने पेशेंट होने चाहिए, उन पर क्या क्या टेस्ट करनी आवश्यक है। ऐसा उन्होंने करीब 122 कैंसर के पेशेंट्स थे, उनको ठीक से चुना और उनके ऊपर ये रिसर्च की। बल ये पूरी एक टोटल रिसर्च थी जिसमें सिर्फ इमोशंस की ही बात नहीं थी, उनको वेजिटेरियन डाइट भी दिया गया जिसमें फाइबर ज्यादा थे, फ्रूट्स थे, ऐसे ही एक्सरसाइज करने को भी कहा, और साथ साथ उनका मेन फोकस इन इमोशंस पर था कि ऐसे कौन से इमोशंस है जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरी बात, उसमें उन्हें विजुअलाइजेशन भी सिखाया गया, क्योंकि बुद्धि है वो चित्र की भाषा समझती है। तो एक एक मरीज के साथ उन्होंने काम किया, उनको चित्र बनाना सिखाया कि किस प्रकार से तुम इस बीमारी को रिवर्सल करो, थॉट्स भी बताए कि कौन से विचार करो कि जिसके द्वारा भी आप इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और करीब 2 साल के बाद जब इसके रिजल्ट सामने आए तो सचमुच अमेजिंग थे। ये देखा गया कि 122 में से करीब 20 पेशेंट्स का कैंसर समाप्त हो गया, जो बाई चांस नहीं हो सकता है।
0: दवाई साथ साथ चल रही थी,
1: हाँ, जो नॉर्मल दवाइयां थी वो चल रही थी, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कीमोथेरेपी से या ऑपरेशन से कोई उनका सभी का कैंसर इतने परसेंटेज में ठीक नहीं हो सकता। अगर होता है तो लाख में एकाध पेशेंट हो सकता है कि जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन, कि भी अचानक कैंसर खत्म हो गया, परंतु 122 में से 20 पेशेंट का बिल्कुल कैंसर से वो रिकवर हो गए, वो बहुत बड़ी बात थी। और करीब 45 पेशेंट्स थे जिनका कैंसर कम हुआ, समझो 2 इंच था तो 1 इंच हो गया, जो भी आश्चर्यकारक था। और जो दूसरे मरीज थे, भले उनकी मृत्यु हुई, परंतु डॉक्टर ने जो कहा था उससे वो 2 गुना जी गए। डॉक्टर ने कहा था कि 6 मास ही जिंदा रहोगे, वो 1 साल जिंदा रहे। और सभी मरीजों ने यह कहा कि पहले तो मर मर के जी रहे थे, कैंसर मतलब ही कैंसर, कि भी अभी हम जीने वाले नहीं है, परंतु जब ये प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, इन बातों को, इमोशंस को अच्छे से समझा, तो खुशी खुशी जीने लगे, हमारा आनंद का लेवल था वो काफी बढ़ गया।
0: तो 1 साल कम से कम उनका खुशी वाला गुजरा।
1: हाँ, तो नो, दिस इज एन रियली साइंटिफिक रिसर्च विच प्रूव्स।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, अगर हम देखें तो यहाँ जो कुछ परसेंट डॉक्टर साहब ऐसे पेशेंट्स हैं जो कंप्लीटली रिकवर कर गए, जो शायद अपने इमोशंस पे, क्योंकि हम ये भी तो देख रहे हैं कि अपने थॉट्स या इमोशंस को रिवर्स करने में भी तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है,
1: तो सब नहीं कर पाएंगे,
0: इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हम कितने टाइम से अवेकनिंग में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने थॉट्स पर काम कर पाए, और हर बार हमें जो है चैलेंजेस आते हैं,
2: लेकिन हर बार हमें सक्सेस भी मिल रही है, चाहे मैग्नीट्यूड उसका कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अगर सक्सेस मिल रही है तो एक बिलीफ सिस्टम तो पक्का हो जाए कि ये पॉसिबल है। यू नो, अब तक जो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा या मैं नहीं चेंज कर रहा, आज अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एंड सक्सेस मिल रही है, चाहे ये हो सकता है दो सिचुएशंस में मिल रही है, पांच में फेल हो रहे हैं, लेकिन दो में मिलना मतलब बाकी पांच में भी मिल सकती है। दैट इट सेल्फ विल मोटिवेट मी, यू नो, सेल्फ मोटिवेशन से ही हम इस जर्नी पर और आगे बढ़ते हैं। एंड जैसे ही थोड़ी प्राप्ति होती है ना, वो अपने आप में एक मोटिवेटर होता है कि अच्छा आज मैंने गुस्सा नहीं किया, उसने तो कैसे बात की थी मेरे से, एंड देन मेनी पीपल से पहले जैसा अगर मैं होता तो मैं कर देता, आज मैंने नहीं किया, इसका मतलब सारा चेंज किसने लाया, मैंने लाया, वो तो वैसे ही है, वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। देन इफ आई कैन डू इट वंस, आई कैन डू इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स, नाउ इट्स ओनली अबाउट अटेंशन। तो ईच वन इज ऑन द जर्नी, लेकिन जो उसको जितना अटेंशन से कर रहा है उसको उतना रिजल्ट मिलेगा।
1: एंड दिस परसेंटेज बहुत बड़ा है, जैसे 22 लोग कहे तो अप्रोक्सीमेटली 15% हो गया, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर 15% लोग कैंसर को क्योर कर सके तो भी वो बहुत बड़ी बात है। बल उसके लिए सिस्टमेटिकली अपने इमोशंस पर काम करना होगा, कोई मैजिक नहीं है।
0: तो अब हम बात करें कि काम कैसे करना है, बिकॉज बार बार हम यही कहते हैं कि अनुभव, और इसमें तो जैसे हमने रिश्तों में देखा था, रिश्तों में ही हमने एकदम से देखा फर्क आता हुआ दिखा, मतलब मैंने गुड फील किया, मैंने अगर मेरे साथ कोई खराब रिश्ता चल रहा था, मैंने अगर वो नहीं क्रिएट किए थे पहले, तो धीरे धीरे ये भी दिखा महीने दो महीने के अंदर अंदर कि वो रिश्ता, वो लोग भी परिवर्तित होते गए।
2: एक्चुअली वो लोग परिवर्तित होते नहीं है, जरूरी नहीं है, रिश्ता परिवर्तन हो जाता है। क्यों रिश्ता परिवर्तन हो जाता है? मेरा उनको देखने का नजरिया बदल जाता है, मेरा उनको ब्लेम करना बंद हो जाता है, अपने ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे आई स्टॉप ब्लेमिंग पीपल, आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, एंड इफ आई स्टार्ट एक्सेप्टिंग पीपल, आई फील ओके, दे आर नाइस, यू नो, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव टू चेंज। एक्चुअली दिस कैन ऑल हैपन विदाउट द अदर पर्सन डूइंग एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी चेंज ना क्रिएट करे।
0: हम अपने ऑर्गन्स को ब्लेम करना भी बंद कर सकते हैं।
1: दैट्स टू ट्रू।
0: अभी तक हम यू नो यही कह रहे थे कि ये हार्ट ही प्रॉब्लम है, किडनीज ही खराब है, you know, या पेट ही खराब है।
1: नहीं, पर फिर मैं आई विल टेल यू इन डिटेल, थोड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन से बात करना सीखना चाहिए। मैं पूरा ये कराता हूँ।
0: अच्छा,
1: ऑर्गन से बात करो, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो स्वीकार करो, बिकाओ हार्ट आई एम सॉरी, मैंने तेरे पे बहुत फोर्स डाला, तेरे पे मैंने अनड्यू नेगेटिव अत्याचार किया, कि गलत गलत खा के, एक्सरसाइज नहीं करके, इमोशंस ला करके, हार्ट को बोलो आई एम सॉरी, प्लीज हील मी, इट रियली वर्क्स, एंड रियली वी हैव सीन रिवर्सल टेकिंग प्लेस।
0: जैसे वो कहते हैं कि प्लांट्स को करते हैं,
2: हाँ, जैसे प्लांट्स के साथ जो प्यार से बात करेगा। पर इस केस में थोड़ा जैसे ही आप फॉरगिवनेस मांग रहे हो, यू नो, इवन इफ यू आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस फ्रॉम द हार्ट, एक्चुअली यू आर फीलिंग बेटर ना, यू नो। अब आपसे अगर मैं सॉरी कहूँ, आप कितना टाइम लेंगे उस बात के लिए, वो तो आपकी प्रॉब्लम,
0: तो अच्छा,
2: लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने सॉरी बोल दिया, तो आई फ्री माई सेल्फ ऑफ गिल्ट ऑफ द बर्डन, तो कितनी सारी इमोशंस मैंने रिलीव कर लिया, दैट वाज द पर्पस, कि अपने इमोशंस को क्लीन कर लो तो प्रॉब्लम ठीक होती जाएगी।
1: और वो एटम्स भी चेंज हो रहे हैं ना, नहीं, वाटर क्रिस्टल्स का हम सब ने सुना है कि जैसे हमारे थॉट्स होते हैं ऐसी पानी के ऊपर इफेक्ट होती है, तो 90% इज वाटर ओनली, तो जब आप बात करते अपने आप से तो वो जो वाटर क्रिस्टल्स पर चेंज होगा तो ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट होगी, साथ साथ हर एटम पर भी इफेक्ट होगी, और भी जो सूक्ष्म अणु है, जो तत्व है, उन पर भी इफेक्ट होगी, और सचमुच हीलिंग हो सकती है।
0: तो आप कैसे प्रोसेस करें?
1: ये छोटी सी बात है, तो गहरी से भी एक्सेप्ट शायद न भी करे, लेकिन तीन लेवल पर काम करना चाहिए। एक तो है अपने विचारों पर कार्य करना है, दूसरा इमोशंस पर कार्य करना है, और तीसरा पिक्चराइजेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, क्योंकि जो हमारी बुद्धि है वह पिक्चर्स की भाषा को समझती है। तो पहले देखे कि थॉट्स पर क्या कार्य करें, तो थॉट्स तो ऐसे हो कि जो मेरे इमोशंस है उसके अनुरूप, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे लंग्स का प्रॉब्लम है, तो हमने देखा कि शांति की आवश्यकता है लंग्स को, तो हम पीस के विचार करें, ये सिंपल भी कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम फुल ऑफ पीस, शांति का अखूट खजाना मेरे में समाया हुआ है। अलग अलग रूप से शांति की गहराई में जाने की कोशिश करिए। यह भी एक बहुत अच्छा विचार हो सकता है कि परम धाम जो मुज आत्मा का घर है वही शांति धाम है, वहां संपूर्ण शांति है। ऐसे ही समझो कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो प्यार के विचार करो
0: कि परमात्मा मुझसे इतना प्रेम करता
1: है। ये भी मैं आत्मा प्रेम स्वरूप तो हूं ही, परंतु परमात्मा मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करते हैं, मुझे बिना कोई शर्त के प्यार दे रहे हैं और मुझे सचमुच सर्व संबंधों का प्यार परमात्मा से ही मिल रहा है। भले मैं अपने संबंधों को भी इंप्रूव कर रहा हूं, परंतु जो एक्सपेक्टेशन है वो प्यार की परमात्मा से ही है, कोई संबंधों से मैं प्यार का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूं। ऐसे ही पेट की प्रॉब्लम है तो सुख के विचार करो। तो जो पहले भी हमने इस पर चर्चा की है, वह सातों गुण अलग अलग ऑर्गन्स को अच्छे से मिल जाए, एक तो ये कोशिश करनी चाहिए कि भी सातों गुणों का भी अनुभव करो, क्योंकि सबको जरूरत तो है ही। और फिर एक स्पेसिफिक जो बीमारी है उसके अनुरूप उस गुण का गहराई से अनुभव करो, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने लगेंगे।
0: और जैसा आपने कहा था कि अगर डायबिटीज की बात है या थायराइड की बात है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो उससे सिक्रीशन से ज्यादा या कम से तब हो रहे हैं, तो उसमें कौन से थॉट्स हम क्रिएट करें?
1: हाँ, अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो हमने देखा कि डायबिटीज का लोभ से संबंध हो सकता है, तो बोल उसके अनुरूप भी कहीं एक्यूमुलेट करने की तो मेरे में बात नहीं है, मैं टोटली इससे फ्री हो जाऊं। और मैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपको जनरल भी बताया वह बिल्कुल सत्य है, वह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आनंद चाहिए। आज है ना जो विकृतियां भी इतनी बड़ी है वो क्यों? क्योंकि लगता है कि भी विकारों से आनंद मिल रहा है, परंतु तो एक्साइटमेंट है और वहां भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ही संबंध है। अगर योग के अभ्यास से सच्चा आनंद मिलने लगे, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव हो, तो ऑटोमेटिक एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हार्मनी में कार्य करने लगेगी।
0: तो सुश्री शिवानी, ये जो अभी बोला मेडिटेशन ही वो माध्यम लगता है जो हम इन सारे सातों जो गुण हैं उन्हें अनुभव कर सकते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग जो बैठते हैं उसमें स्पेसिफिक हम इन गुणों पर फोकस करें।
2: आई थिंक हर रोज हम एक गुण को ले सकते हैं, 7 days of the week, 7 qualities, क्योंकि उस गुण को सिर्फ बोलना नहीं है ना, ये तो अब जैसे मंत्र की तरह तो है नहीं, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उस क्वालिटी को लेना है, उसको एक्सपीरियंस करना है और उस एनर्जी को अपनी बॉडी को भी देना है। और 5-10 मिनट ही हम बैठते हैं अभी शुरू शुरू में, वी आर नॉट एबल टू सिट मोर देन दैट। तो एक क्वालिटी को ले लेते हैं, एक क्वालिटी हर रोज के लिए, और उस थॉट को सिर्फ बोले नहीं लेकिन उसको बिलीव करें, बिकॉज परमात्मा ने हमें बताया है कि दिस इज माई ट्रू नेचर, एंड मुझे भी मालूम है कि आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस, सो यस देन दिस इज माई ट्रू नेचर। क्योंकि कई बार कुछ लोग कहते हैं आई डोंट थिंक आई एम अ पीसफुल सोल, मतलब मैं तो सारा दिन इतना परेशान और गुस्सा करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पीसफुल सोल हूँ। तो ये अपने आप को कहने से Am I cheating myself?
0: झूठ तो नहीं बोला, यही मैं कह
2: रहा हूँ। क्या मैं अपने आप को एक यू नो इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल? तो वो झूठ नहीं है, वो एक सत्यता है जो भूल चुकी है। एक किसी को अगर अपनी याददाश्त चली जाए तो उसको कैसे याद दिलाया जाता है कि आप कौन हो? तो उसको बार बार यही कहा जाता है ना, आपको पता है आप ये हो, आप ये हो। तो अब ये मैं भूल गई हूँ कि आई एम अ पीसफुल सोल, मुझे ही अपने आप को अब याद दिलाना है। दैट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन, कि मेडिटेशन से दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, रिमाइंडिंग आवरसेल्फ्स। और उससे क्या हो रहा है, वो थॉट पैटर्न बार बार क्रिएट हो रहा है, एंड बार बार वो थॉट पैटर्न क्रिएट होने से मेरा संस्कार जो है ओरिजिनल, इट इज री इमर्जिंग। तो आई थिंक लेट्स टेक इट अप एज अ चार्ट कि हर रोज एक क्वालिटी पे, और फिर अगर विशेष कोई बीमारी है तो उस पर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अटेंशन रख के। फिर ये कितना अच्छा लग रहा है कि अगर हम सातों क्वालिटीज के ऊपर वर्क करें तो फिजिकली द एंटायर बॉडी इज गोइंग टू बी वेरी हेल्दी।
1: आत्मा को पता है कि भी कौन सी बात, कौन से इमोशन के कारण मुझे बीमारी हुई है, भल हम जागृत रूप से नहीं जानते, और फिर उस पर गहराई से कार्य करो
0: कि वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है, क्या पूरा प्रोसेस है कि मैं वो फीलिंग क्रिएट करता हूँ।
1: या तो कोई नहीं, एक्सपीरियंस है, ये बीमारियों के पीछे एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि आत्मा में जैसे भी कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती है, तो मैं समझता हूँ आत्मा में भी बहुत सारी फाइल्स है, यहाँ भी फोल्डर्स भी है, आत्मा में कई फोल्डर्स है कि भी जो फोल्डर में भी फाइल्स है, तो भी कहीं ऐसा फोल्डर है जहां वो नेगेटिव बात है कि भी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, किसी ने आपका विश्वासघात किया, समझो वो है आपके अंदर फोल्डर, और वो फोल्डर के अंदर और भी चीजें है और वो डिस्टर्ब कर रहा है। और कभी भी अचानक जब भी ऐसी कोई आप घटना देखते हैं और कुछ होता है, वो फोल्डर ओपन हो जाता है, और वो ओपन हुआ वो एक्सपीरियंस आपके शरीर के ऑर्गन पर भी नेगेटिव प्रभाव डालेगा, तब आवश्यकता है उसको डिलीट करने। अगर उससे हमने कम्प्लीटली डिलीट कर दिया तो वो बीमारी की इफेक्ट भी समाप्त हो जाएगी। तो एक तो उसे समझे, एक्सेप्ट करे, उस फोल्डर को ओपन भी करो यह है, और फिर योग के माध्यम से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। बल पूरा प्रोसेस है, लेकिन अच्छे से करो तो उस फोल्डर को आप पूरा डिलीट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब एक बात आपने कहा कि तीन चीजें आपने कही थी, वन इज थॉट का
1: थॉट लेवल effect, पर
0: हाँ। एक है आपने कहा फीलिंग के लेवल पर, तीसरा आपने कहा विजुलाइज, वो कैसे करना है?
1: पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स आर वेरी वेरी डीप, कि पिक्चर्स कैसे क्रिएट करने के, कि जो हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट चाहते हैं, साइमन टॉन ने भी यही किया कि उन पेशेंट्स को समझाया कि ये बीमारी आपकी कैसे होती है। जैसे कैंसर के लोगों ने बहुत एक सरल सी बात बताई कि जो कैंसर सेल्स है आपके वो चूहे जैसे, कि भी नहीं लाखों करोड़ों चूहे अंदर इकट्ठे हो गए,
0: मतलब विजुलाइज
1: दैट, ही जस्ट एक्सप्लेन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। और आपकी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो बिल्ली जैसे, जैसे बिल्ली चूहे को खा जाती है, ऐसे वो व्हाइट ब्लड सेल्स में पावर है। जब व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से पास होते हैं, दे आर बिकमिंग सो पावरफुल कि कुछ वो कैंसर सेल्स को समाप्त कर देते हैं, और डे बाय डे आपका वो कैंसर छोटा छोटा छोटा होता जा रहा है।
0: चूहों की जो तादाद है वो कम
1: कम कम कम,
0: वो ये विजुअलाइज करना कि एक बिल्ली चूहों को खा रही है,
1: इट्स समथिंग एल्स,
2: इट्स प्रोबेबली विजुअलाइज द व्हाइट ब्लड सेल ईटिंग द कैंसर,
1: दैट्स ओके,
2: ट्यूमर है
0: व्हाइट से ब्लैक को खाता हुआ,
2: ये ट्यूमर है।

0: एक डॉक्टर ने कहा कि आप विजुअलाइज करो कि आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो. अब वीडियो गेम में आप कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हो, मुझे मारना है, मुझे मारना. यू नो हाउ दे प्ले दैट. ही सेड देयर आर दीज हु आर रोमिंग अराउंड इन योर बॉडी एंड यू बिकम एंड प्ले द वीडियो गेम विद योर थॉट्स. यू हैव टू किल ऑल दीज पीपल. द चाइल्ड केम आउट ऑफ हिज इलनेस.
1: या आई वंडर. नो इट्स दिस इज अ केस ऑफ ब्रेन कैंसर. ये जो केस बता है, या इट्स अ रियल स्टोरी.
0: दिस के ये वीडियो गेम खेल, क्योंकि वो बच्चा था तो बच्चे को कैसी चीज दें. एंड वो ऑब्सेशन बन जाता है ना आपके साथ वीडियो. ही स्टार्टेड प्लेइंग दैट थिंग.
2: आपको तो विन करना ही है, यू नो, यू हैव टू.
0: ही वाज एबल टू कम ओवर दैट प्रॉब्लम.
1: और इवन देखो ये पूरा मिस्टर रियल स्टोरी शिवानी बेंजो बता रहे हैं ना. ये बच्चे को ब्रेन में कैंसर था और उसको ये कहा कि अभी तुमको उसको मारना है, शूट करना है. और कहा कि बच्चे के लिए इजी है कि भी तुम वीडियो गेम खेलो, सबको खत्म करो. वो बच्चे ने सचमुच किया. बड़ा अच्छा उसका विजुअलाइजेशन था, वो परफेक्ट करता था. एक मास के बाद उसने अपनी मदर को कहा कि मम्मा मुझे लगता है मेरे सब कैंसर सेल्स मर गए. और फिर जाके उसका स्कैनिंग किया तो इट वॉज क्लियर. बच्चे को करते करते भी उसको कॉन्फिडेंस हो रहा है सचमुच.
2: अच्छा था तो वो करा.
1: मे बी विजुअलाइजेशन.
2: बड़े हैं तो हमें बार बार ये डाउट होता है कि हम अपने आप में झूठ कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग. इतनी बड़ी बीमारी है और हम ऐसे एक्टिंग करके कर सकते हैं क्या. ये हमें अपनी ताकत शायद नहीं
1: मालूम है.
0: पावर ऑफ द माइंड नहीं मालूम.
2: इट लुक्स कि इट इज नॉट पॉसिबल. ये कैसे खेल खेल रहे हैं क्या.
1: उसमें भी उन्होंने सचमुच देखा भी है सब पेशेंट्स में कि भी उन्होंने अपने आप चित्र भी निर्माण किए और फिर प्रैक्टिस की. कईयों के चित्र में ही आता था कि इट इज नॉट पॉसिबल,
2: है ना.
1: जैसे साइमन टोन अपनी बुक में लिखते हैं कि भी एक पेशेंट को चित्र बनाने के लिए, तो उसने चित्र बनाया कि कैंसर सेल्स है ना वो राक्षस जैसे
2: तो
1: और मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स छोटे छोटे है ना, कि भाई वो से लड़ रहे हैं. तो वो ठीक नहीं हुआ क्योंकि पहले ही वो पिक्चराइजेशन में था कि भी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स तो वीक है, वो राक्षस को नहीं मार सकते तो नहीं मरे.
2: तो कहीं मनोबल या कहीं कुछ डाउट, बहुत सेल्फ डाउट बहुत है.
1: मतलब नहीं, मेन चीज तो डाउट को दूर कर यह समझ ले कि भी माइंड में जबरदस्त शक्ति
2: पावर
1: है. हाँ, ये कुछ भी कर सकता है सचमुच.
0: जितना हम मेडिटेशन करते हैं हमारी माइंड और इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती है, हमारी विल पावर बढ़ती है. तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना इजियर हो जाता है. दैट इज वाई इट्स अ बिग, यू नो, डीप कनेक्शन बिटवीन कि हम मेडिटेशन करें, मन बुद्धि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं. तो फिर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, वी विल बी एबल टू डू इट.
2: क्योंकि मन स्ट्रांग होता जाएगा फिर बहुत ज्यादा.
1: और क्लैरिटी दूसरा भी. पिक्चराइजेशन में जितना आप क्लियर विजुअलाइजेशन कर सको उतनी अच्छी इफेक्ट होगी. कुछ लोग कहते भी हम अच्छा पिक्चराइजेशन नहीं कर सकते, तो भी करते रहो करते रहो. इवन सचमुच कलर डायग्राम ड्रॉ करो. अच्छा. उसको देखते रहो देखते रहो.
2: तो हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ, तब कैसे.
1: अच्छा, बताता हूँ. देखो हाई ब्लड प्रेशर है तो हाई ब्लड प्रेशर में है वो सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन. तो अगर ये सोचा जाए कि मेरी ब्लड वेसल्स है उनको ये सब नसें आ रही है और उन पर बहुत प्रेशर है, उस पर प्रेशर आ रहा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस बहुत आ रही, इसलिए नसें छोटी हो गई, उस पर प्रेशर आ गया और अब ब्लड प्रेशर बढ़ा. अब ये चित्र निर्माण करो कि वो जो प्रेशर है वो कम हो रहा है.
2: वो एक्सपैंड कर रही है.
1: क्योंकि मैं शांत हूँ, अब मैंने अपने इमोशंस को सही रूप से समझ लिया, आई एम रियली रिलैक्स्ड. और मैं रिलैक्स्ड हूँ तो सिंपैथेटिक जो स्टिम्युलेशन है वो भी कम हो गया. वो एक साथ में 100 इम्पल्स आ रहे थे, अभी 50 हो गए. और वो हो गए तो ब्लड वेसल्स भी रिलैक्स होने लगे. बिकॉज ब्लड वेसल्स आर रिलैक्सिंग, माय ब्लड प्रेशर इज गोइंग डाउन. इट रियली हैपेंस.
2: जब ये हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर है हाई, तब ये अगर विजुलाइज करें तो इम्पैक्ट होता है.
1: इम्पैक्ट होगी. हाँ हाँ, इवन इमीडिएट है तो इम्पैक्ट हो सकती है.
2: अच्छा. और डायबिटीज है अगर.
1: यहाँ नहीं है हार्ट का ही. देखो अभी एक पेशेंट ने तो सचमुच एक डॉक्टर को करके दिखाया, एक हार्ट स्पेशलिस्ट को उसने ना करके दिखाया. उसने कहा देखो अभी आप देखो मेरी हार्ट रेट है वो 95 हो गई. फिर वो कुछ करता था, उसकी हार्ट रेट हो जाती थी 82. डॉक्टर को आश्चर्य होता कि क्योंकि अपने थॉट से इसको कंट्रोल कर रहा है. फिर एंड में पेशेंट को पूछा कि तुम करते क्या हो. आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि भी तुम्हारे पास माइंड में पावर है, तुम जब चाहो तब हार्ट रेट को बढ़ा देते हो, जब चाहो तब कम कर देते हो. उसने कहा सिंपल बात है भी, मैंने समझा था कि भी मैं मेरे जीवन की एक इवेंट है वो थी जिसमें मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, बहुत प्रेशर हुआ था. जब मैं उसको याद करता हूँ ना तो ऑटोमेटिकली मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है. फिर मैं अपने ऐसे इवेंट्स है कि जिसमें मुझे सफलता मिली थी, प्राइज मिली थी, तो तो बस उसको याद करता, मेरी हार्ट रेट कम।

0: समझ आती है। आई अंडरस्टूड वंस और ट्वाइस और फिर मैंने उस पर प्रैक्टिस की, तो आज जब चाहो तब मैं कर सकता हूँ। सो ऑल्दो दिस इज वन केस,
1: उस इवेंट में चले गए, विजुलाइज किया उस इवेंट को, एक्चुअली हम अनोइंगली कितनी बार तो कर रहे हैं।
2: लेकिन ज्यादातर हम कौन से इवेंट्स को विजुलाइज
1: करते हैं, दुख वाले थे, नेगेटिव थे, गलत थे,
2: तो देखो डैमेज कितनी बार, एक बार जब वो इवेंट हुआ और फिर जितनी बार उस इवेंट को याद किया उतनी बार डैमेज, तो एक बार नहीं डैमेज हुआ ना, कितनी बार डैमेज हो गया।
1: और अगर अभी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हैं,
0: ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कहीं सालों से इसके ऊपर कार्य हो रहा है और करीब 1500 जितने पेशेंट्स की, जिनमें डॉक्टर्स ने कहा था कि बाईपास सर्जरी करानी ही पड़ेगी और वो पेशेंट नहीं चाहते थे कि भी हम बाईपास कराए, वो चाहते थे कि कुछ जीवन शैली में परिवर्तन हो करके इसकी इफेक्ट हो सकती है क्या, तो ऐसे पेशेंट्स को 7 दिन के लिए वहां शांतिवन में रखते हैं, उनकी सारी जीवन शैली में भी परिवर्तन आता है, ये ढूंढते भी है, जो मैंने कहा ना कि कौन से इमोशन से जिससे इफेक्ट हुई उस इमोशंस को भी ढूंढते हैं और साथ साथ ये विजुअलाइजेशन सिखाते हैं, विशेष कराते भी है, प्रतिदिन उनको ग्रुप में विजुअलाइजेशन कराते, कुछ योगी भी सामने बैठते हैं और वो भी उनको वह पावर देते, एनर्जी देते और पेशेंट अपने आप ये विजुअलाइजेशन करते हैं और उसके पावरफुल रिजल्ट है। यहां तक कि वह डॉक्यूमेंटेड केसेस है, फिर से उनकी एंजियोग्राफीज की गई और ये प्रूव हुआ कि सचमुच उनमें काफी रिवर्सल हो गया है। यहां तक कि जब कार्डियोलॉजिस्ट को भी वो एंजियोग्राफीज दिखाते हो तो उनको आश्चर्य होता है कि भी इसी पेशेंट की एंजियोग्राफी है। सो दैट प्रूव्स दैट नो दोज रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल।
1: व्हाट आर द विजुअलाइजेशन?
0: या विजुअलाइजेशन की जो चर्बी जम गई है वह कम हो रही है। एक तो सिंपल ही है कि भी मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं, परमात्मा की शक्ति मुझे मिल रही है और आत्मा से जो है वो प्रकाश की किरण हार्ट पर पड़ती है और वो हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल्स में जाती है और इतनी वो भले सूक्ष्म किरणें हैं बट दे आर रियली पावरफुल कॉन्सेंट्रेट वे में, हाँ लेजर रेस की तरह जा रही है और लेजर रेस की जा रही है तो धीरे धीरे वो चर्बी को पिघला देती है और जो ब्लॉक्स है वो कम हो रहा है।
2: इट्स लाइक जैसे पाइपलाइन ब्लॉक होते हैं ना,
0: तो कैसे
2: क्लीन करते हैं,
1: एक केमिकल हाँ, भी कई बार डाल
2: ये पाइपलाइन हाँ। को क्लीन करना है, दैट इज व्हाट वी विजुअलाइज, कि ये किरणें अंदर जा रही हैं और वो जो सब कचरा जो जमा हुआ है उस पाइप के अंदर उसको क्लीन करती जा रही है, माई ब्लड फ्लो इज इंक्रीजिंग, इट्स बिकमिंग स्मूथ, थॉट पैटर्न चेंज हुआ, विजुअलाइज किया, अमेजिंग रिजल्ट्स हैव कम आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इट्स जस्ट 7 डेज वहां जाकर करते हैं एंड जिसको ये प्रॉब्लम है और साथ में उनके फैमिली के एक मेंबर, मोस्टली स्पाउस जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग भी करते हैं कि क्या फैमिली में कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो बेसिकली जीवन के हर एस्पेक्ट पे वर्क करते हैं उस 7 दिन में और फिर उनको वापस जाकर भी उस लाइफस्टाइल को स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड मेंटेन करके रखना है एंड 6 महीने के बाद उनके सारे टेस्ट और वो सब फिर से होते हैं। वेरी साइंटिफिकली डन प्रोजेक्ट।
1: सिस्टर शिवानी, डॉक्टर पटेल, जिस तरह से एक, मतलब बार बार मैं यही कह रही हूँ लेकिन इट्स रियली ट्रू, मिरेकल लगता है कि आज बीमारियों से हम इतने घबराए हुए हैं और इतना पूरा वक्त एनर्जी उसी में निकल रही है, तो अगर ये संभव है, हमारे हाथ में है टेक्निक, हमारे हाथ में शक्ति है, तो हम उसको प्रयास को करें, आपके द्वारा हमें पता चल रही है चीजें। थैंक यू सो मच। मन में कोई बात, कोई सवाल, आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। लाइफ स्किल्स, जिंदगी की सारी स्किल्स सीखने के बावजूद अगर जीवन जीने की कला नहीं सीख पाए तो बहुत कुछ बाकी रह जाता है। इन स्किल्स को हमारे साथ इस सफर में सीखें। अब आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसा अन्न वैसा मन, तो तामसिक भोजन का पर्यावरण पे तो असर हो रहा है, लेकिन तामसिक भोजन का हमारे मन पर क्या असर हो रहा है? अगर उस भोजन में नफरत की, क्रोध की, दर्द की ऊर्जा है, तो हमारी मन की स्थिति भी वही हो जाएगी उसको ग्रहण करने के बाद। तो अगर आज हम सिर्फ दो प्रतिज्ञा ले, एक हमारा अन्न सात्विक हो और दूसरा हम सिर्फ आज एक संस्कार का त्याग करें, वो है क्रोध, तो सही मायने में हमने आज इस यज्ञ में आहुति डालकर विश्व में शांति लाने की सेवा की, वो सच्ची सेवा है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवर लास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: नाना साहब 1857 की क्रांति यज्ञ के महान पुरोधा थे। नाना साहब का जन्म 1827 में हुआ था। वे मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तात्या टोपे और अजीमुल्ला खां नाना के खास साथी थे। बाजीराव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने नाना को उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1857 में अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने स्वधर्म और स्वदेश की रक्षा की खातिर विप्लव महायज्ञ की संरचना करने का संकल्प लिया था। इस महायज्ञ का उद्देश्य था दासता की आहुति देना। उन्होंने शांति के आवरण में क्रांति को भारत के घर घर में पहुंचाया था। तीर्थाटन के बहाने उन्होंने उत्तर भारत के समस्त राजे रजवाड़ों के कानों में अंग्रेजों के साथ निर्णायक युद्ध लड़ने का संदेश फूंका था। नाना साहब के गुप्तचर साधु सन्यासियों, फकीरों, नट नटनियों, मदारियों, ज्योतिषियों और बहुरूपियों के भेष में भारत के घर घर में आजादी की अलख जगाते थे और जासूसी का दम भरने वाले अंग्रेजों को उनकी भनक तक नहीं लगती थी। नाना साहब की सूझबूझ से विप्लव की योजना रोटी और कमल के ताने बाने के साथ बनाई गई। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सेनाओं को संगठित करने के लिए कमल को प्रतीक के रूप में चुना गया, जिसका अर्थ था पंखुड़ियों की भांति ऊपर से पृथक पृथक दिखाई देते हुए भी देश की आजादी के लिए भीतर से सब एक थे। अन्न की सौगंध उठाकर लोग प्रतिज्ञा करते थे कि वे पारस्परिक मतभेदों तथा छुआछूत की भावनाओं से ऊपर उठकर क्रांति में भाग लेंगे। स्वयं को अजेय समझने वाली फिरंगी सेना का गर्व तब चूर चूर हुआ जब नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में भयंकर युद्ध और रक्तपात के बाद क्रांतिकारी सेनाओं ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के निरंतर प्रयासों के बावजूद नाना को जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सका और उन्होंने एक स्वतंत्र सैनिक की भांति 1859 में वीरगति पाई।

0: नमस्कार दादा।
1: नमस्कार नमस्कार। अरे आज अकेले?
0: नहीं, वो तीनों आ रहे हैं नवाबों की तरह, आहिस्ता आहिस्ता।
1: हाँ, जवान खून है भैया, तेजी होना चाहिए चाल में, इससे शरीर भी हरकत में रहता है और दिन भर चुस्ती बनी रहती है। राम राम। राम राम। जय हिंद। नमस्कार सबको। बोलो क्या सेवा करूं?
2: सेवा बाद में, पहले ये बताइए ये नया रेडियो और टीवी कब खरीद लिया? क्या लॉटरी लग गई?
1: अरे नहीं नहीं, लॉटरी नहीं लगी भैया, ये तो अपने प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति सहायता योजना के अंतर्गत लोन पर लिया है और किश्तों में भुगतान करना है। अरे भाई, ग्राहकों की सुविधा के लिए ये सब किया है।
3: भाई ये तो अच्छी योजना है, गरीब और पिछड़ी जाति की उन्नति के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए ये सरकार का अच्छा कदम है।
0: हाँ भाई, जब जो मर्जी आए वो देखो, समाचार, क्रिकेट मैच और बाकी चैनल तो है ही ना अपने लिए।
4: अरे दादा बोर मत करो, कुछ नया चैनल बदलो।
2: इसको नया चैनल देखना है। देख नया चैनल देख तू दादा, इसको नया चैनल लगा के दे देना।
5: अबे तो क्या बात बात हंसता है?
2: क्यों नहीं हंसू क्या? अरे हंसने की पूरी पूरी आजादी है,
5: लो इससे हंसने की आजादी मिली है।
2: अरे तो सब कुछ क्यों हंस रहे हो? अरे बहुत गलत बात है, मजाक लग रहा है सब।
1: अरे ये हंसने की बात नहीं है, और ये आजादी हमें मुफ्त में प्राप्त नहीं हुई है, सैकड़ों लोगों ने बलि दी है इस देश के लिए। कई बहनों के भाई फांसी पे झूल गए, मामू की गोद सूनी हो गई, तब हमें आजादी मिली है, तब आज हम खुलकर बोल सकते हैं, हंसी और खुशी मना सकते हैं। अच्छा अच्छा, पहले चाय पियो। आज मैं तुमको एक ऐसे वीर योद्धा से मिलाता हूं जिनका नाम था नाना साहब पेशवा।
6: हे भारत मां, मुझे शक्ति दो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा भी मिला दो। हो जहां शीश बलि अगणित, एक सर मेरा भी मिला दो। ईश्वर से ये प्रार्थना है साथियों, अगर मरूं तो शहीद बनकर।
7: नाना साहब पेशवा की
8: जय।
7: नाना साहब पेशवा की
8: जय।
6: जय मत कहो साथियों, अभी जयकार का समय नहीं है। जब तक भारत माँ को हम अंग्रेजों से आजाद नहीं करा देते, तब तक हम कुछ नहीं है। सौगंध खाओ, इस शरीर में बह रहा रक्त सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है, बल्कि देश की आजादी के खातिर बहाने के लिए है। तो जाओ वीरों, देश के कोने कोने में हर बच्चे बूढ़े नौजवानों के कानों में ये क्रांति मंत्र फूंक दो। चलो, भारत माता की
8: जय।
6: भारत माता की
8: जय।
9: जननी जन्मभूमि भारत माता की
8: जय।
9: जननी जन्मभूमि भारत माता की
8: जय।
1: नाना साहब उत्तर के कई राजा रजवाड़ों से मिले, उन्हें सचेत किया, अंग्रेज धूर्त और धोखेबाज हैं, स्वाधीनता के लिए हम सबको एक होना होगा, यदि सारे राजा अलग अलग लड़ते रहे तो देश कभी आजाद नहीं हो सकेगा। नाना साहब ने देश में देशद्रोहियों को भी खूब फटकारा, उनका समाज से बहिष्कार करवाया। नाना हर दिन नए राज्य नए नगर में होते और क्रांति सेना तैयार करते रहते। ऐसे ही एक दिन जा पहुंचे एक छोटी सी रियासत में, जिसके राजा थे वीर सिंह।
6: महाराज कुमार, मैं तुम्हें सचेत करता हूं कि अंग्रेज धूर्त और धोखेबाज हैं। वो हमारे भारत को सिर्फ लूटना चाहते हैं। उसने बेसहारा किसानों मजदूरों को बिना किसी कारण के फांसी पर चढ़ा दिया। तुम महाराज कुमार होकर अपनी निर्दोष प्रजा पर हुए अत्याचारों को भूल जाओगे? उन बेकसूर मासूमों का हमें अंग्रेजों से बदला लेना है।
10: नाना साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं लालच में अंधा हो गया था।
9: राजा वीर सिंह की
8: जय।
9: राजा वीर सिंह की
8: जय।
9: नाना साहब की
8: जय।
9: नाना साहब की
8: जय।
10: वीर सिंह की इस छोटी सी रियासत में आपका स्वागत है नाना साहब।
6: महाराज, मैं तो देश का छोटा सा सेवक हूँ, तीर्थ के लिए निकला हूँ, भारत माँ के चरणों में यह कमल अर्पण करने आया हूं। ये रक्त कमल आप भी माँ के चरणों में अर्पण करें और नौजवानों को इस क्रांति कमल के बारे में बताएं। इसकी पंखुड़ियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक साथ हैं और एकजुट होकर हमें माँ की रक्षा करना है। कमल की तरह हम सब भारतवासी अलग अलग भाषा रहन सहन के होकर भी एक हैं। हम उन अलग अलग लकड़ियों की तरह हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ा जा सकता है, पर जब ये लकड़ियां एक साथ मिल जाए तो उन्हें कोई नहीं तोड़ सकता।
10: नाना साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, आपने मुझ में साहस और जोश का एक प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे क्रांति कमल देश के हर हिस्से में खिलें ये प्रयास करूंगा। मैं और मेरे सब साथी पूरे प्रांत में आपके संदेश को फैलाने का प्रयास करेंगे। जय भारत,
6: जय भारत। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे, चलता हूं, अभी कई जगह जाना है, लेकिन याद रहे सबको साथ लेकर चलना है। सैनिक, किसान, अमीर, गरीब, सबको एक साथ मिलकर ज्वालामुखी की तरह फटकर अंग्रेजी साम्राज्य को स्वाह कर देना है। वैसे ही आजादी भी सबकी जरूरत है, सभी को इसकी आवश्यकता होती है। जैसे रोटी के बिना जीवन नहीं, तो आजादी के बिना जीवन नरक के समान है। रोटी अमीर गरीब सबके लिए है, और कमल, हम सब कमल की तरह है, अलग अलग होते हुए भी एक हैं। हमें आपस में सुगंध बांटना है, द्वेष नहीं। तो जाओ, फैल जाना सभी दूर, साधु बम बम। रोटी और कमल से, रोटी सबके लिए है, अमीर गरीब सबके लिए।
10: नाना साहब, अब मुझे जीवन का उद्देश्य मिल गया है। अब ये शरीर, ये आत्मा केवल मातृभूमि की रक्षा के लिए है। मैं अपने सहयोगियों के साथ भारत भ्रमण करूंगा और आपके संदेश को जन जन तक पहुंचाऊंगा।
6: धन्य है, हमें तुम जैसे देशभक्तों की आवश्यकता है। जाओ, क्रांति की ज्वाला दूर दूर तक भड़का दो। जय जनता जनार्दन की।
8: बम बम बम भोले, दूर देश से आया हूँ, सौ सौ मंत्र लाया हूँ। जो ले उसका भला, जो ना ले उसका भी भला, पर एक काम की बात सुन ले भैया, लग जाएगी पार तेरी नैया। खुद तो गंगा नहाएगा, दूसरों को भी नहलाएगा, सौ पुण्य पाएगा, लेकिन बात ध्यान से सुन ले।
11: रोटी बाबा की जय, रोटी बाबा की जय। आओ सब आओ, बाबा का चमत्कार पाओ। बोल ललक निरंजन, जय जनता जनार्दन, जय भारत, जय रोटी बाबा। एक तरफ से आओ, एक एक करके आशीर्वाद पाओ, फिर रोटी प्रसाद पाओ। आजा भैया, ले ले प्रसाद और सुन ले काम की बात।
8: जय हो जनता जनार्दन की। बेटा तू परेशान है, तेरे जैसे भारत देश में सभी भाई बहन परेशान है। पश्चिम से गोरा बंदर आया, हमने मेहमान बनाया, उस बंदर ने अपना हक जताया, अब वो मलाई खा रहा है, भूखे लोगों को जहर खिला रहा है। अरे बंदर कभी यहाँ कभी वहाँ, हर जगह तबाही मचा रहा है। सोने की चिड़िया के पंख नोच, नुकीले नाखूनों से खुरच रहा है। ले प्रसाद रोटी का और जा, लोगों को रोटी का प्रसाद बांट दे, और बता दे करतूत गोरे बंदर की जय। अलक निरंजन,
11: सबको मिलकर गोरे बंदर को मारना है। अलग अलग रहकर हम बंदर नहीं मार सकते। बोल रोटी बाबा की जय।
12: समझ गया बाबा, अब उसकी खैर नहीं, सौगंध रोटी की, प्रसाद सबको खिलाना है, सोए हुओं को जगाना है। जय क्रांति कमल, जय रोटी बाबा, भारत माता की जय, जय भारत।
8: अरे सुनो सुनो नौजवान, सुनो, तुमने अन्न की सौगंध खाई है। आजादी के लिए ऊंचे नीचे छोटे बड़े जैसे बुरे विचारों से दूर रहना होगा। जाओ अपना कर्तव्य पूरा करो। जय क्रांति कमल, चल चल बेटा, कहीं और चले, नदिया के पार चले।
11: चलिए बाबा, बोल रोटी बाबा की जय। रोटी बम बाबा
8: बोले, बम बोले, अवशेष प्रभु की माया है, फाइनल नोटिस आया है, चल बेटा।

0: नाना साहब पाए लागू।
1: अभियान कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है?
0: जी नाना साहब, हमारे बहुत से योद्धा भेष बदलकर पूरे उत्तर भारत में फैल गए हैं। क्रांति कमल और रोटी प्रसाद के बल पर हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। बस लोग आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
1: हे ईश्वर, सबको शक्ति दे। प्रभु, मैं ये नहीं कहता कि मेरी सब विपदा हर ले, पर ये दुआ मांगता हूं, मुझे अत्याचारी अंग्रेजी शासन से लड़ने का साहस दे। बस यही आशीर्वाद चाहिए ईश्वर।
0: नाना साहब, रोटी के प्रसाद ने गांव में रहने वाली समस्त जनता को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार कर दिया है। अन्न को हाथ में लेकर की गई प्रतिज्ञा को कोई नहीं तोड़ेगा।
1: फिर भी अंग्रेजों के जासूसों से और धोखेबाजों से सावधान रहना होगा। तैयार रहना, हमें अंग्रेजों से आजादी का निर्णायक युद्ध लड़ना है। अभी और सेना की जरूरत है।
0: बस बारूद तैयार है, आग दिखाने की जरूरत है नाना साहब।
1: 10 सैनिकों की टुकड़ी लेकर मैं आज रात ही नई जगह जा रहा हूँ, ये बात गुप्त रखना
0: जी।
1: और अगर रास्ते में कहीं अंग्रेजों से मुठभेड़ में मैं मारा जाऊं तब घबराना मत, समर योजना को उचित परिणाम देना। चलो।
2: नाना साहब पेशवा की
3: जय।
2: नाना साहब पेशवा की
3: जय।
1: चलो साथियों, सर पर बांध लो कफन, जंगल पहाड़ कांटों भरी राह पर बड़े चलो। तलवारों की और भालों की चमक से अंग्रेज भेड़ियों को अंधा कर दो। चलो, चलते चलो भाइयों, रुकना मत।
2: नाना साहब पेशवा की
3: जय।
2: नाना साहब पेशवा की
3: जय।

0: कानपुर में हमारी हार हुई, नाना पेशावर की क्रांति सेना का झंडा कानपुर पर लहरा रहा है। उसने छोटी सी सेना लेकर हमको हरा दिया।
1: नाना साहब, नाना साहब, हमने लड़ाई जीत ली। नाना साहब, नाना साहब कहाँ हैं?
2: नदी में भयंकर बाढ़ आई है। नाना साहब जंगल में टुकड़ी के साथ गए थे। आज 3 दिन हो गए, कोई खोज खबर नहीं। भगवान उनकी रक्षा करे। अरे ये क्या, ये तो नाना साहब का घोड़ा है। पर नाना साहब कहाँ है?
3: नाना साहब,
4: नाना साहब की वीरता की गाथाएं तो इतिहास में लिखी पड़ी हैं। पर ये महापुरुष कब आया और कब चला गया, ये अभी भी रहस्य है। रोटी और कमल ने 1857 के संग्राम में अपना रंग दिखाया। नाना साहब की तलवार के हाथ कानपुर में अंग्रेजों को देखने को मिले। नाना साहब के नेतृत्व में भयंकर युद्ध के पश्चात क्रांतिकारी सेनाओं ने कानपुर पर अधिकार कर लिया।
1: गजबी काका, आपको बहुत याद रहता है, पूरा क्रांति समर आंखों के सामने से गुजर गया।
4: चलो बेटा, इससे हम कुछ सीख सकें तब बात बनेगी। आज जरूरत है देश को नाना साहब जैसे देशभक्तों की।
1: हाँ दादा, दादा अब चलता हूं, अब तो दिमाग में यही घूमता रहेगा। अच्छा, राम राम दादा।
4: राम राम, राम राम।
5: निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ जाते क्यों नहीं? फूल सर रुख मद

अंधना निकला दस गया शब का अंधियारा, दस गया शब का अंधियारा। आओ आओ आते क्यों नहीं, जाओ जाओ जाते क्यों नहीं, भूल कर रुख और शबनम।

आते क्यों नहीं? जाओ जाओ, जाते क्यों नहीं? फूल सा रुख और शबनम शबनम पहली झलक में लुट के रहे हम, फूल सा रुख।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: शांति, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विशेष मेहमान सागर गुंजन जी। आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, तो एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोफेशन आप लीड करते हैं जिसमें लोगों को इंटीरियर डिजाइन से जो है सुकून मिलता है। कहीं से भी कोई मेहमान आता है, अगर इंटीरियर डिजाइन अच्छा हो जाता है तो निश्चित तौर पर वो सोचने लगते हैं कैसे बनाया, किसने बनाया, कौन है इंटीरियर डिजाइनर, है ना जी। तो ऐसे सागर जी का अपना काम बोलता है और लोग उनको उनके कार्य से जानते हैं। तो सागर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते।
2: नमस्ते, कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
2: बढ़िया बढ़िया। और सागर जी अपने बारे में बताइए आप।
3: जी मैं पिछले 18 सालों से इस बिजनेस में हूँ। पिछले हफ्ते ही मेरा फर्म को 18 साल कंप्लीट हुए हैं।
2: क्या बात है, क्या बात
3: जी। तो 2 साल मैंने प्रैक्टिस किया था पहले एक आर्किटेक्ट के पास पुणे में ही, उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया, उसको अभी 18 साल से मैं रन कर रहा हूँ।
2: जी जी, सागर जी मैं चाहूंगा कि ये जो इंटीरियर डिजाइनिंग का आपने जो काम शुरू किया पिछले 18 साल से कर रहे हैं, तो शुरू शुरू में आपने क्या, आपका ये चॉइस था कि इंटीरियर डिजाइनर ही बनना है आपका करियर का, या फिर आपको ये चीजें बीच में से कहीं आ गई अचानक?
3: बेसिकली मुझे एक्चुअली आर्ट टीचर बनना था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से तभी मैं एडमिशन नहीं ले पाया। मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कॉमर्स में, उसके बाद मैंने मेरी एक सिस्टर ने मुझे रेकमेंड किया कि अगर तुझे आर्ट फील्ड में ही जाना है तो तू इंटीरियर फील्ड में भी ट्राई कर सकता है। तो अच्छा, उसके बाद मैंने पुणे में एक इंटीरियर का डिप्लोमा किया, उसके बाद ये जर्नी स्टार्ट हुई।
2: क्या बात। अच्छा, शुरू शुरू में इसको प्रैक्टिकल जो है इम्प्लीमेंटेशन करने में क्या चैलेंजेस रहे आपके?
3: इसमें चैलेंजेस एक तो लेबर का था, क्योंकि मैं ये फील्ड में नया था, तो ये फील्ड में जो भी एजेंसीज लग रही है तो उनसे कांटेक्ट होने में, या नए नए जो प्रोजेक्ट मिलने हैं मुझे, तो वो शुरुआती एक 3 से 4 साल उसी में चले गए। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने काम बढ़ाए तो उसके रिकमेंडेशन से आज तक चालू है।
2: तो पहली सफलता आपको कैसे मिली एक पूरा जो है इंटीरियर डिजाइनिंग का जो वर्क आपने लिया होगा, या पहला जो सक्सेस जिसको कह सकते हैं, वो उसके बारे में बताइए।
3: एक ऐसे ही हमारे पहचान के कारपेंटर भाई थे, उन्होंने मुझे एक क्लाइंट से मिलवाया जिनका सलून का प्रोजेक्ट करना था। तो वो सलून के प्रोजेक्ट में उनको सब डिजाइनिंग, मेरा सेंस, ये सब पसंद आया, तो उसके हिसाब से मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट उनका ही मिला जो रेस्टोरेंट का काम था। एक चाइनीज रेस्टोरेंट का काम किया था मैं पुणे में, पिंपले सौदागर में, द शाओलिन कुजिन नाम से। तो वो शुरुआती दौर पे मेरा बड़ा प्रोजेक्ट था, और मुझे बेसिकली मैं आर्टिस्ट होने के वजह से मुझे कमर्शियल काम ज्यादा पसंद है, जिसमें मुझे अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करना मिलता है।
2: जी जी जी। अच्छा, आप जैसे कि अभी वो पहली सफलता आपको ये होटल का जो है आपने किया, जिसके बाद कोई ऐसा मंदिर या फिर ऐसा कुछ उसके इंटीरियर का ऐसा कुछ लोकेशन या कह सकते हैं ध्यान मंदिर का वगैरह कुछ काम किया है आपने?
3: जी जी, चिंचवड़ में, पुणे में चिंचवड़ में मैंने एक लगभग 60-70 साल पुराना हनुमान भगवान जी का पुराना मंदिर है, उसका रिनोवेशन का काम किया हूँ मैंने।
2: अरे वाह
3: जी,
2: तो उसका एक्सपीरियंस बताइए, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा अनुभव भी हुआ होगा।
3: जी, उसमें मुझे एक तो कैसे कि वो मंदिर का काम था, इसके लिए मैंने उसे कुछ चार्ज भी नहीं किया था, वो मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे मंदिर का रिनोवेशन का काम करने को मिला या उसमें सहभाग देने को मिला। तो वहां पे हमें चैलेंज ये था कि वो पुराने स्ट्रक्चर को वैसे ही रख के उसको मेंटेन करना है और नए तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है।
2: क्या बात है।
3: तो हमने वो सब चीजों को ध्यान में रख के स्टोन फिनिश हमने टाइल्स यूज किए हैं, बाहर का एक्सटीरियर जो पत्थर का बना हुआ था उसे एज इट इज हमने रख के उसको ग्राइंडिंग करके पॉलिशिंग किया है। फिर आउटर एरिया जो था वो भी हमने बढ़िया तरीके से उसको रिनोवेट किया था।
2: जी जी। सागर जी, मैं चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो कट्ठे मिट्टे अनुभव है, कई बार बिजनेस में जो है हमेशा ही हमको अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, ऐसा कुछ ट्विस्टिंग वाली चीज है जो आपको ज्यादा परेशान किया हो?
3: हर एक बिजनेस में कोई ना कोई पैसे के प्रॉब्लम्स है कि हम दिल लगा के काम करते हैं क्लाइंट का, या हम जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और मेरा ये है कि काम करने के तरीके में मैं कोशिश करता हूँ कि क्लाइंट के पैसे कहाँ पे बचे, कहाँ पे ज्यादा खर्च ना हो, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि इसमें जितना भी खर्चा करे वो कम है। लेकिन इसके अलावा भी क्लाइंट कोई कोई है जो उसका वैल्यू नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा बुरा लगता है।
2: जी जी जी। अच्छा सागर जी, मैं चाहूंगा कि आज के समय में जैसे आप यहाँ आए हैं पुनेरी रेडियो स्टूडियो में, और ब्रह्मा कुमारीज का भी जो सेंटर है रहाटने में, आप उसमें भी आए, तो आपको ये सेंटर देखकर या सेंटर का वातावरण से आपको क्या अनुभव होता है?
3: जैसे ही मैंने एंटर किया यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, फ्रेश लगा, और यहाँ के जो स्टाफ है, जो भी लोग हैं, वो पूरा कोऑपरेटिव है, प्यार से बातें करते हैं, रिस्पेक्टफुली बातें करते हैं।

0: जी, सागर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूंगा मेडिटेशन या फिर ज्ञान धारणाएं, इसके बारे में आपका क्या अनुभव है, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं या इसको सीखना चाहते हैं, कैसे?
1: मैं खुद डेली शिव मंदिर में जाके दर्शन करके आता हूँ। ये मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और मेडिटेशन, ध्यान धारणा, इसमें मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि अल्टीमेट जो अपना जन्म हुआ है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है, ऐसे मुझे लगता है। पैसा, बिजनेस या फैमिली, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हम ये मनुष्य जन्म मिला है, तो ये सब भोगना ही है, ये सब करना ही है। तो इसके अलावा ईश्वर की सेवा या जो जिन्हें भगवान की जरूरत है, तो मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कभी कभी कि मेरे थ्रू उनकी सेवा हो जाए। जैसे बोलते हैं मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, तो उसको मैं फॉलो करता हूँ।
0: जी, तो यहाँ ब्रह्म कुमारी से आप क्या सीख रहे हैं या क्या सीखा आपने अभी?
1: अभी तक तो जितना नॉलेज मिला है उतना आगे लेके जाऊंगा।
0: जी, सागर जी, मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर आप अगर किसी तरह का इंटीरियर डेकोरेशन अभी तक जो किया है, ऐसा कुछ नया करना चाहते हैं, तो किस टाइप का काम करना चाहेंगे आप?
1: जैसे मैंने अभी अभी बताया कि मुझे कमर्शियल कामों में भी ज्यादा इंटरेस्ट है और मेडिटेशन ये चीजों में भी इंटरेस्ट है। तो ऐसे ध्यान धारणा जो बोलते हैं, मैं अभी ईशा आश्रम में भी पिछले हफ्ते दिवाली के बाद विजिट करके आया, तो वहाँ का आश्रम जो उन्होंने डिजाइन किया है, ध्यान मंदिर जो डिजाइन किया है, तो वो मुझे बेहद पसंद आया। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में जहाँ पे वो काम करने के बाद मुझे खुशी मिले, ऐसा काम करना चाहता हूँ।
0: क्या बात, चलिए सागर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और आपका जो मंदिर है, मेडिटेशन है, इस तरह के कार्य को आप इंटीरियर डिजाइन से अपनी कला से सजाना चाहते हैं, ये आपका भावना है। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक मैसेज सबके लिए क्या देना चाहेंगे आप?
1: मैं सबके लिए ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप जितना भी ज्यादा ईश्वर की सेवा करें, लेकिन वो मनोभावे होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा करिए, बाकी चीजें अपने आप आपको सब मिल जाएगी।
0: चलिए सागर जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही पूरा अच्छा संदेश आपने दिया कि जो भी कार्य आप करें तो मन भाव से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, ताकि आप उसमें संतोष फील करें। तो सागर जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप संकल्प ना करते हैं, ऐसे शुभ कार्य आपके द्वारा होते रहे, ऐसे शुभ मंगल कामनाएं करते हैं आपके लिए। और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तो चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। और आशा करूंगा सागर जी की भावनाएं, विचार सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। तो आप भी कुछ उनसे अगर सीखना चाहें, कुछ अच्छी प्रेरणा लेना चाहें, तो जरूर लें और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं। ओम शांति, नमस्कार, सुनते रहो।
2: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा, आनंद लुटा।
1: इतिहास से, भूगोल से,
2: समाज से, संस्कार से,
1: आधुनिकता से और विचार से,
2: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
1: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
3: अतुल्य भारत।
2: चलिए आपको बताते हैं
1: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
2: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
1: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
4: क्या आपको पता है कि भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना, सतलुज, महानदी, रेवा, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती जैसी अनेक महान नदियां हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गंगा नदी सबसे पावन और पूजनीय मानी जाती है। लोगों की आस्था है कि गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए हजारों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने भिन्न भिन्न अवसर पर यहां आते रहते हैं। गंगा की ये भी विशेषता है कि इसका रखा हुआ पानी भी खराब नहीं होता है। कई लोग गंगा जल अपने घरों में सालों तक रखते हैं।
1: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
2: पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
1: जय भारत।
5: भारत अनोखा राग है।
6: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
7: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
6: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो, खुशियां बांटो।

लगता है कुछ ऐसा मिल गया।

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: दादा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाँच आने का दसाना, पाँच आने का दसाना, पाँच आने का दसाना,
0: अरे वापस नहीं जाना।

0: Hi, Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Sherman.
1: Hi. आप खड़े कि नहीं खड़े?
2: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
0: डाइटिंग? लगता तो नहीं।

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो, हे हम सारे हैं भारतवासी।

0: साठ साल के और तुम होगी पचपन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
1: क्या क्या

0: शराबी।
1: अरे सारे शराबी, क्या हो राजा?
0: गली में आ जाओ,
2: होली होली,
0: भांग की गोली, ओ नखरे वाली,
1: दूंगी मैं गाली।